मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्स तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 अगस्त 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 और 50 सेकंड हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा। सभा के आरंभ में आप सभी को आयुष तोमर का नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार का प्रसारण अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अपने संबोधन में श्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि-कोटि नागरिकों ने एक संकल्प और समर्पण के साथ देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में देश ने नई रफ्तार पकड़ी है और नई गति से आगे बढ़ाए। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर मोबाइल विनिर्माण तक हर क्षेत्र में कई गुणा उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
2: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के तहत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
2: हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, चाहते हैं कि वो भारत में हो, और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तब पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने 1 दशक के भीतर ही 100 करोड़ देशवासियों को सामाजिक सुरक्षा का कवर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की वजह से भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता और पारिवारिक रिश्ते इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार जताया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भी शामिल हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। इनके अतिरिक्त नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग की शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले का कल समापन हो गया। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे चेन्नई, चेंगलपेट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपेट्टू में ARM विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज UGC नेट, CSIR नेट और ICAR की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। PhD कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। दिल्ली सरकार ने DTC बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं DTC और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर युद्ध अपराध करने और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुराब में हुए हवाई हमलों के वीडियो इस बात का प्रमाण है कि बलूचिस्तान में स्थानीय आबादी के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की गई। भारत श्रीलंका के बीच खेले जा रहे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। 2 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। बारिश के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजे हैं। लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना की शुरुआत हम कर रहे हैं समूह स्वर में इस देशगान के साथ।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में लीजिए अब सुनिए जगजीत सिंह व साथियों की आवाज़ में ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे नितिन मुकेश की आवाज़ में ये भजन। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम वंदना अब अपने समापन की ओर है। कार्यक्रम वंदना का समापन हम कर रहे हैं शुभा मुद्गल की आवाज़ में इस भजन के साथ।

0: इसी के साथ कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, प्रातः के 6:31 हुए हैं। लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत आलेख है डॉक्टर AK रॉय का और वाचन स्वर है सुनील केशव देवधर का।
1: 19वीं शताब्दी में अनेक यूरोपीय विचारक ये मानने लगे थे कि मनुष्य की प्रतिष्ठा इस तथ्य में सन्निहित है कि वो वैज्ञानिक प्रगति से प्रकृति को अपने वश में कर ले। कदाचित ये दृष्टिकोण अधिक व्यापक हो गया है।

0: जिसके परिणाम स्वरूप प्रकृति पर विजय दर्ज करने की होड़ लग चुकी है। इसका प्रतिफल यह हुआ है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है और मनुष्य प्रकृति के प्रति निर्मम बनता जा रहा है। समकालीन भारतीय विचारक इस उपयोगितावादी दृष्टिकोण से कतई सहमत नहीं है। गांधी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, नेहरू प्रभृति विचारक प्रकृति से मनुष्य के सहकार के समर्थक हैं। इनमें भी कवि और कलाकार होने के नाते रवीन्द्रनाथ ठाकुर पश्चिम के प्रकृति विरोधी दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए ये स्वीकार करते हैं कि प्रकृति से पृथक रहकर मनुष्य अपने जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं कर सकता। मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति पर निर्भर है और प्रकृति अपनी सार्थकता के लिए मनुष्य पर आश्रित है। दोनों एक ही धुन में बंधे हुए हैं। रवीन्द्रनाथ ठाकुर मूलतः एक आध्यात्मवादी विचारक थे जो परम सत्ता के रूप में एक परम पुरुष को स्वीकार करते थे। वे उस असीम अथवा परम पुरुष को जीवन देवता के नाम से पुकारते थे। ये जीवन देवता एक ऐसी रहस्यमय शक्ति है जिसकी अभिव्यक्ति ये समस्त संसार है। आत्मा और अनात्मा, पुरुष और प्रकृति अथवा चेतन और जड़ एक दूसरे के विरोधी नहीं है, अपितु उस एक ही परम सत्ता, परम तत्व की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। रवीन्द्रनाथ की ये मान्यता है कि जब तक हम सृष्टि के इस रहस्य को समझ नहीं पाते, तब तक हमारे लिए ये विश्व विभाजित रहता है। जैसे ही हम इस रहस्य को समझ जाते हैं, वैसे ही समस्त कठोरता और बेसुरापन पिघलकर मधुर सामंजस्य में परिणित हो जाता है। ये सही है कि ये समग्र सृष्टि उस परम पुरुष जीवन देवता की अभिव्यक्ति है, लेकिन इस संसार में मनुष्य असीम की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर के अनुसार सृष्टि के रूप में मनुष्य सृष्टा का प्रतिनिधि है और समस्त प्राणियों में वही इस जगत को समझने में सफल हो सका है। इससे स्पष्ट है कि इस जगत में परमात्मा की समूची अभिव्यक्ति समान नहीं है। इसीलिए रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि ईश्वर की वीणा में अनेक तार हैं, कुछ लोहे के हैं, कुछ तांबे के हैं, किंतु सोने का तार अकेला मनुष्य ही है। स्पष्ट है कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर पश्चिमी विचारकों के दृष्टिकोण से सहमति न रखते हुए मनुष्य को प्रकृति से पृथक किए बिना ही उसे प्रकृति से श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रकृति पर विजय प्राप्ति का अभियान छेड़ने का इरादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उससे प्रकृति विनाश की संभावना को बल मिलता है। वस्तुतः मानवीय गरिमा प्रकृति से दूर रहकर नहीं, अपितु उससे सामंजस्य करके ही स्थापित की जा सकती है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत आपने सुना डॉक्टर ए के रॉय का आलेख और वाचन स्वर सुनील केशव देवधर का था। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से आज की ये संगीतमय प्रस्तुति।

गौरी पूजन के लिए सखियों के साथ सीता पुष्प वाटिका में आई हैं। वहां उन्होंने उन दो राजकुमारों को देखा जिन्होंने अपनी रूप की मोहिनी से जनकपुर वासियों का मन अपने वश में कर लिया है। उधर सीता तथा उनकी सखियों के कंगनों, करधनी, पाजेब आदि की मधुर ध्वनि सुन श्री राम मंत्र मुग्ध हो गए। सीता के मुख रूपी चंद्रमा को देखने के लिए श्री राम की आंखें मानो चकोर बन गईं, अपलक उन्हें देखते रहे। कथा है

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।

0: अभी आप सुन रहे थे सूचना परक कार्यक्रम दर्पण। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। संस्कृत और हिंदी में समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। देशेन ह्यः अशीतितमः स्वातन्त्र्य दिवसः आचरितः। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी रक्तदुर्गस्य प्राचीरात् राष्ट्रियध्वजम् आरोहितवान् तथा अनेकाः महत्वपूर्णाः घोषणाः कृतवान्। राष्ट्रं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् विगतेषु 12 वर्षेषु देशस्य कोटिशः नागरिकाः स्वसंकल्पेन समर्पणेन च देशं नूतनासु उन्नतिषु नेतुं सर्वसम्भवं प्रयत्नम् अकुर्वन्। प्रधानमन्त्री सबलं प्रतिपादितवान् यत् बृहन्स्वप्नाः दृढतराः सङ्कल्पाश्च राष्ट्रस्य प्रयत्नानां समग्रं स्तरं सामर्थ्यञ्च वर्धयन्ति।
2: कोऽपि राष्ट्रं तं महान् बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
1: विकसित भारताय यूनां महिलानां च सशक्तीकरणे बलं दत्त्वा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विभिन्नानां लोकसेवा परीक्षाणां कृते निर्धन मध्यम वर्गीय परिवाराणां युवभ्यः निःशुल्कम् अन्तर्जालमाध्यमेन प्रशिक्षणं प्रदातुं घोषणां कृतवान्। सः इदमपि घोषितवान् यत् प्रशासनेन आगामि एकवर्षे 1 कोटि युवभ्यः AI इति कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशलस्य प्रशिक्षणं प्रदातुं निर्णयः कृतः। केन्द्रीय सहकारिता मन्त्री अमित शाहः अद्य राजस्थानस्य अलवर नगरे स्थिते अलवर सरस दुग्ध परिसरे नूतनस्य दुग्ध संयंत्रस्य आधारशिलां स्थापयिष्यति।

0: तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम की 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करेगा। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। परीक्षा एजेंसी ने बताया कि उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार निशुल्क बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकते हैं। यह योजना आज से लागू हो गई है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर युद्ध अपराध और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुराब में हुई हवाई हमलों की वीडियो इस बात का प्रमाण है। श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत अपनी पहली पारी में 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। वर्षा के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का ही हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

प्रातः 7:20 पर आपके लिए प्रस्तुत रहेगा कार्यक्रम फिल्म संगीत, प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जाएगा। प्रातः 8:30 पर लोक संगीत के कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जाएगा। लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी राधा परिहार, ढोलक पर साथ दे रहे होंगे अब्दुल हनीफ खान और सारंगी पर उस्ताद अब्दुल मजीद खान। प्रातः 9:00 आपके लिए प्रस्तुत रहेगा सूचना और समाचारों का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर, प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जाएगा। प्रातः 9:30 पर सिंधी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा। प्रातः 10:05 पर आपके लिए प्रस्तुत रहेगा फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश, प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जाएगा। प्रातः 11:00 आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। दोपहर 12:00 आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। दोपहर 12:30 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम संग्रहालय से। दोपहर 1:00 आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित होगा महिला कार्यक्रम, प्रस्तुति शिवपुरी जिले की होगी। दोपहर 1:30 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा लोकगीत का कार्यक्रम, प्रस्तुति शिवपुरी जिले की होगी। 1:45 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम सुगम संगीत, प्रस्तुति शिवपुरी जिले की होगी। दोपहर 2:00 आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। दोपहर 2:30 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित रहेगा बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान। दोपहर 2:50 पर आप सुन सकेंगे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम, प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा।

साया 5:02 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम युववाणी। प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से होगा। प्रस्तुति शिवपुरी जिले की होगी। साया 5:33 पर फिल्म संगीत के कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा। साया 6:02 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम भजन संध्या। प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से होगा। साया 6:30 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र द्वारा प्रसारित होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। साया 7:20 पर आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर आंगन। चर्चा के विषय होंगे अटल बिहारी वाजपेयी पुण्यतिथि और लाडली लक्ष्मी योजना। कार्यक्रम में एक भेंट वार्ता भी आपको सुनवाई जाएगी जिसका विषय होगा मशरूम उगाएं और लाभ कमाएं। और भेंट वार्ता के अंतर्गत डॉक्टर रीता मिश्रा से तुलिका शर्मा की बातचीत। रात 8:30 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। रात 9:15 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। रात 9:30 पर कार्यक्रम आपकी फरमाइश आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। इसी के साथ हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा अब यहीं संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 7:10 होने को है। प्रादेशिक समाचार का प्रसारण अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। कल देश भर में धूमधाम से मनाया गया 80वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में महिलाओं के लिए आरक्षण पर जोर दिया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश की विभिन्न जिलों में सजा काट रहे कुल 115 बंदियों को रिहा किया गया और जबलपुर, शहडोल, सागर और रीवा संभाग के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। देश भर में कल हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाया गया। पहली बार इस अवसर पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने के मुद्दे को राजनीतिक लड़ाई न बनाया जाए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी दल आगे आएं और महिलाओं को सम्मान देते हुए ये सुनिश्चित करें कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जल्द से जल्द 33% प्रतिनिधित्व मिले।
2: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आज के दौर का भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर कल रविन्द्र भवन में आज़ादी का महापर्व कार्यक्रम में कहा कि आज के दौर के भारत की सेना देश के दुश्मनों को उनकी सीमा के अंदर जाकर मारने की हिम्मत रखती है। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कारण संभव हुआ है।
3: दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत दुनिया के सामने अपने सामर्थ्य, पुरुषार्थ और पराक्रम की नई नई कीर्ति गाथाएं लिख रहा है। हमें आनंद आता है देश के अंदर देश का ऐसा नेतृत्व की आवश्यकता वर्षों बाद हमारी आस पूरी हुई। जब हमारी बॉर्डर पर बॉर्डर के अंदर घुसकर होने वाली हलचल में दुश्मन कोई षड्यंत्र लगाए तो आज का दौर का भारत और भारत की सेना देश के दुश्मनों को दुश्मनों की सीमा के अंदर जाकर मारने की हिम्मत रखती है, ये वर्तमान का भारत।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नक्सल मुक्त होने के बाद की स्वतंत्रता की वर्षगांठ विशेष आनंद का कारण बनी है। संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रख्यात गायिका पद्मश्री कविता कृष्णमूर्ति ने देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति भी दी। प्रदेश शासन जेल विभाग की समय पूर्व रिहाई नीति के तहत कल 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कुल 115 बंदियों को रिहा किया गया, जिसमें 110 पुरुष बंदी एवं 5 महिला बंदी शामिल हैं। ये रिहाई जेल में निरुद्ध रहने के दौरान बंदी के अच्छे आचरण, अनुशासित व्यवहार और निर्धारित नियमों के पालन के आधार पर दी गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज UGC नेट 2026, CSIR नेट और ICAR की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अनंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। PhD कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अनंतिम उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। एजेंसी ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे केवल एजेंसी की आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान माई भारत NSS स्वयंसेवकों से संवाद किया। उन्होंने सामाजिक सेवा में स्वयंसेवकों के योगदान की सराहना की और उन्हें विकसित भारत के निर्माण से जुड़ी पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में स्वयंसेवकों को अपने अनुभव, विचार और आकांक्षाएं साझा करने का अवसर भी मिला। इसके साथ ही राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए सार्थक अवसर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। इस कार्यक्रम में करीब 500 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस समारोह में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और सामूहिक भागीदारी की भावना देखने को मिली। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले का कल समापन हो गया। ये रिले पूर्व में फिजी से शुरू होकर पश्चिम में अमरीका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित की गई थी। फिजी स्थित भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में तिरंगा फहराने के साथ हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न भी मनाया गया। इस रिले में प्रवासी भारतीयों और भारत के मित्रों ने उत्साह के साथ भाग लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पुलिस प्रदेश में सेवा, सुरक्षा और सुशासन की असली रीढ़ है। मध्य प्रदेश करीब 35 साल बाद नक्सल मुक्त हुआ है। स्वाधीनता दिवस 2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक समारोह

16 अगस्त की शाम तक पूरा हो जाएगा तथा 17 अगस्त से खाद का वितरण प्रारंभ हो जाएगा। किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। आगामी 17 अगस्त से जितनी खाद चाहिए उतनी मिल सकेगी। साथ ही आगामी 20 अगस्त से हर किसान हर घर हर खेत खाद अभियान भी प्रारंभ हो रहा है, जिससे रबी की खाद इसी माह से किसानों को मिलना आरंभ हो जाएगी। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा या पुनर्वास न मिलने के आरोप गलत और भ्रामक हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अधिकांश पात्र परिवारों को पूरा मुआवजा और पुनर्वास लाभ मिल चुका है और कुछ मामलों में केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं ही शेष हैं। मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण वास्तविक रूप से प्रभावित सभी परिवारों के लिए पारदर्शी न्यायसंगत मुआवजे और सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब रुक करते हैं खेल की खबर का। पुरुष क्रिकेट में भारत आज गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन अपनी पहली पारी 288 रन पर 2 विकेट से आगे बढ़ाएगा। कल खेल समाप्त होने तक देवदत्त पड्डिकल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। राजा भोज मल्टीक्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप रैंकिंग के तीसरे संस्करण का समापन आज भोपाल के बोट क्लब में होगा। समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रतियोगिता के विभिन्न वर्गों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार और सम्मान प्रदान किया जाएगा। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय रैंकिंग तय की जाएगी। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव होने से जबलपुर, शहडोल, सागर और रीवा संभाग के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में कुछ इलाकों में 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। वहीं अगले 4 दिन तक जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग में सिस्टम का ज़्यादा असर रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को नर्मदापुरम, छतरपुर और उमरिया में अति भारी बारिश का अनुमान जताया गया था। वहीं जबलपुर, सागर, रायसेन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, शिवनी, बालाघाट, मंडला, रिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, कटनी, पन्ना, टीकमगढ़, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में भारी बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। माधव टाइगर रिजर्व शिवपुरी में बाघिन MT4 ने शावकों को जन्म दिया है। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने खुशी जताते हुए कहा है कि बाघ शावकों का जन्म प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों का सुखद परिणाम है। खंडवा, आगरमालवा, गुना, नीमच, धार, डिंडोरी और झाबुआ तथा सागर सहित प्रदेश के सभी जिलों में कल स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नर्मदापुरम जिले में दूध और दुग्ध उत्पादों की शुद्धता को लेकर विशेष अभियान के तहत पिछले 7 दिनों में करीब 1426 लीटर संदिग्ध घी जब्त किया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 7:20 हुए हैं। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत के अंतर्गत लीजिए सुनिए ये पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म एयरलिफ्ट से। संगीत कुमार का है और इस गीत को लिखा है कुमार ने, इस गीत को संगीत दिया है अमाल मलिक ने और इस गीत को अपनी आवाज़ दी है अमाल मलिक और अरिजीत सिंह के साथ साथ तुलसी कुमार ने। आइए सुनते हैं फिल्म एयरलिफ्ट से कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ।
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
5: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
4: मतलब?
5: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
4: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
3: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
6: हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:27 इस समय हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। लीजिए कार्यक्रम फिल्म संगीत के अंतर्गत सुनिए ये कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म भेड़िया से। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत सचिन जिगर का है और आवाज़ अरिजीत सिंह की है।

0: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
1: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
0: क्या, कैसे?
1: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
0: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
1: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत में लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म बैटमैन से। इस गीत को लिखा है कौसर मुनीर ने, संगीत अमित त्रिवेदी का है और आवाज़ अरिजीत सिंह की है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभी आपने सुना फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू से ये गीत, जिसको लिखा था सिद्धार्थ गरिमा ने, संगीत दिया था सचेत परंपरा ने और आवाज़ थी अरिजीत सिंह की। कार्यक्रम फिल्म संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जा रहा है। समय है कार्यक्रम में कार्यक्रम के अगले गीत को शामिल करने का। कार्यक्रम का अगला गीत लिया है फिल्म शादी में ज़रूर आना से। इस गीत को लिखा है शकील आज़मी ने, संगीत राशिद खान का है और आवाज़ अरिजीत सिंह की है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम से ये अगला गीत।

कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9

0: 9425072768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए।
2: आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: फिल्मी दुनिया का एक बेहद चमकीला स्टार सलमान खान।
1: विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
4: कार्यक्रम फिल्म संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम फिल्म संगीत में कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म मटरू की बिजली का मंडोला से। इस गीत को लिखा है गुलजार ने, संगीत विशाल भारद्वाज का है और आवाज़ रेखा भारद्वाज, शंकर महादेवन और मोहित चौहान की है। आइए सुनते हैं फिल्म मटरू की बिजली का मंडोला से कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: मन की बात है जन जन की बात, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर, माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात,
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत अब अपने समापन की ओर है। कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं फिल्म जॉली LLB 2 के इस गीत के साथ, जिसको लिखा है जुनैद वासी ने, संगीत चरंतन भट्ट का है और आवाज़ जुबीन नौटियाल और नीति मोहन की है। आइए सुनते हैं फिल्म जॉली LLB 2 से कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को हैं। कुछ ही देर में समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का

यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम में कलाकार हैं राधा परियार और उनके साथ ढोलक पर साथ दे रहे हैं अब्दुल हनीफ खान और सारंगी पर साथ दे रहे हैं उस्ताद अब्दुल मजीद खान। आइए सुनते हैं राधा परियार की आवाज़ में कार्यक्रम में ये अगला भजन।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम लोक संगीत में कलाकार हैं राधा परियार। कार्यक्रम लोक संगीत अब अपने समापन की ओर है। कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं राधा परियार की आवाज़ में इस गीत के साथ।

0: इसी के साथ कार्यक्रम लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम में कलाकार थी राधा परिहार और उनके ढोलक पे उनके साथ साथ दे रहे थे अब्दुल हनीफ खान और सारंगी पर उस्ताद अब्दुल मजीद खान। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। इस घंटे की खास खबर का प्रसारण अब आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए सभी राजनीतिक दलों से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जल्द से जल्द 33% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की अपील की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल आज़ादी के महापर्व कार्यक्रम में कहा कि आज के दौर का भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है और भारत की सेना देश के दुश्मनों को उनकी सीमा के अंदर जाकर मारने की हिम्मत रखती है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी का सुशासन और जनकल्याण पर केंद्रित दृष्टिकोण देशवासियों का सदैव मार्गदर्शन करता रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज UGC नेट जून 2026, CSIR नेट और ICAR की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अनंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। PhD कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। राजधानी भोपाल में आयोजित राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप रैंकिंग के तीसरे संस्करण का आज समापन होगा। समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग उपस्थित होंगे। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन अपनी पहली पारी 288 रन पर 2 विकेट से आगे खेलना शुरू करेगा। भारत ने कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्स तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 9:10 हुए हैं। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है सूचनाओं और समाचारों का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

श्रोता साथियों, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका रेडियो मित्र आयुष तोमर। आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहते, बल्कि अपने विचारों, व्यक्तित्व और कार्यों से देश के सार्वजनिक जीवन पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे, उनकी

पुण्यतिथि पर आज पूरा देश उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। वे बचपन से ही साहित्य और कविता के प्रति विशेष रुचि रखते थे। उनकी वाणी में ओज था, विचारों में गहराई थी और शब्दों में संवेदनशीलता। उनकी कई कविताएं बड़ी प्रसिद्ध थी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये उनकी कविता की कुछ पंक्तियाँ। यही कारण था कि वे भारतीय राजनीति के साथ साथ हिंदी साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में सफल रहे। अटल जी का राजनीतिक जीवन लंबे संघर्ष और समर्पण से भरा रहा। नैतिक मूल्यों की उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करते थे जो अनैतिक हो। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक नेताओं में रहे और बाद में भारतीय जनता पार्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अनेक दशकों तक संसद में सक्रिय रहे। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने और 1998 से 2004 तक पूर्ण कार्यकाल पूरा किया। प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी के कार्यकाल में भारत के अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां भारत ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण को कोई नहीं भूल सकता। पोखरण परमाणु परीक्षण ने भारत के सामरिक क्षमता को नई पहचान दी। वहीं उनकी सरकार ने बुनियादी ढांचे पर विकास किया और उस पर जोर भी दिया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से देश के प्रमुख महानगरों को बेहतर सड़क संपर्क से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। अटल जी केवल विकास और दृढ़ निर्णय के लिए ही नहीं बल्कि शांति और संवाद के समर्थक के रूप में भी जाने जाते थे। भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार के लिए उन्होंने बस यात्रा के माध्यम से शांति का संदेश दिया। उनका विश्वास था कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, लेकिन संबंधों को बेहतर बनाया जा सकता है। उनकी राजनीति में एक विशेष बात यह थी कि मतभेदों के बावजूद संवाद और लोकतांत्रिक मर्यादा को बनाए रखना। संसद में उनके भाषण आज भी भारतीय लोकतंत्र की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण माने जाते हैं। वे बहुत दूरदर्शी थे। वे विपक्ष के नेताओं के साथ भी सम्मानजनक व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थे। अटल जी की सबसे बड़ी पहचान शायद एक संवेदनशील कवि और राष्ट्रवादी चिंतक के रूप में भी रही। उनकी कविताओं में जीवन के संघर्ष, आशा, निराशा, राष्ट्रप्रेम और मानवीय संवेदनाओं की गहरी अभिव्यक्ति मिलती है। उनकी कविता की पंक्तियां हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, उनके जीवन दर्शन को दर्शाती हैं। कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहने और आशा को जीवित रखने का उनका संदेश आज भी प्रेरणा देता है। उनकी कविता युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत से कम नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इससे पहले उन्हें 1992 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। 16 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में उनका निधन हुआ। उनके निधन के साथ भारतीय राजनीति ने एक ऐसा नेता खो दिया जिसकी पहचान सत्ता से कहीं अधिक बड़ी थी। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए हमें केवल उनके राजनीतिक योगदान को नहीं बल्कि उनके विचारों और जीवन मूल्यों को भी स्मरण करना चाहिए। लोकतांत्रिक संवाद, राष्ट्रहित, सहिष्णुता, संवेदनशीलता और कठिन परिस्थितियों में भी आशा को बनाए रखना चाहिए। अटल जी का जीवन हमें सिखाता है कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा का अवसर भी हो सकती है। आज जब हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो यही कहना उचित होगा कि अटल जी हमारे बीच भले ही नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनकी कविताएं, उनकी वाणी और राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। आइए उनकी पुण्यतिथि पर हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि लोकतंत्र की गरिमा, राष्ट्र की एकता और समाज में सद्भाव को मजबूत करने के लिए हम अपना योगदान अवश्य देंगे।

कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे लोकतांत्रिक जीवन और न्याय व्यवस्था की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे दिवस के बारे में जो हमें कानून की महत्वता को और अधिक समझाता है। वह दिवस है डी ज्यूरे दिवस। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि डी ज्यूरे एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है कानून के अनुसार और विधि द्वारा मान्य। इसके विपरीत एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द है डी फैक्टो, जिसका अर्थ है वास्तविक रूप से या व्यवहार में। किसी व्यक्ति, संस्था, सरकार अथवा व्यवस्था की स्थिति को समझने के में इन दोनों अवधारणाओं का विशेष महत्व है। कोई व्यवस्था डी ज्यूरे हो सकती है, अर्थात उसे कानून की मान्यता प्राप्त हो सकती है, लेकिन व्यवहार में परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं। वहीं कोई व्यवस्था डी फैक्टो के रूप से अस्तित्व में हो सकती है, भले ही उसे औपचारिक कानूनी मान्यता प्राप्त ना हो। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में डी ज्यूरे की अवधारणा कानून के शासन अर्थात रूल ऑफ लॉ से गहराई से जुड़ी हुई है। इसका मूल विचार है कि देश में शासन किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं बल्कि कानून के अनुसार चले। भारत जैसे लोकतांत्रिक गणराज्य में संविधान सर्वोच्च विधिक आधार है। संविधान सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों और सीमाओं को निर्धारित करता है। प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। इसका अर्थ है कि राज्य की व्यवस्था किसी व्यक्ति के साथ मनमाना भेदभाव नहीं कर सकती। यही डी ज्यूरे व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है कि अधिकार और कर्तव्य द्वारा कानून निर्धारित होते हैं और उनका पालन सुनिश्चित करने के लिए संस्थाएं मौजूद होती हैं। न्यायपालिका की भूमिका इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होती है। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके कानूनी या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है। न्यायपालिका संविधान और कानूनों की व्याख्या करके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। डी ज्यूरे की अवधारणा में हमें यह भी याद दिलाती है कि कानून केवल किताबों में लिखे हुए नियमों का संग्रह नहीं, बल्कि कानून का वास्तविक उद्देश्य समाज में न्याय, समानता, स्वतंत्रता और व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या केवल कानून का होना पर्याप्त है? उत्तर है नहीं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कानूनों को व्यवहार में कितनी निष्पक्षता और प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। इसीलिए डी ज्यूरे और डी फैक्टो दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि संविधान किसी नागरिक को समानता का अधिकार देता है तो वह डी ज्यूरे का अधिकार है, लेकिन समाज में वास्तव में सभी नागरिकों को समान अवसर और सम्मान मिले, यह उस अधिकार की डी फैक्टो वास्तविकता को दर्शाता है। इसलिए एक स्वस्थ लोकतंत्र केवल अच्छे कानून बनाने से नहीं बनता, उसके लिए आवश्यक है कि कानूनों का निष्पक्ष क्रियान्वयन हो, संस्थाएं स्वतंत्र और जवाबदेह हो तथा नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों। भारत का संविधान हमें अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से नागरिकों से संविधान राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण और सार्वजनिक संपत्ति के प्रति जिम्मेदार व्यवहार की अपेक्षा करता है। आज के समय में डी ज्यूरे की अवधारणा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। डिजिटल युग में डेटा, निजता, साइबर अपराध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऑनलाइन अभिव्यक्ति जैसे नए विषय हमारे सामने हैं। कानून को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप विकसित होना ज़रूरी है ताकि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और तकनीकी प्रगति का लाभ आज समाज को मिल सके। अंततः कहा जा सकता है कि डी ज्यूरे केवल एक कानूनी शब्द नहीं बल्कि कानून के शासन की एक मूल भावना का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमें दिखाता है कि लोकतंत्र में सत्ता भी कानून के अधीन होती है और प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा कानून के माध्यम से की जाती है। आइए हम अपने संविधान और कानून के प्रति सम्मान की भावना रखते हुए एक ऐसे समाज के निर्माण में योगदान दें जहाँ कानून सर्वोपरि हो, न्याय सभी के लिए उपलब्ध हो और अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी ईमानदारी से पालन किया जाए।

0: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: मन की बात है जन जन की बात, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात।
2: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
3: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
2: छीन सकती है खुशियाँ हमारी, इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
3: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
2: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
3: और उसको पिएं छानकर उबालकर,
2: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
3: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
4: पानी रे पानी,
2: आओ मिलकर करें प्रयास,
3: शुद्ध पानी हो सबके पास।
5: कृपया ध्यान दें, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, पात्र लाभार्थियों और 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए आज ही आयुष्मान ऐप से अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं या डायल करें 1455।

0: श्रोताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 9:30 होने को हैं। सिंधी कार्यक्रम का प्रसारण अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: भोपाल केंद्र है, प्रस्तुत है सिंधी कार्यक्रम सिंधिया जी सुरहाण।

जय झूलेलाल दोस्तों, सिंधियत जी सुरहाण कार्यक्रम में मां तव्हांजी दोस्त तव्हांजी होस्ट जानवी भावनानी तव्हां सभिनी जो तहे दिल सां स्वागत थी कयां। दोस्तों, जॾहिं बि असां वॾड़नि जा पेर पवंदा आहियूं या उन्हनि लाइ को सुठो कमु कंदा आहियूं त उहे आशीर्वाद ॾेई चवंदा आहिनि त सदा ख़ुशि रहो ऐं जुग जुग जीओ। इन जी माना ई इहा आहे कि शल असां हमेशह हयात हुजूं। अगरि को माण्हू हिन दुनिया खे अलविदा थो करे पर तॾहिं बि उहो इन दुनिया में रही सघे थो त पंहिंजे हिन बेशकीमती अंगनि सां अंगदान कयो, जुग जुग जीओ। इहो ई अभियान सरकार जे स्वास्थ्य मंत्रालय ऐं नोटो पारां 16 भारतीय अंगदान दिवस शुरू कयो वियो आहे, जंहिंखे 3 अगस्त खां शुरू कयो वियो आहे, जेको राष्ट्रीय जन जागरूकता अभियान आहे। इन्हीअ जो उद्देश्य आहे कि माण्हुनि खे अंगदान जे लाइ जागरूक करणु। इहो अभियान नंढा गांव हुजनि या नंढा शहर, सभिनी हंधि हलायो वियो आहे। पंहिंजो अंगदान करे असां के मजबूर ऐं लाचार जी सहायता करे सघूं था ऐं असां उन्हनि जे ज़रिए हिन दुनिया में ज़िंदा बि रही सघूं था। जीअरे त सभु कम ईंदा आहिनि, मरण खां पोइ कंहिंजे कमु अची सघूं त इन्हीअ खां सुठो को कर्म ई कोन्हे। त अचो सभु मिली करे अंगदान जो प्रण कयूं। दोस्तों, इन्हीअ खां पोइ ॿुधूं था भगवंती नावाणीअ जो ॻायल ही सुहिणो गीतु।

0: दोस्तों आयुर्वेद भारत जी 5000 साल पुरानी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिया है। आयु यानि जीवन, वेद यानि विज्ञान, यो शब्द जेको आहे वो इन बिन्हीं शब्दन सा मिली करे ठयो आहे। ही सिर्फ एक बीमारी जो इलाज कान कंदो आ, बल्कि शरीर मन आत्मा के स्वस्थ रखण जो पूरो तरीको सेखारींदो आ। आयुर्वेद जी पद्धति छाए ऐं उन जी चुनौतियूं छाहिन, इन विषय ते अॼु असांजे आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद आहिनि डॉक्टर लीना गेहानी जी ऐं उन सां गॾु असांजे आकाशवाणीअ जी ही भेण चित्रा चेलानी पाण में भेंट वार्ता कंदियूं ऐं असांखे इन विषय जे बारे में अञा जानकारी ॾींदियूं। त अचो ॿुधूं था उन्हनि जा वीचार।
1: लीना जी, तव्हांजो आकाशवाणी भोपाल में स्वागत आहे।
2: धन्यवाद मैडम।
1: लीना जी, सब का पहरी तवा असा के यो बुधायो त आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी खां केतरी अलग आहे ए हन जी छा विशेषता आहे?
2: आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति या प्राचीन भारतीय चिकित्सा विधान आहे। जियां त तां भी बुधायो, व्यक्ति जे शरीर मन ए आत्मा जे मिजान के सही कंदी आहे। आयुर्वेद में फितरती इलाज ते जोर दियो वेंदो आ, जियां त वात पित्त ए कफ दोष जो शरीर में अंश जाने करे उन जे हिसाब सां इलाज कयो वेंदो आ। एलोपैथी दवाऊं बेशक जल्दी कारगर हुंदियूं आहिन, पर कई साइड इफेक्ट भी गड़गड़ हुंदा आहिन। पर आयुर्वेद जी चिकित्सा कुदरती दवाऊं ते मदार रखंदी आहे, जंहिं करे इन जा साइड इफेक्ट्स न जे बराबर हुंदा आहिन।
1: पंचकर्म चिकित्सा छा थींदी आहे, इन जे बारे में बि असांखे कुझु ॿुधायो।
2: जी बिल्कुल, आयुर्वेद में बीमारियुनि जो जड़ खां इलाज कयो वेंदो आ, जंहिं करे पंज कर्मनि द्वारा शरीर जी शुद्धि कई वेंदी आहे। जंहिंमां पहिरों कर्म आहे वमन, जंहिंमें उल्टी कराए मुख जे ज़रिए दोषनि खे ॿाहिरि कढणु हूंदो आहे। वमन चिकित्सा या पुराणी खंग, सहको, थोल, इन्हनि बीमारियुनि ते कारगर हूंदी आहे। ॿियो आहे विरेचन, इन में जुलाब कराए शरीर मां दोषनि खे मल मार्ग तां कढ

0: रण हूंदो आहे। विरेचन मूंखे त जो चमड़े जा रोग हूंदा आहिनि ऐं पेट जी बीमारियूं हूंदियूं आहिनि, एसिडिटी हूंदी आहे या पुरानी कब्ज़ जेकी हूंदी आहे उन ते वधीक कारगर हूंदी आहे। ऐं टियों कर्म आहे बस्ती। इन जो तव्हां सभई ॿुधियो बि हूंदो कि इन खे पाण सामान्य भाषा में एनीमा चवंदा आहियूं या एनीमा चई सघूं था, पर इहो एनीमा नॉर्मल पाणीअ जो एनीमा न थी करे इहो आयुर्वेदिक एनीमा हूंदो आहे, जेको जड़ी बूटियुनि जे तेल सां काढ़े सां ठहियलु एनीमा हूंदो आहे। त इहे जेकी बस्ती चिकित्सा हूंदी आहे या सभिनीनि वातनि जे वात जे विकारनि ते कमु कंदी आहे, जीअं त ऑस्टियोआर्थराइटिस थियो, बैक पेन थियो, स्पॉन्जिलाइटिस थियो, शियाटिका जहिड़ी बीमारियूं थियूं। ऐं चौथों कर्म आहे नस्य, जंहिंखे पाण सिंधी भाषा में नास बि चई सघूं था। त नस में नस्य या नास में ईअं थींदो आहे कि औषधि जो जेको जड़ी बूटियुनि जी औषधियूं हूंदियूं आहिनि उनजे तेल जो या उनजे रस जो नक में ड्रॉप्स जे स्वरूप में प्रयोग थींदो आहे। त इन नस्य चिकित्सा जो जेको मेन रोल आहे उहो हेयर फॉल जहिड़ी बीमारियूं या समय खां पहिरियां अॼुकल्ह कई माण्हू हूंदा आहिनि जंहिंजा वार अछा थी वेंदा आहिनि, माइग्रेन जहिड़ी बीमारी आहे ऐं पुराणी सर्दी आहे, अहिड़ी कई बीमारियुनि ते इहो नस्य कारगर थींदो आहे। ऐं जो पंजो कर्म आहे उहो आहे रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण बि तव्हां ॿुधियो हूंदो कि आयुर्वेदिक जी हिकिड़ी मुख्य चिकित्सा जे रूप में कमु कंदी आहे ऐं आयुर्वेद जो ॾाढो इम्पोर्टेंट पार्ट आहे इहो रक्त मोक्षण। त रक्त मोक्षण में ज़ोर जे द्वारा ज़ोर लॻाई करे जेकी हिकिड़ो कीड़ो ईंदो आहे जंहिंखे पाण लीच बि चई सघूं था, त उन जे द्वारा या डायरेक्टली सिराउनि मां अशुद्ध रक्त खे ॿाहिरि कढणु थींदो आहे। त रक्त मोक्षण जे द्वारा मुख्यतः जेकी स्किन जी बीमारियूं हूंदियूं आहिनि सभई उन जो इलाज कयो वेंदो आहे। त हे पंज कर्म जेके हूंदा आहिनि हे आयुर्वेद जो मुख्य चिकित्सा आधार आहे।
1: मतिलबु चिकित्सा जा पंज अलॻि अलॻि रस्ता थिया शरीर मां रोग कढण जा हिकु तरह सां। लीना जी, इहा आम धारणा आहे कि आयुर्वेदिक उपचार कुझु सिलो असर थो ॾेखारे, माना आपातकाल में एतिरो प्रभावी न आहे, त इहा ॻाल्हि केतिरी सही आहे?
0: जी, रोगनि जो जड़ सां इलाज करण लाइ इहो आयुर्वेद जो प्रमुख भाग आहे, जंहिं करे आयुर्वेद शरीर जे मॉलिक्यूलर लेवल ते कमु कंदो आहे। इहो ई कारण आहे कि आयुर्वेद धीमी गतिअ सां कमु कंदो आहे। पर इहो चवणु बि ग़लति थींदो कि आपातकाल में आयुर्वेद प्रभावी न आहे। कई अहिड़ियूं स्थितियूं हूंदियूं आहिनि जीअं त हार्ट अटैक थियो, एक्सीडेंट्स आहिनि, स्ट्रोक्स आहिनि, हिन में माण्हूअ खे तुरंत उपचार जी आवश्यकता थींदी आहे। त हिन में आयुर्वेद सां गॾु गॾु एलोपैथी जो बि सहारो वठणु ज़रूरी हूंदो आहे। पर आयुर्वेद में बि अहिड़ी कई हर्बो मिनरल दवाऊं हूंदियूं आहिनि जेके इमरजेंसी ट्रीटमेंट में कमु अची सघनि थियूं। हिननि दवाउनि खे रस औषधि बि चई सघूं था पाण।
1: मतिलबु आपातकाल में जेकर आयुर्वेद पूरी तरह सां कारगर न हुजे त असां एलोपैथी खे गॾु खणी हिन खे प्रभावी ठाहे सघूं था।
0: जी बिल्कुलु, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट करे सघूं था आयुर्वेद ऐं एलोपैथी जो।
1: जी, ऐं लाइफ स्टाइल डिज़ीज़िस अॼुकल्ह ॾिसूं था हर घर में बीपी, शुगर, इहे बीमारियूं थी वियूं आहिनि, हर घर में मौजूदु आहिनि, त इन्हनि जे इलाज में आयुर्वेद केतिरो प्रभावी आहे?
0: बिल्कुलु सही ॻाल्हि कयो तव्हां मैडम। लाइफ स्टाइल डिज़ीज़ असांजे ग़ैर मुनासिब खाधे पीते ते ऐं ग़ैर मुनासिब व्यवहार सां पैदा थींदियूं आहिनि, जीअं त डायबिटीज़ थियो, मोटापो, हाई ब्लड प्रेशर थियो, थायरॉइड डिसऑडर्स अॼुकल्ह ॾाढो कॉमन आहे। हर घर में लॻभॻि हिकु ॿ या ॿ पेशेंट थायरॉइड डिसऑडर्स जा हूंदा ई आहिनि। ऐं अॼुकल्ह जी हिकदमि बर्निंग जेकी प्रॉब्लम आहे ज़ाइफ़ुनि में थियण वारी, किशोरियुनि में बि 16-17 ईयर्स ताईं शुरू थियण वारी इहा बीमारी आहे, लाइफ स्टाइल डिज़ीज़, जेके पाण PCOD चवंदा आहियूं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़, जंहिंमें कन्याउनि जी या लेडीज़ जी जेकी महीने जी प्रॉब्लम आहे उनखे उनमें इरेग्युलरिटीज़ अची सघनि थियूं, इनफर्टिलिटी थी सघे, त अहिड़ियूं जेके बीमारियूं आहिनि हे सभई लाइफ स्टाइल डिज़ीज़िस में काउंट थींदियूं आहिनि। आयुर्वेद जी आयुर्वेद में हिकु जीवन शैली खे सही रखण लाइ कई एक्टिविटियूं अहिड़ियूं ॿुधायल आहिनि, जीअं त दिनचर्या थी, ऋतुचर्या थी ऐं भोजन ग्रहण करण जा सही नियम ॿुधाया आहिनि। त इन्हनि सभिनीनि एक्टिविटीज़ जो अगरि रेग्युलरली पालन कयूं था त लाइफ स्टाइल बीमारियुनि सां बचाव करणु मुमकिन आहे।
1: जी, आयुर्वेद एतिरो प्रभावी त आहे लाइफ स्टाइल डिज़ीज़ में विशेष रूप सां, पर उन खां पोइ बि चङनि माण्हुनि में अॼु ॾिसूं था त आयुर्वेद जे प्रति अञा उदासीनता आहे कुझु, या वरी एलोपैथी जे कंपैरिजन में अञा बि हिन जो चलन कुझु घटि आहे। तव्हां छा था समुझो इन्हीअ जो छा कारणु आहे?
0: एलोपैथी खे आयुर्वेद खां वधीक अहमियत ॾियण जे पोइतां कुझु कारण थी सघनि था, जीअं त माण्हुनि खे इमीजिएट रिज़ल्ट जी अपेक्षा हूंदी आहे। ऐं एलोपैथी जा जीअं पेन किलर्स हूंदा आहिनि, एंटीबायोटिक्स हूंदा आहिनि, तुरंत असर कंदा आहिनि। पर इहो जेको इलाजु हूंदो आहे इहो सिम्पटोमेटिक इलाजु हूंदो आहे, माने पेशेंट खे तंहिं महिल ॾाढो सुठो लॻंदो, लेकिन अञा बीमारीअ खे पूरी तरीक़े सां जड़ सां हिन जो नाश न थियल आहे। कई माण्हुनि खे आयुर्वेद जे बारे में अवेयरनेस बि कान्हे, न आहे कि आयुर्वेद सभिनीनि बीमारियुनि ते कारगर थी बि सघे थो। आयुर्वेद जे प्रति उदासीनता जो हिकिड़ो कारण इहो बि थी सघे थो कि हिन में अञा साइंटिफिक रिसर्च ऐं जे दवाउनि ते जेकी स्टैंडर्डाइज़ेशन थींदी आहे उन जी अञा कमी आहे। पर इहो चवणु बि ग़लति थींदो कि आयुर्वेद जो चलन घटि आहे, छोकी पाण ॾिठोसीं COVID-19 पेंडेमिक में असां सभिनीनि इम्यूनिटी वधाइण लाइ वधीक सां वधीक माण्हू आयुर्वेद ते मदार रखणु लॻिया।
1: जी, या त तव्हां बिल्कुलु सही ॻाल्हि चई, आयुर्वेदिक उपचार में एक रूपता अचणु घुरिजे त ही एक रूपता अची सघे, ऐं जेके दवाऊं आहिनि उन में साक्ष्य आधारित गुणवत्ता बि मेंटेन थिए, त इन दिशा में छा कम थी रहिया आहिनि?
0: बिल्कुलु, आयुर्वेद जी दवाउनि जो स्टैंडर्डाइज़ेशन ऐं एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट थियणु, माने जेकी दवाऊं ठहनि थियूं उहा पैरामीटर्स ते खरो उतरण लाइ उनखे रिसर्च थियणु हुन जे मथां। ऐं भारत सरकार जी हिकिड़ी इहा संगठना बि आहे, तव्हां ॿुधियो हूंदो, CCRS करे, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसिस, आयुष मिनिस्ट्री द्वारा संचालित थींदो आहे। त CCRS आयुर्वेद चिकित्सा जे विषय में इलाज जा जेके बि इलाज थींदा आहिनि उन्हनि जा रिसर्च प्रोजेक्ट हलाईंदो आहे। आयुर्वेद जी दवाउनि जी क्वालिटी चेक कंदा आहिनि, केतिरियूं असरदार आहिनि, हिननि सभिनीनि पैरामीटर्स ते इहो CCRS कमु कंदो आहे।
1: जी, रिसर्च जारी आहे।
0: जारी आहे, बिल्कुलु।
1: जी, ऐं अॼुकल्ह आयुर्वेद जे विषय में भ्रामक प्रचार जा मामला बि साम्हूं था अचनि, त इन्हीअ सां कीअं पुॼी सघूं था?
0: इहा हिकु गंभीर समस्या आहे कि इलाही माण्हू आयुर्वेद जे विषय में ग़लति ऐं भ्रामक प्रचार करनि था। हिन सां बचण लाइ सभिनीनि खे खपे त सर्टिफाइड आयुर्वेद चिकित्सक सां ई इलाजु कराइणु घुरिजे, जेके डिग्री होल्डर्स आहिनि, BAMS जी बैचलर्स ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी जी जेकी डिग्री आहे उहा ऑथेंटिक डिग्री आहे, ऐं उन खां पोइ MD बि थींदो आहे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स में, जीअं ज़ाइफ़ुनि जो रोग थियो, मेडिसिन थी, पंचकर्म थियो, ॿारनि जा बि पीडियाट्रिशियंस बि आयुर्वेद थींदा आहिनि। त अहिड़नि चिकित्सक सां इलाजु कराइणु घुरिजे, ऐं अहिड़ा जेका पाण खे डॉक्टर घोषित करण वारा पर बिना आयुर्वेद जी डिग्री जा इलाही माण्हू हूंदा आहिनि, जड़ी बूटियुनि सां इलाजु करण वारा, वैद्य विशारद पाण खे चवण वारा, अहिड़नि माण्हुनि सां इलाजु कराइण सां परहेज करण ही, उन्हनि जी अवेयरनेस ॾियण ई ॾाढी ज़रूरी आहे।
1: मानसिक विकार बि अॼुकल्ह ॾाढा वधी विया आहिनि, डिप्रेशन थी वियो, या वरी नंढड़नि ॿारनि में ऑटिज़म थी वियो, त इन में आयुर्वेद प्रभावी आहे?
0: आयुर्वेद में शारीरिक स्वास्थ्य खां गॾु गॾु मानसिक ऐं आध्यात्मिक स्वास्थ्य ते बि घणो ई ज़ोर ॾिनल आहे। अहिड़ा चङई कर्म आहिनि जीअं त शिरोधर आहे ऐं नास आहे, नस्य आहे, योगा जेको आयुर्वेद जो हिकु अंग आहे, ऐं ध्यानु आहे, त अहिड़ी आयुर्वेदिक जीवन शैली जेके मानसिक विकारनि ते कारगर आहे। अहिड़ा कई द्रव्य बि आहिनि, ड्रग्स आहिनि आयुर्वेद में, जीअं ब्राह्मी थियो, शंख पुष्पी, जटा मानसी, इन्हनि खे मेध्य द्रव्य चयो वेंदो आहे। त अहिड़ियूं सभियूं आयुर्वेदिक दवाऊं मानसिक विकारनि ते चङो ई सुठो रिज़ल्ट ॾेखारे सघनि थियूं।
1: त लीना जी, हलंदे हलंदे मां चाहियां थी त तव्हां असांखे इहो बि ज़रूरु ॿुधायो कि पंहिंजे रोज़मर्रा जे जीवन में असां आयुर्वेद खे कीअं था जोड़े सघूं।
0: बिल्कुलु मैडम, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद जो बि इहो ई नारो आहे कि घर घर आयुर्वेद पहुचणु घुरिजे। त आयुर्वेद में उत्तम जीवन शैली ॿुधाई वई आहे, जंहिंमें ब्रह्मा मुहूर्त ते उथण खां वठी राति जो सुम्हण ताईं जो होलिस्टिक नियम आहे, उन्हनि जो पालन करे सघूं था, दिनचर्या कॾहिं समय मिलियो त असां दिनचर्या ते ॾाढो ॻाल्हाईंदासीं कि हुन में कहिड़ी कहिड़ी दिनचर्या एक्टिविटीज़ वर्णन थियल आहे उन्हनि जो उनजो पंहिंजे दैनिक

0: जीवन में असां उपयोग करे सघूं था। आयुर्वेद जी हिकिड़ी विशेषता हीअ बि आहे कि हिन में हर मुंद जे मुताबिक़, हर ऋतु जे मुताबिक़ भोजन करण जो ऐं रहण जो तरीक़ो हिन में ज़िक्र आयुर्वेद में मिलंदो आहे। मिसाल जे तौर ते इहा जेकी शरद ऋतु हले थी, हिन में हिन मां शरीर जो पित्त वधी वेंदो आहे ऐं हिन लाइ हिन मुंद में भोजन हल्को करणु घुरिजे। भोजन जे बारे में जेके नियम ॿुधायल आहिनि हुननि खे अपनाइणु ज़रूरी आहे। हिन शरद ऋतु में आवरो, डाख, शतावरी अहिड़े ड्रग्स जा सेवन करणु घुरिजे। त हर मुंद जे मुताबिक़ जेको आहार ॿुधायल आहे हिन में आयुर्वेद में, हुनखे पाण ऋतुचर्या चई सघूं था। त ऋतुचर्या जो बि ज़िक्र असां कॾहिं समय मिलियो त ज़रूरु कंदासीं मैडम
1: जी। माना पंहिंजी जीवन शैली में वधीक सुधार जी ज़रूरत आहे, जीअं चइबो बि आहे त प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जी महिरबानी लीना जी, अॼु असां सां तव्हां जुड़िया ऐं असांजे श्रोताउनि में सुजाॻी आणण जो कमु कयव, तव्हांजा लख थोरा आहिनि।
0: जी मां बि आकाशवाणी भोपाल जी आभारी आहियां जो तव्हां मूंखे हिन भेंट वार्ता में आयुर्वेद विषय ते ॻाल्हाइण लाइ आमंत्रित कयो। धन्यवाद
2: दोस्तो। हाणे हिकु ॼाण, अॼु जे ज़माने में विज्ञान ऐं तकनीक असांजी ज़िंदगीअ जो अहम हिसो ठही वियो आहे। मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ऐं ॿिया इलेक्ट्रॉनिक सामान वापराइण हर घर में थींदो आहे। इन मां निकिरंदड़ कचरे खे ई वेस्ट चवंदा आहिनि। ई वेस्ट जो प्रबंधन अॼु पूरी दुनिया लाइ ज़रूरी आहे। ई वेस्ट वधंदो थो वञे ऐं उन जो कारण आहे रोज़ नवां बदिलाउ। कंपनियूं नवां नवां मॉडल बाज़ारि में आणींदियूं आहिनि, जंहिं करे माण्हू पुराणा मोबाइल ऐं कंप्यूटर छॾे नवां मॉडल वठनि पिया। घणेई दफ़ा त इलेक्ट्रॉनिक सामान जी मरम्मत एॾी महांगी पवंदी आहे कि माण्हू उन खां नओं वठणु पसंदि कंदो आहे। इन सभिनी सां ई ई वेस्ट वधंदो आहे ऐं जंहिंसां घणेई नुक़सान बि थियनि था। ई वेस्ट में जेके हानिकारक रासायनिक शयूं हूंदियूं आहिनि, हिन खे अगरि खुलियल मैदान में फिटी कयूं या ग़लति तरीक़े सां साड़ियो वञे त इन में जेके ज़हरीला पदार्थ हूंदा आहिनि उहे पाणी ऐं ज़मीन में मिली सघनि था, जंहिंसां पर्यावरण ऐं माण्हुनि खे घणेई नुक़सान पहुचे सघे थो। हिन खे साड़बो त ज़हरीली गैसियूं पर्यावरण खे अञा प्रदूषित कंदियूं, जंहिंसां माण्हुनि में साह जी बीमारी, स्किन जी बीमारी ऐं ॿिए बि घणेई बीमारियूं थी सघनि थियूं। दोस्तो, इन करे ही ई वेस्ट जो सही प्रबंधन पर्यावरण खे संभाले रखण में ॾाढो ज़रूरी आहे। ई वेस्ट खे आम कचरे सां गॾु न फिटी करे अलॻि जमा करे रीसाइक्लिंग केंद्रनि ते ॾियणु घुरिजे, जिते उहे इलेक्ट्रॉनिक सामान में शामिल जेके ज़रूरी पदार्थ आहिनि उन्हनि खे सुरक्षित तरीक़े सां अलॻि करे वरी इस्तेमालु करे सघनि। अचो सभु मिली करे इहा जानकारी पाण बि हंडायूं ऐं सभिनी ताईं पहुचायूं ऐं पंहिंजे पर्यावरण खे गॾो गॾु सुरक्षित बि बणायूं। दोस्तो, इन ॼाण खां पोइ हिकु ॿी ॼाण बि मां ॾियणु चाहींदमि। हर साल 19 अगस्त ते विश्व फोटोग्राफी दिवस मल्हायो वेंदो आहे। फोटोग्राफी सिर्फ़ फोटो खीचण जो हुनर न आहे, हिकु अहिड़ी कला आहे जेकी गुज़िरियल पलनि ऐं यादुनि खे वरी ज़िंदो रखंदो आहे। हिकु तस्वीर बिना शब्दनि जे ॾाढो कुझु बयां कंदी आहे। फोटोग्राफीअ जे ज़रिए असां दुनिया खे हिकु अलॻि नज़रिए सां ॾिसण ऐं समुझण जी कोशिशि कंदा आहियूं। हिन ॾींहुं खे मल्हाइण जो ख़ासि कारण आहे त असांजे हर हिकु पल खे जेके तस्वीर में क़ैद कंदा आहिनि उहे आहिनि असांजा फोटोग्राफर। उन्हनि जे हुनर जी सराहना थी कई वञे। फोटोग्राफर पंहिंजे कैमरा जे ज़रिए अहिड़ियूं तस्वीरूं असांजे साम्हूं आणींदा आहिनि जंहिंजी असां कल्पना बि नथा करे सघूं। फोटोग्राफी इतिहास खे महफ़ूज़ रखण में वॾी भूमिका रखे थी। पुराणा शहर, इमारतूं, आंदोलन, युद्धनि ऐं समाज जी हर घटना या किसनि जूं तस्वीर असांखे पंहिंजे अतीत जी जानकारी ॾियनि थियूं। अहिड़ियूं घणेई ऐतिहासिक घटनाऊं तस्वीरनि जे ज़रिए अचण वारी पीढ़ियुनि ताईं पहुचनि थियूं। प्रकृतिअ जी ख़ूबसूरती, जंहिंमें पहाड़, नदियूं, जंगल, फल फूल, पक्षी, जानवर, सभिनी जूं तस्वीर अहिड़ियूं आहिनि जेके मन ई मोहे छॾींदियूं आहिनि। हाणे त मोबाइल फ़ोन जे ज़रिए फोटोग्राफी हर इंसान जी पहुच में आहे। सोशल मीडिया जे वधंदड़ इस्तेमाल सां फोटोग्राफीअ जी अहमियत अञा वधी वई आहे। अॼु तस्वीर सिर्फ़ु यादुनि लाइ न, पर शिक्षा, समाचार, विज्ञान ऐं सोशल मीडिया लाइ घणेई इस्तेमालु थींदियूं आहिनि। अॼु जी नई टही फोटोग्राफीअ में वधीक रुचि थी रखे, फोटोग्राफीअ में पंहिंजो केरियर ठाहिण थी चाहे, जीअं त वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी या स्पोर्ट्स, अहिड़ा ई घणेई करियर आहिनि जंहिंमें असांजी नई टही अॻियां वधी रही आहे। अॼु जी तकनीक सां कैमरा बि बहितर थी विया आहिनि। विश्व फोटोग्राफी दिवस असांखे इहो यादि थो ॾियारे कि हर हिकु फोटो घणेई शब्द, घणेई कहाणियूं बयां कंदो आहे। पर हा, हिन खे सही इस्तेमालु करणु घुरिजे। घणेई दफ़ा फोटोग्राफीअ खे या तस्वीरुनि खे ग़लति तरीक़े सां इस्तेमालु कयो वेंदो आहे या उन जो ग़लति फ़ाइदो खयो वेंदो आहे। त दोस्तो, हिन ॼाण खां पोइ

दोस्तों, हर साल वांगुर हिन साल बि 19 अगस्त ते विश्व मानवतावाद दिवस मल्हायो वेंदो आहे। ही ॾींहुं हुन तमामु मानवतावादी कार्यकर्ताउनि ऐं सेवकनि खे सम्मान ॾियण लाइ मल्हायो वेंदो आहे, जेके कंहिं बि मुश्किल हालात में फाथल माण्हुनि जी सहायता था कनि। मानवता जो मतिलबु इहो आहे कि बिना कंहिं भेदभाव सां ज़रूरतमंद इंसान जी सहायता करणु या उन जो दुख दर्द समुझणु। मानवता असांखे इहो सेखारे थी कि हर इंसान सां हिकु जहिड़ो व्यवहार करणु घुरिजे। जाति, धर्म, भाषा, अमीर ग़रीब कंहिं सां बि भेदभाव न कजे। मुश्किल समय में हिकु ॿिए जी मदद करणु ई सची मानवता आहे। मानवतावादी कार्यकर्ता मुश्किल वक़्त में ज़रूरतमंद जी मदद कंदा आहिनि। प्राकृतिक आपदा जीअं त बाढ़ हुजे, भूकंप आहे, तूफ़ान आहे, उन जे समय ज़रूरतमंद ताईं रोटी, पाणी, कपिड़ा ऐं दवाऊं पहुचाइणु, ग़रीबनि जी मदद करणु, बुखियलनि खे मानी ॾियणु, बीमारनि जी सेवा करणु, ई त मानवता जो वॾो उदाहरणु आहे। अगरि दुनिया में सभु हिकु ॿिए जे दुख तकलीफ़ खे समुझणु लॻंदा त समाज में शांती, प्रेम वधीक मज़बूत थींदो। मानवता खां वॾो कोई धर्म न आहे। दुखियलनि जी सेवा करण खां वॾो कोई सुख न आहे। बिना स्वार्थ जे सेवा करणु ई सची इंसानियत आहे। असां सभु मिली करे कोशिशि कयूं त समाज में प्रेम ऐं भाईचारे खे वधायूं। दोस्तों, हाणे वक़्तु थियो आहे अॼु जे कार्यक्रम खे पूरो करण जी। ॾींदा इजाज़त पंहिंजी रेडियो साथी जानवी भावनानीअ खे। उमेद आहे त तव्हांखे इहो कार्यक्रम वणियो हूंदो। तव्हां पंहिंजा राय पंहिंजे ख़तनि ज़रिए असांखे आकाशवाणीअ ते मोकिलींदा या असांजे फेसबुक पेज ते बि पोस्ट कंदा। मिलूं था हिकु नई ख़ुशीअ सां, हिकु नई उमेद सां, हिकु नए कार्यक्रम सां। सभ जो भलो।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे सिंधी कार्यक्रम सिंधिया जी सुरहाण। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर, तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बड़वानी जिले की चिट्ठी। आलेख शिवपाल सिंह सिसोदिया का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। पूरे देश के साथ साथ बड़वानी जिले में भी स्वतंत्रता दिवस परंपरागत गौरवपूर्ण तरीके से मनाया गया। मुख्य समारोह जिला मुख्यालय के शासकीय महाविद्यालय में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कलेक्टर जयती सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। जिले में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर जिला मुख्यालय पर बाइक रैली का आयोजन किया गया। 15 अगस्त से आगामी 7 दिनों तक चरणबद्ध तरीके से ग्राम सभाओं का आयोजन भी जिले में किया जा रहा है। अगर मौसम की बात की जाए तो पश्चिमी निमाड़ के बड़वानी जिले में इन दिनों बारिश का दौर जारी है। कृषि विभाग के अनुसार किसानों द्वारा बोवनी का कार्य पूर्ण हो चुका है। नर्मदा के तटीय इलाकों में बैंक वाटर का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। जिला प्रशासन द्वारा तटीय इलाकों पर लगातार नजर रखी जा रही है। ठीकरी में शिविर में 50 दिव्यांगजनों को बीते दिनों 91 उपकरण और वयोश्री योजना के तहत 17 वरिष्ठ जनों को 95 उपकरण वितरण के लिए चिन्हित किया गया। पिछले दिनों जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने ग्राम अंजड़ में जन अभियान परिषद तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ पौधरोपण किया। प्रभारी मंत्री ने सिंधवा माइक्रो उद्वहन परियोजना के पंप हाउस का निरीक्षण भी किया। महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं डॉ. वरुण कपूर ने बीते दिनों केंद्रीय जेल बड़वानी का निरीक्षण किया। उन्होंने जेल की पाकशाला में तैयार किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से परीक्षण किया। बीते दिनों राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिला एड्स नोडल अधिकारी डॉ. राजेश गुप्ता ने बताया कि 12 अगस्त से 12 अक्टूबर तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जिले में पेयजल संबंधित समस्याओं, अतिवृष्टि एवं बाढ़ से उत्पन्न किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने तथा जनधन की क्षति से बचाव के लिए बाढ़ आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। जिले का कोई भी नागरिक जल भराव, पेयजल समस्या या बाढ़ से जुड़ी आपातकालीन सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 9111783632 पर तत्काल संपर्क कर सकता है। नंबर एक बार पुनः सुन लें, आपातकालीन सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 9111783632 पर संपर्क किया जा सकता है। नागपंचमी के अवसर पर जिले के नागलवाड़ी भीलट देव मंदिर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रविवार रात्रि से ही मंदिर में पूजा अर्चना प्रारंभ होकर दिन भर भक्तों का हुजूम दर्शनार्थ लगा रहेगा। इस अवसर पर भव्य मेला भी आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के पहले दिन बोरलाय और बालकुआ क्लस्टर की 20 ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत तलून खुर्द में आयोजित मूल्यांकन शिविर में कलेक्टर जयती सिंह ने आवेदनों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र नागरिक शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। इस शिविर में 900 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 800 से अधिक मामलों का निराकरण किया गया। शिविर में 221 नागरिकों के आयुष्मान कार्ड तथा 160 हितग्राहियों का समग्र EKYC सफलतापूर्वक पूरा कराया गया। वहीं मैत्री गौसेवक योजना के अंतर्गत 10 युवाओं द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए गए। बीते 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय बड़वानी में रैली और आम सभा का आयोजन किया गया। परंपरागत वेशभूषा और आदिवासी गीतों पर नृत्य करते युवा इस रैली में शामिल हुए। एक सप्ताह तक यह दिवस जिले के विभिन्न ग्रामों में आयोजित किया जाता रहा। कार्यक्रम में आदिवासी समुदाय के लोगों ने जल, जंगल, जमीन, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर अपनी बातें रखी। वहीं नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.0 के तहत बीते 24 जुलाई को जिले भर में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में 16,700 विद्यार्थियों ने हिस्सा लेकर ड्रग्स के खिलाफ संदेश दिया। इस सामूहिक भागीदारी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने स्वीकार कर अपने रिकॉर्ड में शामिल कर लिया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की टीम ने टीम लीडर SP पद्म विलोचन शुक्ल को प्रमाण पत्र सौंपकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछले दिनों जिला मुख्यालय के पास नवनिर्मित खाटू श्याम मंदिर में दर्शन कर साधु संतों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बड़वानी में जनविश्वास अभियान के जिला स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेकर लोगों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने शासकीय योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को समय सीमा में पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। वहीं इसके उल्लंघन पर 7 अधिकारी तथा कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश भी दिए। जिले की प्रतिभाएं खेल जगत में अपनी चमक बिखेर रही हैं। इसी क्रम में ग्राम जुलवानिया के दो होनहार खिलाड़ियों शिवान सोटवाल और अथर्व गुप्ता ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग की सब यूथ कैटेगरी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कलेक्टर जयति सिंह ने दोनों खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बड़वानी जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। समय है कार्यक्रम में कार्यक्रम की पहली फरमाइश को शामिल करने का। कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है राजकोट गुजरात से। फरमाइश करता है रश्मि झरना और भरत कुमार। एक फरमाइश हमें और प्राप्त हुई है बिहारी कॉलोनी महासमंद से मोहम्मद याकूब आसमा कुरैशी, मोहम्मद यूसुफ आसमा कुरैशी। जेल रोड मथुरा से सरफुद्दीन बेलदार, अल्ताफ बेलदार, कल्लू मल्लू कलिया बेलदार। इसी के साथ खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। संदलपुर आत्री से कालीचरण यादव, उर्मिला देवी यादव, चांदनी यादव और दीपक यादव की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म आन मिलो सजना से इस गीत की, जिसको लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और आवाज़ लता मंगेशकर की है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
3: सच?
2: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
3: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए तो
2: बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
3: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
2: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में समय है कार्यक्रम की अगली फरमाइश को शामिल करने का और कार्यक्रम के अगले गीत को शामिल करने का। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है पटेल नगर मलोट से। डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और आरजू जाजौरिया के साथ साथ गुड्डू की। इसी के साथ कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर और राजेश, राकेश और ऋषिता की। जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह और अंकिता सिंह की। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा की। हिंदू रेडियो मित्र बनने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा की। और काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सुरेशे, सुषमा सुरोशे, परिधि सुरोशे और मायरा सुरोशे की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म शराबी से इस गीत की, जिसको लिखा है अनजान ने, संगीत बप्पी लहरी का है और आवाज़ है किशोर कुमार और आशा भोसले।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश को कार्यक्रम में शामिल करते हैं जो कि हमें प्राप्त हुई है रोहिदास चौक पंढरपुर शहर से। सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, प्रशांत शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़के और इसी के साथ एक फरमाइश हमें और प्राप्त हुई है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा की। सेलार पहलगांव से, पहलगांव कश्मीर से पीरजादा मिराज उद्दीन की, निज़ामुद्दीन की, कैसर उद्दीन की और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म अभिमान से इस गीत की, जिसको लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। संगीत सचिन देव बर्मन का है और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की है। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश को कार्यक्रम में शामिल करते हैं जो कि छत्तीसगढ़ महासमुंद से है। कली मासमा डोम, सली मासमा डोम, यूसुफ आसमा डोम और चांदनी चौक बिहार से सरफुद्दीन जाटव, फातिमा जाटव, डब्लू वली जाटव, सोनम वली जाटव। इसी के साथ कोपर गांव से सुरेश मालोदे और वर्षा मालोदे, शेव गांव से श्रीराम गोंधली और उषा गोंधली, विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू, अडार नंदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा। और इन लोगों ने फरमाइश की है फिल्म आनंद से इस गीत की, जिसको संगीत दिया है सलील चौधरी ने और इस गीत को अपनी आवाज़ दी है मुकेश ने। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।
3: नहीं नहीं

फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम में कार्यक्रम की अगली फरमाइश को शामिल करते हैं, जो कि है महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत, गुरु महाराज, नरेंद्र राजपूत। इसी के साथ ग्राम बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम और कुसुम नेताम। गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन गौड़, कविता गौड़, राधा नामदेव, दिव्यांशु यादव, संजय ढींगिया, अनिल जैन, संदीप मक्कड़ और दर्शन भाई। और इन सभी लोगों ने फरमाइश करी है फिल्म बरखा के इस गीत की, जिसको लिखा है राजेंद्र कृष्णन ने, संगीत चित्रगुप्त का है और आवाज़ लता मंगेशकर की है। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम में समय है कार्यक्रम की अगली फरमाइश को शामिल करने का, जो कि है बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक और मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दीक्षा और कुश मूड़त की। इसी के साथ फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद और गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल जैनव मुजावर की। इसी के साथ जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, वर्षा सुमन, मेघा राशि और अनुराग मोहन, और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म दो कलियों से इस गीत की, जिसको संगीतबद्ध किया है रवि ने और आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला नगमा।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम में कार्यक्रम की अगली फरमाइश को शामिल करते हैं, जो कि है मुकाम पोस्ट फूल चिंचली तालुका पंढरपुर से। फरमाइश करता के नाम है जाकिर मुलाड़ी, सुमैया मुलाड़ी, सुबान मुलाड़ी, समीर मुलाड़ी, सलमा मुलाड़ी, मुमताज़ मुलाड़ी, दिलशाद मुलाड़ी, नसीर मुलाड़ी, बानू बी मुलाड़ी, बादशाह मुलाड़ी और समस्त मुलाड़ी परिवार। इसी के साथ जैन मंदिर वाली गली कुराबली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। कोरिया छत्तीसगढ़ से डोनट पाबो, छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया और गौरैया जलंधर से अशोक जाटव की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म आज़ाद से इस गीत की, जिसको लिखा है राजेंद्र कृष्णन ने। संगीत सी रामचंद्रा का है और आवाज़ लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की है। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये गीत।

0: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए। पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल ना करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियां कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय। खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है।
1: फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश अब अपने समापन की ओर है। समय है कार्यक्रम में कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश को शामिल करने का। कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश हमें प्राप्त हुई है गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से, स्वर्ण सिंह गिल की, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह और गुरलाल सिंह के साथ साथ अविराज सिंह की। मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइड़े और मोहन करांगले की, जिगांव विदर्भ से वसंतराव भोजने और पीएस नहावकर की। इसी के साथ कुलाम रोड हरगोविंद नगर नवान शहर से सुरेंदर संधु, अनीता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु, प्रतीशा संधु और मैक्स की। चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल, सुमन जायसवाल, रामनगर कदमापुर जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, बाबुरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर जायसवाल की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म प्रेम कहानी से इस गीत की, जिसको लिखा है आनंद बख्शी ने।

जिसको लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और आवाज़ लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। कुछ ही समय में इस घंटे की खास खबर का प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए सभी राजनीतिक दलों से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जल्द से जल्द 33% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की अपील की है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा या पुनर्वास मिलने के आरोप गलत हैं। पुनर्वास न मिलने के आरोप गलत हैं। अधिकांश पात्र परिवारों को पूरा मुआवजा और पुनर्वास लाभ मिल चुका है और कुछ मामलों में केवल प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताएं ही बाकी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल आज़ादी का महापर्व कार्यक्रम में कहा कि आज के दौर का भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है और भारत की सेना देश के दुश्मनों को उनकी सीमा के अंदर जाकर मारने की हिम्मत रखती है। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों के पर्याप्त भंडार मौजूद हैं। स्टॉक के मिलान करने के लिए उर्वरक विक्रय को बंद किया गया है, जो आज शाम तक पूरा हो जाएगा। कल से खाद का वितरण शुरू हो जाएगा। भोपाल में आयोजित राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप का समापन आज होगा। समापन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग शामिल होंगे और शतरंज में विश्व नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। पेरिस में खेले गए फाइनल में कल कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लजाविक को 2-0 से हराया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं चलते चलते फिल्म का वो गीत जिसे आवाज़ दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। जावेद अख्तर के बोल हैं, संगीत है जतिन ललित का।

अब आपको सुनवा रहे हैं प्रीतम का लिखा नगमा, अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा नगमा, संगीत प्रीतम का, आवाज मोहित चौहान की, और फिल्म का नाम है ये जवानी है दीवानी।

अब आपको सुनवा रहे हैं आशिकी 2 फिल्म का वो गीत जिसमें आवाज़ और संगीत अंकित तिवारी का है। गीत लिखा है संदीप नाथ ने।

यंगिस्तान फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, अरिजीत सिंह की आवाज़ है। कौसर मुनीर ने इस गीत को लिखा है, संगीत जीत गांगुली का है।

0: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूँ और आप सभी से गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और फरहान की आवाज़ में कुमार का लिखा नगमा, संगीत फरहान का है। फिल्म का नाम है हाफ गर्लफ्रेंड।

हम्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाज़ अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की है, गीत लिखा है कुमार ने।

आपको सुनवा रहे हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 फिल्म का गीत। आवाज़ है सनम पुरी और नीति मोहन की। अनविदा दत्त ने इस गीत को लिखा है, संगीत विशाल शेखर का है।

0: अब आपको सुनवा रहे हैं अतरंगी रे फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है हरिचरण और श्रेया घोषाल ने। इरशाद कामिल के बोल हैं, संगीत AR रहमान का है।
1: उलझ गए कैसे कोई हट गया मन से लिपट अनजाना वो नील अंग सा रूप रंग लिप समाधि प्रेम भंग अंग अंग फिर मन भंग और तर्पतंग मैं

अब आपको सुनवा रहे हैं कबीर सिंह फिल्म का वो गीत जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने। आवाज़ और संगीत सचेत परंपरा का है।

और अब आपको सुनवा रहे हैं राहत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में गुलजार का लिखा नगमा। विशाल भारद्वाज का संगीत है और फिल्म का नाम है डेढ़ इश्किया।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय राजधानी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। झारखंड में झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग भर्ती अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज हो गया है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में नए विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा या पुनर्वास न मिलने के आरोप गलत हैं। अधिकांश पात्र परिवारों को पूरा मुआवजा और पुनर्वास लाभ मिल चुका है और कुछ मामलों में केवल प्रक्रियागत संबंधी औपचारिकताएं ही बाकी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल आज़ादी के महापर्व कार्यक्रम में कहा कि आज के दौर का भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है और भारत की सेना देश के दुश्मनों को उनकी सीमा के अंदर जाकर मारने की हिम्मत रखती है। प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों का पर्याप्त भंडार मौजूद है। स्टॉक के मिलान करने के लिए उर्वरक विक्रय फिलहाल बंद किया गया है, जो आज शाम तक पूरा हो जाएगा। कल से खाद का वितरण दोबारा शुरू हो जाएगा। भोपाल में आयोजित राजा भोज मल्टीक्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप का समापन आज होगा। इस समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग शामिल होंगे। और शतरंज में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। पेरिस में कल खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंड मास्टर डेनिस लोजाविक को 2-0 से हराया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है आपकी फरमाइश कार्यक्रम। आपके प्यारे प्यारे पत्र हमें मिल चुके हैं, जिसमें लिखी हैं आपकी पसंद की फरमाइशें, और हमने चुन लिए हैं आपके पसंद के गीत। तो लीजिए शुरू करते हैं कार्यक्रम का सिलसिला। जख्म फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। अलका याग्निक की आवाज़ है, आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है, संगीत MM क्रीम का है। पसंद आप सब श्रोताओं की। ज्योत्सना पांडे, प्रभव शर्मा इंदौर से इस गीत को सुनना चाहते हैं। राजश्री और पुष्पराज ने इस गीत को सुनना चाहा है। अरमिन इस गीत को पुणे से सुनना चाहते हैं। मधुश्री और अभिमन्यु ने इस गीत की फरमाइश की है पन्ना से। इस गीत को पसंद किया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप और अनिल ने। तो आइए सुनते हैं इन सब की पसंद पर जख्म फिल्म का ये गीत।

अब आपको सुनवा रहे हैं अभिमान फिल्म का वो गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और मनहर उदास ने। मजरूह के बोल हैं, संगीत SD बर्मन का है। पसंद आप सबकी धामिनी मनोरा से ये गीत सुनना चाह रहे हैं तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश, किरण, प्रज्वल और अनुत डेरे। इसी गीत को पसंद किया है हमारे कुछ और श्रोताओं ने। ये हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और शादाब खत्री। इन्होंने ये पत्र हमें लिखा है सनावत से। तो आइए सुनते हैं अभिमान फिल्म का ये नगमा।

अब आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में कामचोर फिल्म का नगमा। राजेश रोशन का संगीत है, गीत लिखा है इंदिवर ने, पसंद आप सब श्रोताओं की। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया इस गीत को सुनना चाह रही हैं। इसी गीत को पसंद किया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। तो आइए सुनते हैं इन सब की पसंद पर हम भी फिल्म कामचोर का ये नगमा।

अब आपको सुनवा रहे हैं दोस्ताना फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद आप सब श्रोताओं की। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री इस गीत को सुनना चाहते हैं। बड़वाह से इसी गीत को पसंद किया है प्रवीण श्रीमाली, मीना आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली ने। तो आइए सुनते हैं दोस्ताना फिल्म का ये गीत।

0: करे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है संग्रहालय से। इसमें इन दिनों आप सुन रहे हैं अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी। आज सुनिए इस धारावाहिक की छठी कड़ी।

विप्लवियों के सूचना तंत्र से अनजान थे फिरंगी। खोज खबर तक नहीं हो पाती थी उन्हें भीतर ही भीतर चल रही गदर की तैयारियों की। साधु और फकीर रोटियों का संदेश यहां से वहां तक ले जा रहे थे। छावनियों में मौजूद भारतीय सिपाही अपने आहत स्वाभिमान के साथ निर्णायक घड़ी की प्रतीक्षा बेचैनी के साथ कर रहे थे। बुंदेलखंड भी अपने हिस्से की भूमिका का निर्वाह करने को प्रस्तुत था रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में।

0: रानी बुंदेलखंड के जमींदारों ठिकानेदारों के सतत संपर्क में थी। बानपुर के राजा मर्दन सिंह, शाहगढ़ नरेश बखतबली शाह, गोंडवाने के रायगढ़ की रानी अवंतीबाई और अन्य कई अपने दलबल के साथ स्वाधीनता के महायज्ञ में आहुति देने के लिए तैयार थे। रानी के आह्वान की चिट्ठियां उन तक पहुंची थीं।
1: श्री महाराज अधिराज, श्री बहादुर जुदेव ऐते, श्री महारानी, श्री रानी लक्ष्मीबाई जू देवी के वांचने आपर अपुन के समाचार भले चाहिजे, इहां के समाचार भले हैं। आपर हमारी अपनी और राजा सहागढ़ सहाव और तात्या टोपी की सलाह भई थी के सुराज भव चाहिजे। सलाह पर डटो रानी है, कैसे भारत अपनो देश है, विदेशियों की गुलामी में रहबो अच्छो नहीं है, उनसे लड़वो अच्छो है। पाती समाचार देवी में आवे
0: और उसके प्रत्युत्तर में रानी को संदेश मिला। श्री महाराज कुमार, श्री महाराजाधिराज, श्री राजा मर्दन सिंह बहादुर जू एते, श्री महारानी श्री लक्ष्मीबाई जू देवी के वाचने आपुर आपुन को संदेश भले चाहिए। यहाँ के समाचार भले हैं, आपर अपनी पाती लाला दुलारे लाल के हाथ आई सो हाल मालूम भव। अपुन ने लिखी है कि फौज की तैयारी में लगे रहो सो मन को खुशी भई। हमारी राय है कि विदेशियन को शासन भारत पे ना भाव चाहिए और अपुन को बड़ो भरोसो है और हम फौज की तैयारी कर रहे हैं सो अंग्रेजन से लड़बो बहुत जरूरी है। पाती समाचार देने में आवे।

0: दूर खड़ी हूँ, दूर से दिखेगा।
1: आज रानी साहिबा ने अपने खास खास लोगों को बुलाया है, स्त्री सेना के साथ साथ जवाहर सिंह और रघुनाथ सिंह भी आएंगे और दूसरे सैनिक भी, बाजार के दुकानदार, साहूकार और आसपास के गांवों के पंच।

0: चौधरी भी बुलाए गए हैं। लगता है कुछ खास बात है। लो, रानी साहिबा भी आ गई।
1: ओह, आज तो पूरे सैनिक वेश में है महारानी, और घोड़े पर सवार। कुछ भी कहो, इस बाने में रानी बहुत भली लगती हैं। साक्षात दुर्गा ने जैसे मातृभूमि को मुक्त करने के लिए अवतार लिया हो।
0: वो भी तब जब अनाचारी अंग्रेजों के जुल्म सितम से चारों ओर त्राही त्राही मची है।
2: अंग्रेजन को मद और अहंकार तो अब सहन से बाहर हो गए है भैया। कल कटरा से कुछ दम्भी अंग्रेज गुजरे थे, सो दुकानदार अपनी गद्दियों से नहीं उठे और वह का कहा उतना कॉर्निस करी। सो इतनी सी बात पे अंग्रेजन ने जो सामने आओ सो वही पे कोड़े बरसाए, वही पे कोड़े बरसाए।
3: अरे भैया, फौज में माथे पे तिलक चंदन लगाए की मनाई है, ये तो अपने अपने धर्म की बात है, लेकिन अंग्रेज इसे नाफरमानी माने हैं और लात घूसा बरसाने लगे हैं। कब तक कोई बर्दाश्त करे भैया, मेरी तो समझ से बाहर है।
4: और वो चर्बी वाले कारतूसों को तो सुना ही होगा, वो तो खास इसलिए बनाए गए हैं कि हिंदू ना रहे हिंदू,
3: हाँ,
4: और मुसलमान ना रहे मुसलमान। भाड़ में जाए धर्म और ईमान, इंग्लिस्तान बन जाए हिंदुस्तान। राम राम
2: राम राम
3: राम
2: कूदना भैया सरे बाजार इन अंग्रेजन ने। हाँ। एक दूल्हा को जबरदस्ती घोड़े से उतार दो और पूरी बरात पे कोड़े बरसाए। हमारे यहाँ तो दूल्हा कोनो जात को होवे, एक दिना को राजा होते भैया, एक दिना को राजा।
3: अरे भैया भैया, इन्हें जब असल राजा को नाय बख्शो तो दूल्हे राजा कहाँ लगे हैं? पेशवा, महाराजा, अधिराज, नवाब, जमींदार, कोई भी तो दूर दूर तक ना दिखे इन अकड़फू कंपनी बहादुरन के सामने। बेचारी रैयत कौन से खेत की मूली है, जाके पास 2 जून के लिए अपनी रोटी तलक ना है, और ना है तन ढकबे को चीथड़ा।
2: लेकिन भैया रैयत में बड़ी ताकत है, यही से हम हुए जनता जनार्दन कथे। जनता से छेड़छाड़ इन गोरन के लाने बड़ी भारी पड़ेगी दाऊ। हमारे मुंह से 100% की बात निकली है, सो तुम देख लियो।
3: अरे चुप चुप, रानी गारद का निरीक्षण करके चौतरा पे आ गई है।
5: महारानी लक्ष्मीबाई की जय। महारानी लक्ष्मीबाई की जय। महारानी लक्ष्मीबाई की जय।
6: हमारी प्यारी झांसी के प्रजाजनों, हम आज आपको अपने कर्तव्यों की याद दिलाने के लिए आपके पास आए हैं। आज केवल झांसी ही नहीं, समूचे भारतखंड और जम्बूद्वीप को विदेशी अत्याचार की काली आंधी ने घेर लिया है। खतरे में पड़ गई है हमारी पहचान, हमारा धर्म, हमारा ईमान, हमारी परंपरा, हमारी तहजीब और भाईचारे से बना हुआ हमारा ये समाज, हमारे खेत और खलिहान, हमारे गांव और हाट बाजार, हमारी चौपालें, पंचायतें, कुछ भी अब सुरक्षित नहीं रहा। हमसे छीनी जा रही है हमारे मुंह की रोटी, हमारे संतानों की छत और हमारे हाथों का काम। अब हम नहीं गा सकेंगे अपनी फागें और ना ही गुंजा सकेंगे आल्हा की हुंकारें। ये संकट की घड़ी है और हमारा कड़ा इम्तिहान है। क्या हम इस अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हैं?
5: तैयार हैं। हुकुम
3: करो रानी, रानी हुकुम करो।
6: प्रजाजनों, ये राह सीधी, सरल और आसान नहीं है, बलिदानों का पथ है ये। सात समंदर पार से धाए इस रावण को पराजित करने के लिए भगवान राम की सेना की तरह जन जन को इस धर्म युद्ध में शामिल होना है। 7 आकाशों की दूरी से जब इंद्र ने ब्रजभूमि पर अपना गुस्सा बरसाया था, तो भगवान कृष्ण के गोवर्धन पर्वत में ग्वाल बालों की अंगुलियों

0: लकुटियों की टेक लगी थी, तभी रक्षा हो सकी थी।
1: महारानी लक्ष्मीबाई की
2: जय।
1: महारानी लक्ष्मीबाई की
2: जय।
0: ये हमारी रोटी की लड़ाई है, जिसे गोरा लुटेरा छीनने को आया है। ये किसान, कामगार और जनता की लड़ाई है। ये आन, बान और शान को चुनौती है, संकल्पों की परीक्षा है। अपने हक और अधिकार के लिए हमें ये परीक्षा देनी है, इस चुनौती का सामना करना है।
1: रानी साहबा हुकुम
3: जननी जन्म दियो है हमको, जय दिना के लाने। जननी जन्म दियो है हमको, जय दिना के लाने।
0: देशवासियों, शपथ लो कि आज से और अभी से तुम्हारा तन, मन और ये जीवन अपने प्यारे वतन के लिए समर्पित होगा। अहद करो कि विदेशी गोरों के खिलाफ उठी हुई तुम्हारी ये तलवार सदा आतताइयों और अत्याचारियों का दलन करेगी। युद्ध के हमारे मूल्यों और परंपराओं का तुम सदैव पालन करोगे और कभी किसी अन्याय का साथ नहीं दोगे। नियंत्रण, व्यवस्था और अनुशासन, इसी से यह धर्म युद्ध लड़ा जाना है। सेना का संचालन एक ही लक्ष्य को सामने रखकर होना है, हमारी आजादी, हमारा आत्माभिमान और देश का गौरव। इसमें कोई चूक क्षमा नहीं की जाएगी। क्या तुम इसकी शपथ लेते हो?
2: हाँ।

और अब ध्यान से सुनो, आजादी के सेनापतियों ने एक तारीख मुकर्रर की है, ये स्वतंत्रता के सूर्योदय की तारीख है, भारतवासियों के विप्लव के महाविस्फोट का दिन। विदेशियों की दास्तां हमें स्वीकार नहीं, ये उद्घोष उस दिन धरती से आकाश तक गूंज उठेगा। स्वतंत्रता का महासमर 31 मई को शुरू हो जाएगा। याद रखना, भारत के इतिहास को बदल देने वाली ये तारीख होगी 31 मई। हमारी आजादी की तारीख होगी इसी साल की 31 मई।

0: आपस के भेदभाव भुलाकर हमें एकता के साथ इस महाअभियान को चलाना है। गरीबी और अमीरी का, जात पात, ऊंच नीच, धर्म का कोई भी भेद हमारी एकता को छिन्न भिन्न करेगा। हमारी कमजोरी से शत्रु को ताकत मिलेगी, जो जहां है वहीं अपने काम पर जुटा रहे। 31 मई अभी दूर है और इस समय को हमें तैयारी में लगाना है। ये सबका अभियान है, हर एक का अनुष्ठान है। ये स्वतंत्रता का संग्राम है, जन जन की स्वतंत्रता का संग्राम। ये किसी राजा रानी, बादशाह, नवाब की नहीं, जनता की लड़ाई है, हम सब की चुनौती है। हर हर महादेव।
1: खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, राज रानी लक्ष्मीबाई का, महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की।
0: उठो, जागो और चल पड़ो। हमारे अपने बीच कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो चांदी के कुछ टुकड़ों के लालच में देश से गद्दारी कर रहे हों। ऐसे लोगों को पहचानने और उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोग हमेशा ही मिलते हैं, लेकिन इतिहास देशभक्तों और शहीदों के लहू से लिखा जाता है, जो बलिदानों से सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। ये अपनी माटी से, अपनी धरती से, अपने देश से प्रेम का रास्ता है, ज्वालाओं और अंगारों का पथ, अग्निपथ। आओ, हम सब इस पर चल पड़ें। मंजिल हमारे सामने है।

आजादी की शमा प्रज्वलित होने का अवसर आ गया था। घर घर में उसके प्रकाश की प्रतीक्षा थी। आंखों में आजादी के सपने, मन में आजादी के स्वागत की उमंग, हौसला और विश्वास, समूचा देश अनुप्राणित था। स्फीत शिराओं में एक नए रक्त का संचार हो रहा था। देश तैयार हो रहा था युगांतर के लिए, एक नई अंगड़ाई और करवट के लिए।

0: विप्लव की तिथि तय थी 31 मई, लेकिन दास्ता का एहसास क्षण प्रतिक्षण असह्य होता जा रहा था। कंपनी की निरंकुश स्वेच्छाचारिता, राष्ट्रीय भावनाओं के उपेक्षापूर्ण दमन, स्वाभिमान पर उन्मादी प्रहार और अवेलना, अवमानना, अपमान, सब्र का लोहा गर्म होकर लाल होता जा रहा था। धीर निश्चल विशाल शिलाखंड तिल तिल गलते गलते लावा बन रहे थे। लाल लाल लोहा हथियारों में ढलने को और निर्णायक प्रहार करने के लिए कसमसा रहा था। क्रांति का क्षण पास आ रहा था।
1: प्रतीक्षा कठिन होती जा रही थी।

धीरज का प्याला लबालब भरकर छलकने लगा था और अचानक विद्रोह शुरू हो गया।

0: फरवरी के महीने में कलकत्ता के पास बैरकपुर और बांकुरा के पास रानीगंज में अंग्रेजी फौजों के हिंदुस्तानी सिपाहियों ने चर्बी लगे कारतूसों के खिलाफ अपनी तलवारें उठा ली। ये लहर धीरे धीरे पूरे बंगाल में फैल गई, किंतु अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया।
1: अम्बाला और मेरठ के सिपाही अपने बैरकों में आग लगा देते थे, अंग्रेज अफसरों की हत्या कर देते थे। विप्लव के संदेशवाहक साधु और फकीर अवध और उत्तर पश्चिम भारत के अन्य जिलों में जनता के बीच घूम रहे थे। ये फरवरी मार्च के महीने थे।
0: इस भूभाग का नेतृत्व बिठूर के नाना धोंदू पंत ने संभाल लिया था। नाना दिल्ली के शहजादों और अवध के नवाबों के संपर्क में तो थे ही, उन्होंने सहायता के लिए रूस और ईरान के शाहों को भी नामा निगार भेजे थे।
2: तमाम अंग्रेज छावनियों में स्थानीय स्तर पर उपद्रव शुरू हो गए थे और अंग्रेज अफसर अमानुषिक अत्याचारों से उन्हें दबाने में लगे थे, लेकिन आग की लपटें फैलती ही जा रही थीं।
0: लखनऊ में बंगालियों की रेजिमेंट, देशी घुड़सवार सेना और अवध की सातवीं अनियमित सेना ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेज अफसर, अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया और दिल्ली की दिशा में चल पड़े। कूच का डंका आलम में बजा दिया दीवानों ने।
1: अंग्रेजों को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद बागियों ने बहादुर शाह जफर को देश का बादशाह घोषित कर दिया।
0: एक समकालीन इतिहासकार ने लिखा, सिपाहियों का विद्रोह पूरे हिंदुस्तान में फैल गया है। 20 अलग अलग स्थानों पर एक साथ सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया है। विद्रोह के मुख्य केंद्र हैं आगरा, बरेली और मुरादाबाद। कानपुर में कमान नाना साहब ने अपने हाथ में ले ली है।

25 मई 1857 तक स्वाधीनता का ये महासंग्राम अपने उफान पर पूरी तरह आ गया। समूचा भारत एक कुरुक्षेत्र बन गया था। राष्ट्रीयता के जोश और उमंग ने अपने तटबंध तोड़ दिए थे। स्वाधीनता का अग्निनद बहता चला जा रहा था। जीर्ण पुरातन को अपने आप में समेटता हुआ नई संभावनाओं और नए जीवन की तलाश में स्वाधीनता के लक्ष्य की ओर अग्रसर।

0: संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी, इस रेडियो धारावाहिक की 6वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। झारखंड में झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग भर्ती अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज हो गया है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में नए और विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा या पुनर्वास न मिलने का आरोप गलत है। अधिकांश पात्र परिवारों को पूरा मुआवजा और पुनर्वास लाभ मिल चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल आज़ादी का महापर्व कार्यक्रम में कहा कि आज के दौर का भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है और भारत की सेना देश के दुश्मनों को उनकी सीमा के भीतर जाकर मारने की हिम्मत रखा करती है। प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण है। स्टॉक के मिलान करने के लिए उर्वरक विक्रय फिलहाल बंद किया गया है, जो आज शाम तक पूरा हो जाएगा तथा कल से खाद का वितरण शुरू हो जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट जून 2026, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्तर कुंजी भी आज ही जारी की जाएगी। और शतरंज में विश्व नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंड मास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र के योगदान से लीजिए अब सुनिए महिला कार्यक्रम।

महिला सभा सुन रही सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी वंदना अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर। सुनेंगे

0: गीत संगीत और खाना खजाना में बनाएंगे भुट्टे के कुछ व्यंजन। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिटकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। बहनों, इन पंक्तियों में अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व, उनके संघर्ष और उनके अटूट आत्मविश्वास की झलक दिखाई देती है। भारतीय राजनीति में अटल जी एक ऐसे राजनेता के रूप में सदैव याद किए जाएंगे जिन्होंने राजनीति को केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा का साधन माना। वे एक कुशल राजनेता, ओजस्वी वक्ता, संवेदनशील कवि और दूरदर्शी राष्ट्र नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि हमें उनके जीवन और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को स्मरण करने का अवसर देती है। उनका निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ था। देश के प्रति उनकी सेवाओं के सम्मान में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। सखियों, देश के नवनिर्माण में अटल जी के योगदान की बात हो तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और ग्रामीण सड़क विकास को विशेष रूप से याद किया जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ने देश के प्रमुख महानगरों और आर्थिक केंद्रों को बेहतर राजमार्गों से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया गया। बेहतर सड़क संपर्क ने गांवों को बाजारों, विद्यालयों, अस्पतालों और शहरों से जोड़ने में मदद की। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों की भी बढ़ोतरी हुई। अटल जी के कार्यकाल में वर्ष 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण हुए। इन परीक्षणों ने भारत की सामरिक क्षमता और आत्मनिर्भरता के प्रति देश के आत्मविश्वास को नई दिशा दी। अटल जी का दृष्टिकोण केवल शक्ति प्रदर्शन तक सीमित नहीं था, वे शांति और संवाद के भी प्रबल समर्थक थे। अटल जी मानते थे कि राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके नागरिकों के ज्ञान, संस्कार और प्रतिभा में होती है। उनके कार्यकाल में शिक्षा और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास हुए। सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के विस्तार ने भारत को नई अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में सहायता की। अटल जी की सरकार ने बुनियादी ढांचे, दूरसंचार, राजमार्ग, ग्रामीण संपर्क और आर्थिक सुधारों को महत्व दिया। उनकी सोच थी कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। वे कहते थे, सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, मगर यह देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल जी जितने दृढ़ राजनेता थे उतने ही संवेदनशील कवि भी थे। उनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम, संघर्ष, आशा और मानवीय संवेदनाओं की गहरी अभिव्यक्ति मिलती है। उनकी कविता गीत नया गाता हूँ आज भी लोगों में नई ऊर्जा, आशा का संचार करती है। उनके शब्दों में जीवन की कठिन परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का संदेश मिलता है। बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि केवल उन्हें याद करने से नहीं बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने से होगी। टूट सकते हैं मगर हम झुकेंगे नहीं, ऐसे महान राष्ट्रनायक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। बहनों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर हम आपको सुनवा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के सहपाठी और वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर राम कुमार चतुर्वेदी चंचल जी की सुपुत्री श्रीमती कामना चतुर्वेदी सक्सेना से डॉक्टर समर्थ अग्रवाल की संस्मरणात्मक बातचीत मेरी यादों में अटल का पुनः प्रसारण।
1: आप अटल जी को कितना जानती हैं? क्या आपने रूबरू देखा है, आप उनकी गोद में बैठी हैं या सिर्फ सब कुछ पिताजी से सुना है?
2: नहीं, मैंने

0: जब से मैंने होश संभाला, मेरे जो पहली स्मृति है उनको लेकर, वो 1971-72 की है रतलाम की, जब वे जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे
1: जी।
0: मैं तकरीबन 5-6 साल की रही होंगी तब, और वे रतलाम आए थे, और ये तो खैर बड़े होके मैंने जाना कि पिताजी से उनकी अभिन्न मित्रता रही, लेकिन उस समय जब हम रतलाम में थे
1: जी।
0: तब पहली बार मैंने उन्हें अपने घर में पाया, और आज भी मेरी स्मृति में वो चित्र बिल्कुल स्पष्ट है, सफेद धोती कुर्ता पहने हुए, और अटल जी की एक विशेषता थी कि वो खुलकर ठहाके लगाते थे, और वो जहाँ बैठते थे उनके आसपास का माहौल इतना जीवंत तो होता था कि आप घर के किसी भी कॉर्नर में हो आप वहाँ आए बिना नहीं रह पाते थे। तो मैं चूंकि बहुत छोटी थी तो बहुत लाड़ प्यार प्रधानमंत्री जी महोदय सहित पिताजी के सभी मित्रों का मुझे मिला। अटल जी मेरी स्मृति में पहली बार मैंने उन्हें तब देखा, 1971-72 की घटना है ये, और ये मुझे पता है कि वो फूल मालाओं से लदे हुए घर आए थे, साथ में 3-4 साथी भी थे, और बहुत लंबे समय तक चूंकि मेरी दादी साथ में रहती थी, और अटल जी जैसा कि आप जानते हैं पिताजी के बचपन के साथी थे, तो मेरी दादी के साथ में मेरी माता जी के साथ में बड़ा आत्मीय रिश्ता था। वो सादिकार पकौड़े बनवा के उन्होंने खाए, हलवा बनवा के खाया, और साथ में जो वो प्रेम पूर्वक चौवों का बखान करते जाते थे वो भी उन्होंने किया। लेकिन ये उनकी जो जिंदा दिली थी, ये मैंने आखिरी बार जब उनसे मिली तब वे प्रधानमंत्री थे, और पिताजी की किताब का विमोचन उन्होंने पंचवटी, जो प्रधानमंत्री कार्यालय में ही उनका एक ऑडिटोरियम टाइप का हॉल है, वहां से किया था। उस दिन सौभाग्य से अटल जी का जन्मदिन भी था, और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि आज की शाम सिर्फ ग्वालियर और ग्वालियर की स्मृतियों के नाम है। तो बहुत शिद्दत से उन्होंने ग्वालियर को याद किया, बचपन के सारे संस्मरण जितने उन्हें याद थे कि किस तरह वे कवि सम्मेलन में तांगे में बैठ के सुमन जी के साथ ही चले जाते थे, और कैसे ग्वालियर के वो छोटे छोटे ठिकाने जहाँ वो लोग चाट पकौड़ियाँ खाया करते थे, कैसे दुखी होकर कभी कभी अपने शिक्षकों तक पे उन्होंने कविताएं लिखी, कोई चीज जो पसंद नहीं आती थी, जो खिन्नता थी, वो भी व्यक्त की अपनी कविताओं में, और कैसे एक दूसरे सुनाते थे। ऐसा ही मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है कि एक और मित्र थे हमारे पिताजी के और अटल जी के कॉमन फ्रेंड थे, वो प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, और ग्वालियर में MLB कॉलेज में वो प्रोफेसर रहे, और टोपी बाजार इलाके में उनका घर था, और काफी सारी दुकानें उनकी हुआ करती थीं। इन लोगों के खेलने का मस्ती करने का वो प्रमुख ठिया होता था
1: जी।
0: तो उन दिनों प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण अग्रवाल थे, उनके दादाजी ने इंग्लैंड से एक रेडियो मंगवाया था।
1: अच्छा।
0: और रेडियो जो था वो पुराना लकड़ी का कोई जर्मन रेडियो था
1: जी जी जी,
0: और उसमें बल्ब जला करता था, पहले वो हीटअप होता था
1: जी,
0: और उसके बाद आप उस हाँ डायोड वाले
1: जी, जी।
0: रेडियो जो हुआ करते थे। तो पिताजी सुनाते थे कि हम तीनों ने क्यूरियोसिटी से वो रेडियो पहली बार देखा था, तो जैसा कि किशोरों में होता है बड़ी जिज्ञासा थी कि इसमें आवाज कहाँ से आती है, तो बल्ब की क्या भूमिका है। तो क्योंकि ये लोग विज्ञान के विद्यार्थी नहीं थे, तीनों ही कला संकाय, तो इन्होंने पीछे से उसमें पेचकस वगैरह लगा के और किसी तरह ये जानने के लिए चालू रेडियो खोल लिया, और खोल के फिर उसके इतना इन्होंने पोस्टमार्टम किया कि चलता रेडियो बंद हो गया। मतलब खरीदे जाने के 15 दिन के अंदर वो जिज्ञासावश वो रेडियो
1: खत्म
0: हुआ है ना। ऐसा ही उन्होंने कई घड़ियों के साथ भी किया, तीनों किशोर वैज्ञानिक थे।
1: जी जी।
0: तो ये उन लोगों की बड़ी मस्तियां रहती थी उस जमाने में, कैसे वो लोग पढ़ाई करते थे, और ग्वालियर में तब जब लोग छात्र थे तब बिजली सभी घरों में नहीं पहुंची हुई थी, लैंप पोस्ट स्टेट की ओर से जलते थे बाड़े के आसपास, तो लैंप पोस्ट के नीचे भी बैठकर पढ़ाइयां की हैं। तो बहुत अच्छा और बुरा समय साथ काटा, और सबसे बड़ी बात ये थी, ये गुरुत्व था अटल जी के व्यक्तित्व का कि प्रधानमंत्री के जैसे बड़े पद पर रहते हुए भी वो अपने दोस्तों के लिए कभी प्रधानमंत्री नहीं रहे, गुरु भी रहे और उसी अधिकार के साथ, उन्हें कुछ खाना होता था तो अगर पिताजी का दिल्ली भ्रमण होता था, और अटल जी वैसे प्रधानमंत्री होते हुए भी जब उनको याद आती थी तुरंत फोन कर लेते थे, तो उनका ये रहता था कि दिल्ली कब आ रहे हो, और जैसे ही पिताजी ने बताया बोले हम नहीं जानते, हमारे लड्डू आने चाहिए,
1: बहादुरा के लड्डू आने चाहिए,
0: बहादुरा के लड्डू आने चाहिए।

0: खाने पीने के बहुत शौकीन थे,
1: खाने पीने के शौकीन थे और खिलाने के भी उतने ही शौकीन थे। जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने अपने ही आवास में एक बार अपने सारे सहपाठियों को सब परिवार आमंत्रित किया था भोज पर, और यहाँ तक कि अमेरिका में बसे हुए भी उनके जो सहपाठी थे
0: वो भी आए,
1: सपत्नीक भारत आए थे सिर्फ अटल जी के आमंत्रण पर उनसे मिलने के लिए। और आत्मीयता तो खैर उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी, एक और उनकी बड़ी ताकत थी उनका मराठी का ज्ञान।
0: अच्छा,
1: वो मराठी, हाँ, हिंदी अंग्रेजी के अलावा वो मराठी बहुत धारा प्रवाह बोलते थे अटल जी।
0: ये एक नई जानकारी है हमारे सुनने वालों के लिए।
1: उन्हें अभंग बहुत याद थे पद मराठी के, कोट भी करते थे अक्सर बातचीत में, तो वो उनके एक भाषण शैली की एक विशेषता थी कि भाषा का जो प्रवाह था वो आपको लगता ही नहीं था कि आप किसी बहुत बड़े विचारक, किसी बहुत बड़े साहित्यकार को सुन रहे हैं। वो इतना सहज था कि वो जहाँ चाहते थे अपने श्रोताओं को ले जाते थे। कभी तो खैर वो थे ही अच्छे, लेकिन मैं उनके बराबर का वक्ता भारतीय राजनीति में या इवन साहित्यकारों में मैं किसी को भी उनके पास नहीं पाती हूँ। और एक राजनेता के अंदर जिस किस्म के संतुलन की आवश्यकता होती है, कब बोलना है, कितना बोलना है, भाषा की शुचिता, भाषा की मर्यादा और व्यवहार की जिसे कहते हैं पवित्रता, वो अटल जी उसका एपिटोम। और अटल जी ने ही पहली बार हिंदी में भाषण दिया
0: 1977 में दिया,
1: 1977 और यूनाइटेड नेशंस में। उसके अलावा अटल के अंदर एक जो बहुत बड़ी खूबी थी, जो आपको पंडित नेहरू के अलावा मैंने सिर्फ अटल जी में देखी है, कि व्यक्तिगत गुणों और क्षमताओं का अगर वो उनके विरोधियों में भी रहे हैं तो उसका उन्होंने इस्तकबाल किया और उन्होंने उनकी क्षमता का न सिर्फ गुणगान किया बल्कि उसका उपयोग भी किया। जैसे अटल नेहरू जी थे, उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी अपने मंत्रिमंडल में
0: बिल्कुल रखा था,
1: और अटल जी ने जो नेहरू जी के निधन पर जो संसद में भाषण दिया था वो अविस्मरणीय है।
0: हाँ।
1: और मुझे लगता है कि राष्ट्र हित के मुद्दों पर, पक्ष हो या विपक्ष हो, हम एक राष्ट्र हैं, सत्ता में कौन है इससे परे राष्ट्र का हित क्या है, है ना, उस क्षण को पहचानना और उसके लिए एक समर्थन देना, एक सहमति बनाना राष्ट्रीय स्तर पर, वो अटल जी के ही बस का काम। पिताजी के साथ उनका बड़ा लंबा 70-72 साल का व्यारामा रहा और हर क्षण मतलब पिताजी के साथ वो रहे। अटल जी को चाट खाने का बहुत शौक था, तो एक बार लाल किला कल सम्मेलन पे अटल जी अपना काव्य पाठ कर चुके थे, पिताजी उनसे पहले काव्य पाठ कर चुके थे, कल सम्मेलन जारी था, रात के 2:30 बज रहे होंगे और उन्होंने धीरे से मसनद के पीछे से पिताजी का हाथ दबाया और बोले गुरु चलो। पिताजी ने कहा बोले आओ तो तो पिताजी नीचे उतर के गए। अब वहां से पैदल पैदल वो निकल दिए। पिताजी ने पूछा कहाँ चल रहे हैं, बोले देखते हैं यहाँ क्या कुछ है। थोड़ी दूर पे कुछ ठेले वाले खड़े थे तो उन्होंने ढूंढ लिया, बोले ये गोलगप्पे का ठेला मैंने आते हुए देखा था अगर अभी डटा है गुरु तो अभी खाना तो रात को 2:30 बजे उन्होंने गोलगप्पे खाए
0: जी।
1: और उससे कहा कि भाई ये गलत बात है, तुमने हमारे लिए आलू की टिक्की नहीं चाहिए। उसने कहा हुजूर सब बिक गया, यहाँ खड़े खड़े ये तो सर्दियां थी तो गोलगप्पे बच गए हैं। तो वो इस तरीके की मतलब उनके लिए ना कोई प्रोटोकॉल अर्थ रखती थी, वो एक सामान्य जन की तरह जीते थे अपने आनंद, और उन्हें जिन चीजों में प्रसन्नता मिलती थी उन्हें उन्होंने न कभी छुपाया, न कोई दुराव छुपाव रखा, ना प्रधानमंत्री होने की गरिमा के चलते वो सामने शांत जरूर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने जो उन्हें अच्छा लगता था वो जीवन में किया।
0: आपने अपनी अमूल्य थाती हमारे साथ कुछ बांटी, हमारे श्रोता अवश्य उसको सुनकर गौरवान्वित महसूस करेंगे कि अटल जी का कहीं ना कहीं शिवपुरी से डायरेक्ट संबंध तो ना रहा लेकिन एक दोस्त के रूप में उनका एक निजी दोस्त यहाँ पर रहा जो यहीं पर चिर निद्रा में विलीन हुआ, तो वो उनके अभिन्न मित्र थे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थीं देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के सहपाठी और वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर रामकुमार चतुर्वेदी चंचल जी की सुपुत्री श्रीमती कामना चतुर्वेदी सक्सेना से डॉक्टर समर्थ अग्रवाल की संस्मरणात्मक बातचीत, मेरी यादों में अटल का पुनः प्रसारण। सखियों, श्रावण का महीना आते ही प्रकृति जैसे हरियाली की चुनरी ओढ़ लेती है।

है। वर्षा की बूंदों से धुली धरती, बादलों से घिरा आकाश, पेड़ों की हरी भरी डालियां और झरनों की कलकल करती धारा, मानो प्रकृति स्वयं उत्सव मना रही हो। ऐसे मनमोहक मौसम में हमारी शिवपुरी की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। शिवपुरी प्रकृति और इतिहास का अनोखा संगम है। श्रावण में यहाँ की पहाड़ियाँ, जंगल, झीलें और जलप्रपात वर्षा के पानी से और भी सुंदर हो उठते हैं। चारों ओर फैली हरियाली मन को शांति देती है और बरसात की ठंडी फुहारें वातावरण में नई ताजगी भर देती हैं। सखियों, श्रावण के दिनों में माधव राष्ट्रीय उद्यान की प्राकृतिक सुंदरता विशेष रूप से निखर आती है। बारिश के बाद जंगलों में हरियाली बढ़ जाती है, पेड़ों की पत्तियां धुलकर चमकने लगती हैं और वन क्षेत्र में पक्षियों की चहचहाट वातावरण को जीवंत बना देती हैं। श्रावण में यहाँ का प्रसिद्ध भदैया कुंड का स्वरूप भी आकर्षक हो जाता है। बारिश के पानी से यहाँ की प्राकृतिक जलधारा सक्रिय हो उठती है और आसपास की चट्टानों तथा पेड़ पौधों के बीच बहता पानी मन को मोह लेता है। सखियों, प्रकृति की सुंदरता हमें आनंद देती है, लेकिन इसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारी है। वर्षा ऋतु में प्राकृतिक स्थलों पर घूमने जाएं तो प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन और अन्य कचरा वहां न छोड़ें, पेड़ पौधों को नुकसान न पहुंचाएं और वन्य जीवों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। श्रावण हमें प्रकृति से जुड़ने का संदेश देता है। भगवान शिव को प्रिय इस महीने में जब हम शिव की आराधना करते हैं तो हमें शिवपुरी की प्रकृति के प्रति भी अपनी श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की असली खूबसूरती केवल उसके ऐतिहासिक स्मारकों में नहीं बल्कि पहाड़ियों, जंगलों, झीलों, झरनों और हरियाली में बसती है।

सखियों, अब बात करते हैं बारिश के मौसम में हम अपने खान पान का कैसे ध्यान रहें, मतलब उसके प्रति कैसे सजग रहें। सखियों, बारिश का मौसम आते ही वातावरण में ठंडक और हरियाली घुल जाती है। गर्मी से राहत देने वाला यह मौसम मन को बहुत भाता है, लेकिन यही मौसम हमारे खान पान के प्रति थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतने की भी मांग करता है। नमी और उमस के कारण भोजन जल्दी खराब हो सकता है तथा दूषित पानी और अस्वच्छ भोजन से पेट संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए बरसात में स्वाद के साथ साथ स्वच्छता, ताजगी और संतुलित आहार पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहली बात है पानी की स्वच्छता। बारिश के दिनों में हमेशा साफ और सुरक्षित पानी ही पीना चाहिए। पानी को अच्छी तरह उबालकर या फिल्टर किया हुआ पानी पीना बेहतर है। बाहर जाते समय अपना पानी साथ रखना भी एक अच्छी आदत है। बरसात में सड़क किनारे मिलने वाले खुले और कटे हुए फल, खुले में रखी चाट पकौड़े नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनके दूषित होने की संभावना अधिक रहती है। बरसात में ताजा और गर्म भोजन करना बेहतर रहता है। भोजन को बहुत देर तक कमरे के तापमान पर खुला न छोड़ें। बचा हुआ भोजन उचित तरीके से ढककर रखें और आवश्यकता होने पर अच्छी तरह गर्म करके ही खाएं। बहनों, इस मौसम में बहुत अधिक तला भुना और मसालेदार भोजन करने से भी बचना चाहिए। पकौड़े और तला हुआ नाश्ता कभी कभी खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन रोजाना अधिक तेल वाला भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। बरसात में शरीर को पर्याप्त पोषण देने के लिए मौसमी फल, दालें, साबुत अनाज और पर्याप्त मात्रा में सब्जियां अपने भोजन में शामिल करें। एक और जरूरी बात है भोजन को ढककर रखना। बारिश में मक्खियां और अन्य कीट बढ़ जाते हैं जो भोजन को दूषित कर सकते हैं, इसलिए रसोई और खाने की जगह को साफ रखें तथा खाद्य पदार्थों को हमेशा ढक कर रखें। यदि किसी खाद्य पदार्थ की गंध, स्वाद या रंग असामान्य लगे तो उसे खाने का जोखिम ना लें। थोड़ी सी लापरवाही पेट की बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। और हाँ, बारिश के मौसम में केवल भोजन ही नहीं बल्कि खान पान की आदतों पर भी ध्यान दें। समय पर भोजन करें, बहुत देर तक खाली पेट न रहें और पर्याप्त पानी पीते रहें। साथ ही रोज थोड़ा थोड़ा शारीरिक व्यायाम भी करें तो इस बरसात प्रकृति की सुंदरता का आनंद लीजिए, गर्मा गर्म पौष्टिक भोजन का स्वाद लीजिए, लेकिन अपनी सेहत के साथ कोई समझौता मत कीजिए। सखियों, अब चलते हैं अपने विशेष कार्यक्रम खाना खजाना की तरफ। आज हम आपके लिए लाए हैं भुट्टे से बनाए जाने वाले व्यंजन। तो जानते हैं चिली कॉर्न कॉइंस बनाने की विधि। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए उबला हुआ स्वीट कॉर्न 1 कप, आलू 2 उबले हुए, थोड़ा सा चीज, कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच, ब्रेड क्रम्स 2 बड़े चम्मच, हरी मिर्च 1 बारीक कटी हुई, चिली फ्लेक्स 1 छोटा चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, बारीक कटा हरा धनिया 2 बड़े चम्मच, नमक स्वादानुसार और साथ ही चाहिए तेल। चिली कॉर्न कॉइंस बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में उबले हुए कॉर्न को डालकर हल्का सा मसल लें। अब उसमें मसले हुए आलू, चीज़, कॉर्नफ्लोर, ब्रेड क्रम्स, हरी मिर्च, चिली फ्लेक्स, मिर्च, हरा धनिया और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें। मिश्रण की छोटी छोटी टिक्कियां बना लें और अब इनको हमने जो ब्रेड के क्रम्स बनाए हैं, यानी ब्रेड का जो चूरा है, उसमें हल्का हल्का सा लपेट लें ताकि ये और भी कुरकुरे बने। टिक्कियों को गर्म तेल में मध्यम आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेक लें। लीजिए, चिली कॉर्न कॉइंस बनकर तैयार हैं। इनको हरी चटनी या टमाटो केचप के साथ गर्मा गर्म परोसें। सखियों, इसी के साथ

0: आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र के योगदान से अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है एक अंतराल का।
1: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
2: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
1: क्या, कैसे?
2: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
1: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
2: mmsky.mp.gov.in पर। MMSKY, सीखो भी कमाओ भी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

अंतराल का समय पूरा हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं, 1:30 हो रहे हैं। आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र के योगदान से अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत।

आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र के योगदान से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे खुशबू भार्गव के गाए भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र की है।

खुशबू भार्गव के गाए भजन अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत। अब ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। प्रस्तुति आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है एक अंतराल का।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी, मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधित एक सूचना। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 16 अगस्त 2026 यानी आज शाम 7:30 से 8 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। और आज की इस हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम के लिए विषय है वर्तमान फसलों में निदाई एवं खरपतवार प्रबंधन। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं वे दिनांक 16 अगस्त 2026 यानी आज शाम 7:30 से रात 8 बजे के बीच आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर 2660902 या 2660903 इन नंबर पर फ़ोन करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और ये नंबर लगाने से पहले भोपाल का एसटीडी कोड 0755 अवश्य लगाए। दिन समय और फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुन ले। 16 अगस्त 2026 यानी आज शाम 7:30 से 8 बजे के बीच फ़ोन नंबर है 2660902 या 2660903 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। ये थी कार्यक्रम संबंधित जानकारी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं, दोपहर के 2 बज रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सबसे पहले सुनते हैं सावन को आने दो। इस फिल्म का गीत जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और साथियों की आवाज में, गीत लिखा है गौहर कानपुरी ने और संगीत राजकमल का है।

फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। और अब अगला गीत आपके रेडियो सेट पर आ रहा है आया सावन झूमके इस फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: आया सावन झूमके। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इसी के साथ फिल्म संगीत अभी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनकी 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि स्वर्गीय श्री वाजपेयी के नेतृत्व में देश ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। कार्यक्रम में उन्होंने वंदे मातरम के 150वें वर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नई प्रतिष्ठा दिलाने का काम किया है।
2: वोट बैंक की लालच में कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था। 150वां साल है वंदे मातरम के प्रागट्य का। लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने वंदे मातरम को फिर से एक नया आयुष्य देने का काम किया है।
1: इस दौरान श्री शाह ने राजस्थान में 15 जिलों के 5,755 करोड़ रुपए के 944 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके सरल और संवेदनशील व्यक्तित्व को याद किया तथा उनकी स्मृति में पौधरोपण किया। पन्ना जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में नाले के तेज बहाव में बहे 37 वर्षीय जितेंद्र रैकवार का शव 2 दिन की तलाशी के बाद बरामद कर लिया गया। 14 अगस्त की रात मछली पकड़ने के दौरान यह हादसा हुआ था। होमगार्ड और SDERF की टीम ने घटनास्थल से करीब 3 किलोमीटर दूर शव को बरामद किया। शिवपुरी जिले में इस मानसून सीजन में 1 जून से अब तक 471.52 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। पिछले 3 दिनों से जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही है। भू अभिलेख अधीक्षक के अनुसार जिले की औसत सामान्य वर्षा 816.3 मिलीमीटर है। बारिश के कारण सिंध नदी का जलस्तर भी बढ़ा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क भी अदा करना होगा। साथ ही उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। NTA ने कहा है कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त ही निर्धारित की गई है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू होगी। प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में भारत ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित की थी। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया है। यह ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है और ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर उसकी दूसरी जीत। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा। और अब बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय है। मौसम विभाग ने जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आज प्रदेश के 18 जिलों में 4 इंच या उससे अधिक बारिश होने का अनुमान जताया गया है। इनमें जबलपुर, सागर, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, रीवा, सीधी और सिंगरौली जिले सहित अन्य प्रदेश के कई जिले भी शामिल हैं। वहीं भोपाल, ग्वालियर और चंबल संभाग में भी तेज बारिश के आसार व्यक्त किए गए हैं। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 12% कम बारिश दर्ज की गई है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत, ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से दी मात। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। एक रिपोर्ट।
2: छात्र आधिकारिक यूजीसी नेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं। प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने के लिए ₹200 प्रति प्रश्न का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। छात्रों को प्रत्येक चुनौती के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी अन्य माध्यम से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 18 तारीख है। एनटीए ने बताया कि शेष 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के प्रश्न पत्रों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। एनटीए ने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर इन तीनों विषयों के संबंध में अलग से सार्वजनिक सूचना आज जारी की जाएगी। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित सूचनाओं पर ही भरोसा करें। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। श्री शाह ने ये बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कही।
4: 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सब के बीच में से विदा लिए थे। अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है।
1: श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना श्री वाजपेयी के ही कार्यकाल में हुई थी। उनकी पहल के कारण जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई कार्य हुए, जिसे मौजूदा सरकार ने भी आगे बढ़ाया है और कई ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जनजातीय लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा की गई है। श्री शाह आज अलवर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
5: भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल हैं। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के विरोध का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन को रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करके कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान तो किया ही, संविधान और देश की जनता का अपमान भी किया।
6: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर

0: कार्यक्रम का पूरा गायन हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज हरियाणा में करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये अभियान इस महीने की 9 तारीख से 17 तारीख तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने रवाना किया। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
1: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ओणम के औपचारिक समारोह आज अथम के साथ शुरू हो गए हैं और पूरे केरल में मनाए जा रहे हैं। अथम की खास पहचान अथ पुक्कलम है, जिसमें घरों में रंग बिरंगे फूलों से कालीन सजाए जाते हैं। इसमें तिरुवोणम तक हर दिन फूलों की एक नई परत जुड़ी जाती है। मध्य केरल के त्रिपुनितुरा में आयोजित होने वाला भव्य अथा चमयम जुलूस भी ओणम समारोह का प्रमुख आकर्षण है। इसमें पारंपरिक कला रूपों और प्रस्तुतियों के माध्यम से राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलती है। उधर सबरीमाला मंदिर आज मासिक पूजा के लिए खोल दिया गया है। विशेष ओणम पूजा 24 से 28 अगस्त तक होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
0: उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित प्राचीन बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। श्रावण माह में होने वाली यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृह मंत्री ए नमस्सिवयम ने कीझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। साइबर कुश्ती के लिए कल से शुरू हुआ पंजीकरण अगले महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है।
3: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल उत्तरी ओडिशा तट पर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे राज्य में बाढ़ की समस्या और बढ़ गई है। IMD ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में खासकर कल और परसों बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बूढ़ा बलंग नदियों ने बड़े इलाकों को जलमग्न कर दिया है। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, केंवुझर और केंद्रापड़ा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 500 से ज्यादा गाँव में लगभग 2,70,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 95,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारी हाई अलर्ट पर है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राजधानी दिल्ली में आज शाम हल्की वर्षा हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में

0: शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में ये चैंपियनशिप भारत में हुई थी। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक मिलने की उम्मीद है। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो भारत की अगुवाई करेंगे। भारत ने अब तक विश्व चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स में कोई पदक नहीं जीता है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है और ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर दूसरी। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा।
1: महान संत श्री राम कृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के महान विचारक और माता काली के परम भक्त श्री राम कृष्ण परमहंस ने भारतीय सनातन परंपरा की गहन शक्ति और आध्यात्मिक चेतना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए बच्चों का कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र के योगदान से है।

0: अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब कुछ आपके पास ही तो वापस लौट के आना है। इसी प्रेरक सुविचार के साथ बाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम बाल सभा में। कार्यक्रम का ये अंक लेकर आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी मधु दीदी। बाल मित्रों, भारत की पवित्र भूमि ऐसे ऐसे वीर वीरांगनाओं की कहानियों से भरी पड़ी है जिन्होंने वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश के स्वतंत्र होने तक भिन्न भिन्न रूपों में अहम योगदान दिया। ऐसी ही एक वीरांगना थी रानी अवंतीबाई लोधी, जिनका योगदान स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में वीरांगना लक्ष्मीबाई से कम नहीं। आज यानी 16 अगस्त को हम सभी उनकी जयंती मना रहे हैं। बाल साथियों, रानी अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त वर्ष 1831 को ग्राम मनकेड़ी जिला सिवनी के जमींदार श्री जुझार सिंह के परिवार में हुआ था। उनका लालन पालन एवं शिक्षा दीक्षा गांव में ही हुई। बाल्यकाल में ही आपने तलवार चलाना और घुड़सवारी सीख ली थी। रानी बचपन से ही वीर एवं साहसी थी। उनके राजसी गुणों को समझते हुए ही उनके पिता ने उनका विवाह राजपूतों की रामगढ़ रियासत के राजकुमार विक्रमजीत सिंह के साथ किया और वे रामगढ़ रियासत की बधू बन गई। राजकुमार चूंकि बचपन से ही धार्मिक कार्यों में लगे रहते थे, इससे राज्य का संचालन रानी अवंतीबाई ही किया करती थी। उस समय बाल मित्रों, अंग्रेजों का भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा था, किंतु रानी ने राज्य के किसानों को अंग्रेजों के निर्देशों को न मानने का आदेश दिया। इस सुधार से रानी की लोकप्रियता बढ़ने लगी। देश के कुछ क्षेत्रों में क्रांति का शुभारंभ हो चुका था। मार्च 1858 में रामगढ़ पर विद्रोहियों और अंग्रेजी सेना में संघर्ष चलता रहा और रानी ने बहादुरी से उनका मुकाबला किया। धन्य है बाल साथियों ऐसी वीरांगना जिसने राष्ट्रहित में अपने प्राणों की आहुति दे दी, साथ ही राष्ट्र की मातृशक्तियों को ये संदेश दिया कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे आत्मबल को जागृत करके अपनी मातृभूमि की रक्षा की जा सकती है। बाल साथियों, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर वे भारतीय इतिहास में अमर हो गईं। साहस, नेतृत्व, स्वाभिमान और मातृशक्ति की प्रतीक रानी अवंतीबाई लोधी जी को आज भी हम श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करते हैं। तो बाल साथियों, ऐसी थी महान वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी। इस चर्चा के बाद बाल साथियों करते हैं अब एक और चर्चा श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर। बाल साथियों, आज हम सभी भारत के 13वें प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि भी मना रहे हैं। वे देश सेवा, राष्ट्रीयता, भारतीय संस्कृति और मानवीयता तथा उच्च जीवन मूल्यों के प्रतीक हैं। आपका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक संपन्न कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में 25 दिसंबर वर्ष 1926 में हुआ था। उनके पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी संस्कृत के विद्वान होने के साथ ही साथ अच्छे वक्ता, विचारक और एक प्रतिष्ठित कवि भी थे। अध्ययन काल के दौरान ही आप राजनीति से जुड़ गए। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय आप जेल भी गए। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य भी रहे। स्वयं में अनुशासित रहना ही वाजपेयी जी के विराट व्यक्तित्व की विशेषता है। वे बचपन से ही अत्यंत स्वाभिमानी, निर्भीक व निष्पक्ष विचारों के रहे हैं। उनका सहज, सरल और सौम्य स्वभाव सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। उनकी अनूठी इच्छा शक्ति व चारित्रिक दृढ़ता देखने को मिलती है। राष्ट्रीय एकता को वे शांति का पर्याय मानते थे। बाल साथियों, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्र धर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। बाल मित्रों, वाजपेयी जी ने अग्नि 2 और परमाणु परीक्षण कर देश की सुरक्षा के लिए साहसी कदम भी उठाए। वर्ष 1998 में राजस्थान के पोखरण में भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया। अटल जी भारत के ऐसे पहले विदेश मंत्री भी रहे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर भारत को गौरवान्वित किया था। वर्ष 1992 में आपको पद्म विभूषण तथा वर्ष 1994 में श्रेष्ठ सांसद के रूप में पंडित गोविंद वल्लभ पंत और लोकमान्य तिलक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। बाल मित्रों, एक प्रधानमंत्री के रूप में वाजपेयी जी के महान कार्यों व उनकी नेतृत्व क्षमता का सभी लोहा मानते हैं। विषम से विषम परिस्थितियों का भी उन्होंने बड़ी ही सहजता व धैर्य के साथ सामना किया। विश्व शांति के उनके प्रयासों के लिए आज समूचा विश्व उनकी सराहना करता है। वाजपेयी जी की जयंती पर उनको हमारा शत शत नमन। इस चर्चा के बाद बाल साथियों अब आपको सुनवाते हैं बाल मन से।
1: बाल मन से क्रम के अंतर्गत बाल साथियों आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही प्यारा सा बालक आया हुआ है, तो चलिए करते हैं उससे थोड़ी सी बातचीत और देखते हैं कि वो आज हमें क्या कुछ सुनाने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इनका नाम। क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम शौर्य आदित्य खरे है।
1: शौर्य आदित्य आप किस क्लास में पढ़ते हैं?
2: मैं फिफ्थ में पढ़ता हूँ।
1: आप फिफ्थ क्लास में पढ़ते हैं। आप आज हमारे बाल साथियों को क्या सुनाने वाले हैं?
2: मैं आज अपने बाल साथियों को कविता सुनाने वाला हूँ।
1: चलिए सुनाइए।
2: लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़ कर गिनना कर चलना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
1: बिल्कुल, बहुत ही प्यारा संदेश आपने अपनी कविता के माध्यम से दिया कि कोशिश करने वाले कभी हार ही नहीं सकते। जब तक हम अपने लक्ष्य में कामयाब न हो जाएं, तब तक हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। अच्छा शौर्य, ये बताओ कि आप गेम्स खेलते हो?
2: हाँ।
1: कौन कौन सी गेम्स आपको पसंद है?
2: क्रिकेट, बैडमिंटन, चेस।
1: अच्छा, आप क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, चेस भी खेलते हैं।
2: हाँ।
1: वेरी गुड। आपको पता है खेल खेलने से हमारे शरीर के साथ साथ दिमाग का भी विकास होता है।
2: हाँ।
1: हमें ताकत मिलती है, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है ना?
2: हाँ।
1: और खेल चाहे कोई भी हो, व्यायाम तो अपने आप हो ही जाता है ना?
2: हाँ।
1: हम सभी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी तो रखना है। अच्छा शौर्य, ये बताओ आपको सबसे अच्छा गेम्स कौन सा लगता है?
2: क्रिकेट।
1: अच्छा, आपको क्रिकेट सबसे पसंद है।
2: हाँ।
1: तो आप क्रिकेट खेलते हैं?
2: हाँ।
1: कितने घंटे खेलते हैं?
2: 2-3 घंटे।
1: 2 से 3 घंटे आप डेली क्रिकेट खेलते हैं।
2: हाँ।
1: तो आपको क्रिकेट के खेल में कौन क्रिकेटर सबसे अधिक पसंद है?
2: विराट कोहली।
1: आपको विराट कोहली बहुत पसंद है। चलिए, विराट कोहली तो सभी का पसंदीदा क्रिकेटर है ना? अच्छा शौर्य, आप और क्या सुनाना चाहेंगे हमारे बाल साथियों को?
2: मैं हमारे बाल साथियों को एक रक्षाबंधन पर कविता सुनाना चाहूँगा।
1: चलिए सुनाइए।
2: एक चालाक बिल्ली ने खूब चली चालाकी, रक्षाबंधन के अवसर पर चूहे को सेल्फी डाली। मेरे प्यारे चूहे भाई, तुम जल्दी आ जाओ, सुंदर सी राखी बंधवा कर खूब मिठाई खाओ। प्यारे प्यारे उपहारों संग डिब्बा भर लड्डू दूंगी, साथ मिठा कर मेरे भैया तुमको प्यार करूंगी। चूहे राजा समझ गए अब बिल्ली की चालाकी, तुरंत एक SMS भेजा, व्हाट्सएप पर भेजो राखी।
1: अरे वाह शौर्य आदित्य, आपने तो बहुत ही फनी कविता सुनाई रक्षाबंधन पर। और देखो, रक्षाबंधन का त्योहार बस अब आने ही वाला है ना?
2: हाँ।
1: तो आप बनवाएंगे अपनी बहन से राखी?
2: हाँ
1: बिल्कुल, हमें जो अपने त्योहार हैं वो मनाने चाहिए। और जो रक्षाबंधन का त्योहार है तो वो तो भाई और बहन के प्रेम का एक पवित्र त्योहार है। अच्छा शौर्य, ये बताइए आप हमारे बाल साथियों को और कुछ सुनाना चाहेंगे?
2: मैं एक और पोयम सुनाना चाहता हूँ।
1: चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलिए सुनाइए।
2: कदले वन के हाथी ने खाए केले भरपूर, और फिर खा गया 9 क्विंटल लड्डू मोटी चूर। पानी पीकर 30 बाल्टा चला झूमता साथी, शेर भाग कर छुपा गुफा में, भागो आया हाथी। तभी सामने से एक चींटी आती पड़ी दिखाई, कहीं काट ना ले फिर हमको, भागे हाथी भाई। एक नन्ही चींटी से डरता इतना भारी हाथी, हंसता हरियल तोता, हंसते हाथी के सब साथी।
1: अरे वाह शौर्य आदित्य, आपने तो बहुत ही प्यारी कविता सुनाई हमारे हाथी दादा के ऊपर। आपको पता है कि 12 अगस्त के दिन हम सभी हाथी दिवस मनाते हैं?
2: हाँ पता है।
1: अच्छा शौर्य आदित्य, ये बताइए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे?
2: मैं बड़े होकर जज बनना चाहूँगा।
1: आप बड़े होकर जज बनना चाहते हैं?
2: हाँ।
1: इसके लिए तो आपको बहुत पढ़ाई करनी होगी।
2: हाँ।
1: आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं?
2: मैं 4 से 5 घंटे पढ़ाई करता हूँ।
1: आप 4 से 5 घंटे पढ़ाई करते हैं, चलिए ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जज बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत सारी पढ़ाई भी करनी होगी। अच्छा शौर्य, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि आप अपने लक्ष्य में कामयाब हों, एक सफल जज बने और लोगों की सेवा करें। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमसे इतनी सारी बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू।
1: बाल साथियों, अभी आपने बाल मन से क्रम के अंतर्गत सुना हमारे स्टूडियो में आए हुए नन्हे मेहमान से की गई बातचीत। बाल मित्रों, भारत के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी को हम सभी जानते हैं। वे 16वीं सदी के महान संत और कवियों में से एक थे। हम सभी आगामी 19 अगस्त को गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती मनाएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को आपका जन्म हुआ। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गाँव में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी देवी था। कहा जाता है कि जन्म के समय तुलसीदास जी रोए नहीं थे और उनके मुख में 32 दांत थे। इतना ही नहीं बाल मित्रों, कहा जाता है कि जन्म के साथ ही उन्होंने राम शब्द बोला था। तभी से बचपन में उनका नाम राम बोला था। पत्नी रत्नावली के तिरस्कार के बाद उनमें चेतना जागी और उसी समय से वे प्रभु राम की वंदना में जुट गए। बाल साथियों, तुलसीदास जी ने कुल 12 पुस्तकों की रचना की। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, जानकी मंडल, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, बरव रामायण आदि है, लेकिन सबसे अधिक प्रसिद्धि उनके द्वारा रचित रामचरितमानस को मिली। दरअसल इस महान ग्रंथ की रचना तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में की थी और ये भाषा उत्तर प्रदेश के जन साधारण की भाषा है, इसलिए उन्हें जन जन का कवि माना जाता है। बाल साथियों, तुलसीदास जी एक महान कवि और साहित्यकार ही नहीं अपितु समाज सुधारक भी थे। भगवान श्री राम के परम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी भले ही तलवार लेकर लड़ने वाले योद्धा न हों, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति और लेखनी के बल पर हिंदू धर्म की ध्वजा फहराए रखने में अपूर्व योगदान दिया था। हिंदी भाषा के विकास में बाल मित्रों उनका योगदान अतुलनीय है। बाल साथियों, अब आपको सुनवाते हैं दो कलियां फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसे लिखा है साहिर ने और संगीतबद्ध किया है रवि ने और आवाज है लता मंगेशकर की।

बाल साथियों, अभी आपने सुना दो कलियां फिल्म का ये प्यारा सा गीत। साहिर के गीत को संगीत से सवारा था रवि ने और आवाज थी लता मंगेशकर की। और बाल मित्रों, आगामी 20 अगस्त के दिन हम श्री राजीव गांधी जी की जयंती मनाएंगे, जिसे हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के 7वें प्रधानमंत्री और सबसे कम उम्र में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल करने वाले श्री राजीव गांधी जी का जन्म 20 अगस्त वर्ष 1944 को मुंबई में हुआ था। उनकी स्कूली शिक्षा देहरादून में हुई। उच्च शिक्षा हेतु वे विदेश गए, जहां मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। आपकी संगीत में बहुत रुचि थी और फोटोग्राफी एवं रेडियो सुनने का भी आपको शौक था। हवाई उड़ान तो उनका सबसे बड़ा जुनून था। जल्दी ही वे घरेलू राष्ट्रीय जहाज कंपनी इंडियन एयरलाइंस के पायलट बन गए। वे अपनी माँ को सहयोग देने हेतु वर्ष 1982 में राजनीति में आए और लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। वर्ष 1984 में इंदिरा जी की हत्या किए जाने के बाद वे देश के 7वें प्रधानमंत्री बने। बाल साथियों, स्वभाव से गंभीर लेकिन आधुनिक सोच एवं निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता वाले श्री गांधी देश को दुनिया की उच्च तकनीकों से पूर्ण करना चाहते थे। वे बार बार कहते थे कि भारत की एकता को बनाए रखने के उद्देश्य के अलावा उनके अन्य प्रमुख उद्देश्यों में से एक है 21वीं सदी के भारत का निर्माण। बाल मित्रों, श्री राजीव जी ने भारत को आधुनिक सोच देने का प्रयास किया। भारत में कंप्यूटर की शुरुआत करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। उन्होंने कंप्यूटर और दूरसंचार क्रांति को आगे बढ़ाया। युवाओं को राजनीति में जगह देने की कोशिश की। पंचायती राज को मजबूती देने की दिशा में काम किया और 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार देने जैसे बड़े फैसले लिए। भारत एक विकसित देश बने और भारत विकास की ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और बाल मित्रों, 20 अगस्त के दिन ही हम विश्व मच्छर दिवस भी मनाएंगे। ब्रिटिश चिकित्सक सर रोनाल्ड रॉस ने वर्ष 1897 में 20 अगस्त के दिन मादा एनाफिलीज मच्छर की खोज की थी, जो मलेरिया जैसी घातक बीमारी का कारण है। इसके बाद से तो हर साल इस दिन को पूरी दुनिया में विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 1930 में लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन और ट्रॉपिकल मेडिसिन ने की थी। बाल साथियों, विश्व मच्छर दिवस मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियों और बचाव के प्रति जागरूक करना है। सर रोनाल्ड रॉस ने मादा एनाफिलीज मच्छर की खोज की थी, जिसके काटने से मलेरिया नामक बीमारी होती है। इन मच्छरों में प्लाज्मोडियम पैरासाइट पाया जाता है, जो रक्त से होकर शरीर में फैल जाता है और लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करने लगता है। उनके इस प्रयास के लिए वर्ष 1902 में उन्हें फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बाल मित्रों, बारिश के दिनों में घरों के आसपास भीतर और बाहर अनावश्यक पानी एकत्रित होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, घर में कूलर व अन्य खुले बर्तनों में लंबे समय तक पानी भरा रह जाने से अक्सर उसमें लार्वा पैदा हो जाता है। इसमें एनाफिलीज, एडीज, क्यूलेक्स मच्छर खतरनाक होते हैं, जो मलेरिया और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियां फैलाते हैं, जिनसे बचाव बेहद जरूरी है, नहीं तो ये जानलेवा साबित हो सकती है। इससे बचने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। पूरी वाह के कपड़े पहने। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। रात में मच्छरों के आतंक से बचने के लिए रिपेलेंट का उपयोग करें। साथ ही लोगों को भी जागरूक करें। इसी महत्वपूर्ण चर्चा के साथ बाल साथियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। और अब चलने का समय हो गया है, तो अनुमति दीजिए अपनी मधु दीदी को।

अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र के योगदान से आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। सबसे पहले सुनवाते हैं वाणी जयराम की आवाज़ में गुड्डी फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है गुलजार ने, संगीत वसंत देसाई का है।

महेंद्र कपूर और सुमन कल्याणपुरकर की आवाज़ में लीजिए अब सुनते हैं केदार शर्मा का लिखा ये गीत, जिसे संगीतबद्ध किया है स्नेहल भाटकर ने और फिल्म का नाम है फरियाद।

वो देखो देखा देख रहा था पपीहा पपीहा देखो देख रहा था पपीहा पपीहा जाके सबसे कहेगा पपीहा पपीहा।

0: पपीहा भला चुप क्यों रहेगा पपीहा पपीहा देखो देख रहा था।
1: और कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं तराना फिल्म का गीत लता मंगेशकर संध्या मुखर्जी की आवाज़ में। गीत लिखा है प्रेम धवन ने, संगीत अनिल विश्वास का है।

0: तराना फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। श्री शाह ने कहा कि वाजपेयी जी के नेतृत्व में देश ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी आज भोपाल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके सरल और संवेदनशील व्यक्तित्व को याद किया और उनकी स्मृति में पौधरोपण किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 200 रुपये के शुल्क के साथ 18 अगस्त तक यूजीसी नेट पोर्टल के माध्यम से इन उत्तरों पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में आयोजित राजा भोज मल्टी क्लास सेलिंग चैंपियनशिप 2026 के पुरस्कार वितरण और समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्रदेश के जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं आज प्रदेश के 18 जिलों में 4 इंच या उससे अधिक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 12% कम बारिश हुई है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू होगी। प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पूर्व लीजिए सुनिए हमारे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

मीडियम वेव पर सांध्यकालीन सभा आरंभ की जाएगी 5 बजे से। 5:02 पर आज का युववाणी कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र के योगदान से सुनवाया जाएगा। फिल्म संगीत 5:33 पर शाम 6 बजे और रात 8:30 पर। सात 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा और आज 7:30 से आप सुन सकेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। रात 8 बजे होगा सुर्खियों में। 8:15 पर आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र के योगदान से सुनिएगा कार्यक्रम डगर विकास की। 9:30 पर रिले करेंगे नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 10 बजे से अखिल भारतीय रविवासरीय कार्यक्रम संगीत सभा के अंतर्गत आज सुन सकते हैं रिथोम सरकार से गिटार वादन। 3 जानकारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। दोपहर के 3:02:30 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब यहीं समाप्त करते हैं। शाम 5 बजे इन्हीं मीटर्स पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर

प्रसारण जारी रहेगा। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र के योगदान से आपको सुनवाया जा रहा है।

इस रचना के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे खुशबू भार्गव के गाए भजन।

खुशबू भार्गव के गाए भजन अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आज इस कार्यक्रम में आपको सबसे पहले सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़, साथ में है किशोर कुमार की भी आवाज़। दूसरा आदमी फिल्म का ये गीत है जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत राजेश रोशन का है।

0: राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में अब सुनवाने जा रहे हैं साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की है।
1: सांसों में तेरी खुशबू के डेरे
0: और फिल्म का नाम है काला पत्थर।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आपके रेडियो सेट पर ये गीत है राजकुमार फिल्म से, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

शर्मीली फिल्म का गीत अब सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं नीरज ने और संगीत एसडी परमन का है।

अगला गीत आपके रेडियो सेट पर। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है, एस डी बर्मन ने संगीतबद्ध किया है, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है और फिल्म का नाम है आराधना।

और अब मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनिए, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनिए गिम्बलर फिल्म का गीत, जिसे लिखा है नीरज ने और धुन बनाई है एसटी परमन ने।

0: मोहम्मद रफ़ी के गाए गैम्बलर फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधित एक आवश्यक सूचना जल्दी से सुन लीजिए। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 16 अगस्त यानी आज शाम 7:30 से 8 के बीच सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। और आज इस ग्राम सभा का विषय है वर्तमान फसलों में निदाई एवं खरपतवार। इस विषय से संबंधित अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 2660902 और 2660903। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। ये थी फ़ोन इन कार्यक्रम संबंधित एक आवश्यक सूचना। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। इस दौरान श्री शाह ने

0: राजस्थान में 15 जिलों के 5,755 करोड़ रुपए के 944 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भोपाल में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अटल जी के सरल और संवेदनशील व्यक्तित्व को याद किया और उनकी स्मृति में पौधरोपण किया। प्रदेश के जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं आज प्रदेश के 18 जिलों में 4 इंच या उससे अधिक बारिश होने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 12% कम बारिश हुई है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता हैकाथॉन की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता, उसका परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। साइबर कुश्ती के लिए कल से शुरू हुआ पंजीकरण अगले महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। और टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर इतिहास रचा है। यह ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है और ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर उसकी दूसरी विजय है। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट मैच यानी इस श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र। लीजिए अब सुनिए साप्ताहिक कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण।

जय झूलेलाल दोस्तों, सिंधियत जी सुरहाण कार्यक्रम में मां तव्हां जी दोस्त तव्हां जी होस्ट जानवी भावनानी तव्हां सभिनी जो तहे दिल सां स्वागत थी कयां। दोस्तों, जॾहिं बि असां वॾणनि जा पेर पवंदा आहियूं या उन्हनि लाइ को सुठो कमु कंदा आहियूं त उहे आशीर्वाद ॾेई चवंदा आहिनि त सदा ख़ुशि रहो ऐं जुग जुग जीओ। इन जी माना ई इहा आहे कि शल असां हमेशह हयात हुजूं। अगरि को माण्हू हिन दुनिया खे अलविदा थो करे पर तॾहिं बि उहो इन दुनिया में रही सघे थो त पंहिंजे हिन बेशकीमती अंगनि सां अंगदान कयो, जुग जुग जीओ। इहो ई अभियान सरकार जे स्वास्थ्य मंत्रालय ऐं नोटो पारां 16 भारतीय अंगदान दिवस शुरू कयो वियो आहे, जंहिंखे 3 अगस्त खां शुरू कयो वियो आहे, जेको राष्ट्रीय जन जागरूकता अभियान आहे। इन्हीअ जो उद्देश्य आहे कि माण्हुनि खे अंगदान जे लाइ जागरूक करणु। इहो अभियान नंढा गांव हुजनि या नंढा शहर, सभिनी हंधि हलायो वियो आहे। पंहिंजो अंगदान करे असां के मजबूर ऐं लाचार जी सहायता करे सघूं था ऐं असां उन्हनि जे ज़रिए हिन दुनिया में ज़िंदा बि रही सघूं था। जीअरे त सभु कम ईंदा आहिनि, मरण खां पोइ कंहिंजे कमु अची सघूं त इन्हीअ खां सुठो को कर्म ई कोन्हे। त अचो सभु मिली करे अंगदान जो प्रण कयूं। दोस्तों, इन्हीअ खां पोइ ॿुधूं था भगवंती नावाणीअ जो ॻाइल ही सुहिणो गीत।

0: दोस्तों आयुर्वेद भारत जी 5000 साल पुरानी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिया है। आयु यानि जीवन, वेद यानि विज्ञान, यो शब्द जेको आहे वो इन बिन्हीं शब्दन सा मिली करे ठयो आहे। ही सिर्फ एक बीमारी जो इलाज कान कंदो आ, बल्कि शरीर मन आत्मा के स्वस्थ रखने जो पूरो तरीको सेखारींदो आ। आयुर्वेद जी पद्धति छाए ऐं उन जी चुनौतियूं छा आहिनि, इन्हीअ विषय ते अॼु असांजे आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूदु आहिनि डॉक्टर लीना गेहानी जी ऐं उन सां गॾु असांजे आकाशवाणीअ जी ही भेण चित्रा चेलानी पाण में भेंट वार्ता कंदियूं ऐं असांखे इन विषय जे बारे में अञा जानकारी ॾींदियूं। त अचो ॿुधूं था उन्हनि जा वीचार।
1: लीना जी, तव्हांजो आकाशवाणी भोपाल में स्वागत आहे।
2: धन्यवाद मैडम।
1: लीना जी, सब का पहरी तवां असा के यो बुधायो त आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी खां केतरी अलग आहे ऐं हिन जी छा विशेषता आहे?
2: आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति या प्राचीन भारतीय चिकित्सा विधान है। जीअं त तव्हां बि बुधायो, व्यक्ति जे शरीर मन ऐं आत्मा जे मिज़ान खे सही कंदी आहे। आयुर्वेद में फितरती इलाज ते ज़ोर ॾियो वेंदो आहे, जीअं त वात पित्त ऐं कफ दोष जो शरीर में अंश ॼाणे करे उन जे हिसाब सां इलाज कयो वेंदो आहे। एलोपैथी दवाऊं बेशक जल्दी कारगर हूंदियूं आहिनि, पर कई साइड इफेक्ट भी गॾु गॾु हूंदा आहिनि। पर आयुर्वेद जी चिकित्सा कुदरती दवाउनि ते मदार रखंदी आहे, जंहिं करे इन जा साइड इफेक्ट्स न जे बराबरि हूंदा आहिनि।
1: पंचकर्म चिकित्सा छा थींदी आहे, इन जे बारे में बि असांखे कुझु ॿुधायो।
2: जी बिल्कुल। आयुर्वेद में बीमारियुनि जो जड़ खां इलाज कयो वेंदो आहे, जंहिं करे पंज कर्मनि द्वारा शरीर जी शुद्धि कई वेंदी आहे। जंहिंमां पहिरों कर्म आहे वमन, जंहिंमें उल्टी कराए मुख जे ज़रिए दोषनि खे ॿाहिरि कढणु हूंदो आहे। वमन चिकित्सा या पुराणी खंघि, सहको, थोल, इन्हनि बीमारियुनि ते कारगर हूंदी आहे। ॿियो आहे विरेचन, इन में जुलाब कराए शरीर मां दोषनि खे मल मार्ग तां कढणु हूंदो आहे। विरेचन मुख्यतः जो चमड़े जा रोग हूंदा आहिनि ऐं पेट जी बीमारियूं हूंदियूं आहिनि, एसिडिटी हूंदी आहे या पुरानी कब्ज़ जेकी हूंदी आहे, उन ते वधीक कारगर हूंदी आहे। ऐं टियों कर्म आहे बस्ती, इन जो तव्हां सभई ॿुधियो बि हूंदो कि इन खे पाण सामान्य भाषा में एनीमा चवंदा आहियूं या एनीमा चई सघूं था। पर इहो एनीमा नॉर्मल पाणीअ जो एनीमा न थी करे इहो आयुर्वेदिक एनीमा हूंदो आहे, जेको जड़ी बूटियुनि जे तेल सां काढ़े सां ठहियलु एनीमा हूंदो आहे। त हे जेकी बस्ती चिकित्सा हूंदी आहे या सभिनीनि वातनि जे वात जे विकारनि ते कमु कंदी आहे, जीअं त ऑस्टियोआर्थराइटिस थियो, बैक पेन थियो, स्पॉन्जिलाइटिस थियो, शियाटिका जहिड़ी बीमारियूं थियूं। ऐं चोथों कर्म आहे नस्य, जंहिंखे पाण सिंधी भाषा में नास बि चई सघूं था। त नस या नास में ईअं थींदो आहे कि औषधि जो जेको जड़ी बूटियुनि जी औषधि हूंदियूं आहिनि, उन जे तेल जो या उन जे रस जो नक में ड्रॉप्स जे स्वरूप में प्रयोग थींदो आहे। त इन नस्य चिकित्सा जो जेको मेन रोल आहे उहो हेयर फॉल जहिड़ी बीमारियूं या समय खां पहिरियां अॼुकल्ह कई माण्हू हूंदा आहिनि जंहिंजा वार अछा थी वेंदा आहिनि, माइग्रेन जहिड़ी बीमारी आहे ऐं पुराणी सर्दी आहे, अहिड़ी कई बीमारियुनि ते इहो नस्य कारगर थींदो आहे। ऐं जो पंजो कर्म आहे उहो आहे रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण बि तव्हां ॿुधियो हूंदो कि आयुर्वेदिक जी हिकिड़ी मुख्य चिकित्सा जे रूप में कमु कंदी आहे ऐं आयुर्वेद जो ॾाढो इम्पोर्टेंट पार्ट आहे इहो रक्त मोक्षण। त रक्त मोक्षण में ज़ोर जे द्वारा ज़ोर लॻाई करे जेकी हिकिड़ो कीड़ो ईंदो आहे जंहिंखे पाण लीच बि चई सघूं था, त उन जे द्वारा या डायरेक्टली सिराउनि मां अशुद्ध रक्त खे ॿाहिरि कढणु थींदो आहे। त रक्त मोक्षण जे द्वारा मुख्यतः जेकी स्किन जी बीमारियूं हूंदियूं आहिनि सभई, उन जो इलाजु कयो वेंदो आहे। त हे पंज कर्म जेके हूंदा आहिनि हे आयुर्वेद जो मुख्य चिकित्सा आधार आहे।
1: मतलबु चिकित्सा जा पंज अलॻि अलॻि रस्ता थिया शरीर मां रोग कढण जा हिकु तरह सां। लीना जी, इहा आम धारणा आहे कि आयुर्वेदिक उपचार कुझु सिलो असर थो ॾेखारे, माना आपातकाल में एतिरो प्रभावी न आहे, त इहा ॻाल्हि केतिरी सही आहे?
2: जी, रोगनि जो जड़ सां इलाज करणु इहो आयुर्वेद जो प्रमुख भाॻु आहे, जंहिं करे आयुर्वेद शरीर जे मॉलिक्यूलर लेवल ते कमु कंदो आहे।
1: जी,
2: इहो ई कारण आहे कि आयुर्वेद धीमी गतीअ सां कमु कंदो आहे। पर इहो चवणु बि ग़लति थींदो कि आपातकाल में आयुर्वेद प्रभावी न आहे। कई अहिड़ियूं स्थितियूं हूंदियूं आहिनि जीअं त हार्ट अटैक थियो, एक्सीडेंट्स आहिनि, स्ट्रोक्स आहिनि, हिन में माण्हूअ खे तुरंत उपचार जी आवश्यकता थींदी आहे। त हिन में आयुर्वेद सां गॾु गॾु एलोपैथी जो बि सहारो वठणु ज़रूरी हूंदो आहे। पर आयुर्वेद में बि अहिड़ी कई हर्बो मिनरल दवाऊं हूंदियूं आहिनि जेके इमरजेंसी ट्रीटमेंट में कमु अची सघनि थियूं। हिननि दवाउनि खे रस औषधि बि चई सघूं था पाण।
1: मतलब आपातकाल में जेकर आयुर्वेद पूरी तरह से कारगर न होजे तो असा एलोपैथी के गड खणी इनके प्रभावी ठाए सकूं था।
2: जी बिल्कुल, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट करे सकूं था आयुर्वेद ए एलोपैथी जो।
1: जी, ए लाइफस्टाइल डिजीजेस अजकल दिसूं था हर घर में बीपी शुगर ये बीमारियों थी वयो आइन, हर घर में मौजूद आइन, त इनहन जे इलाज में आयुर्वेद केतरो प्रभावी आहे?
2: बिल्कुल सही गाल कयो तव्हां मैडम। लाइफस्टाइल डिज़ीज़ असांजे गैर मुनासिब खाधे पीते ते ऐं गैर मुनासिब व्यवहार सां पैदा थींदियूं आहिनि, जीअं त डायबिटीज़ थियो, मोटापो, हाई ब्लड प्रेशर थियो, थायरॉइड डिसऑडर्स अॼुकल्ह ॾाढो कॉमन आहे, हर घर में लगभॻि हिकु ॿ या ॿ पेशेंट थायरॉइड डिसऑडर्स जा हूंदा ही आहिनि। ऐं अॼुकल्ह जी हिकदमि बर्निंग जेकी प्रॉब्लम आहे ज़ाइफ़ुनि में थियण वारी, किशोरियुनि में बि 16-17 ईयर्स ताईं शुरू थियण वारी इहा बीमारी आहे लाइफस्टाइल डिज़ीज़, जेके पाण PCOD चवंदा आहियूं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़, जंहिंमें कन्याउनि जी या लेडीज़ जी जेकी महीने जी प्रॉब्लम आहे, हुनखे हुन में इरेग्युलरिटीज़ अची सघनि थियूं, इनफर्टिलिटी थी सघे,

0: त अहिड़ियूं जेकी बीमारियूं आहिनि हे सभई लाइफ स्टाइल डिज़ीज़िस में काउंट थींदियूं आहिनि। आयुर्वेद जी जीवन शै आयुर्वेद में हिकु जीवन शैली खे सही रखण लाइ कई एक्टिविटियूं अहिड़ियूं ॿुधायल आहिनि, जीअं त दिनचर्या थी, ऋतुचर्या थी ऐं भोजन ग्रहण करण जा सही नियम ॿुधाया आहिनि। त इन्हनि सभिनीनि एक्टिविटीज़ जो अगरि रेगुलरली पालन कयूं था त लाइफ स्टाइल बीमारियुनि सां बचाव करणु मुमकिन आहे।
1: जी, आयुर्वेद एतिरो प्रभावी त आहे लाइफ स्टाइल डिज़ीज़िस में विशेष रूप सां, पर उन खां पोइ बि चङनि माण्हुनि में अॼु ॾिसूं था त आयुर्वेद जे प्रति अञा उदासीनता आहे कुझु, या वरी एलोपैथी जे कंपैरिजन में अञा बि हिन जो चलन कुझु घटि आहे। तव्हां छा था समुझो इन्हे जो छा कारणु आहे?
0: एलोपैथी खे आयुर्वेद खां वधीक अहमियत ॾियण जे पोइतां कुझु कारण थी सघनि था, जीअं त माण्हुनि खे इमीजिएट रिज़ल्ट जी अपेक्षा हूंदी आहे। हाँ। एलोपैथी जा जीअं पेन किलर्स हूंदा आहिनि, एंटीबायोटिक्स हूंदा आहिनि, तुरंत असरु कंदा आहिनि। पर इहो जेको इलाजु हूंदो आहे इहो सिम्पटोमेटिक इलाजु हूंदो आहे, माने पेशेंट खे तंहिं महिल ॾाढो सुठो लॻंदो, लेकिन अञा बीमारीअ खे पूरी तरीक़े सां जड़ सां हिन जो नाश न थियल आहे। कई माण्हुनि खे आयुर्वेद जे बारे में अवेयरनेस बि कान्हे नाहे कि आयुर्वेद सभिनीनि बीमारियुनि ते कारगर थी बि सघे थो। आयुर्वेद जे प्रति उदासीनता जो हिकिड़ो कारण इहो बि थी सघे थो कि हिन में अञा साइंटिफिक रिसर्च ऐं जे दवाउनि ते जेकी स्टैंडर्डाइज़ेशन थींदी आहे उनजी अञा कमी आहे। पर इहो चवण बि ग़लति थींदो कि आयुर्वेद जो चलन घटि आहे, छोकी पाण ॾिठोसीं COVID-19 पेंडेमिक में असां सभिनीनि इम्यूनिटी वधाइण लाइ वधीक सां वधीक माण्हू आयुर्वेद ते मदार रखणु लॻिया।
1: जी, इहा त तव्हां बिल्कुलु सही ॻाल्हि चई। आयुर्वेदिक उपचार में एक रूपता अचणु घुरिजे त ही एक रूपता अची सघे ऐं जेके दवाऊं आहिनि उन में साक्ष्य आधारित गुणवत्ता बि मेंटेन थिए, त इन दिशा में छा कम थी रहिया आहिनि?
0: बिल्कुलु, आयुर्वेद जी दवाउनि जो स्टैंडर्डाइज़ेशन ऐं एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट थियणु, माने जेकी दवाऊं ठहनि थियूं उहा पैरामीटर्स ते खरो उतरण लाइ उनखे रिसर्च थियणु हुनजे मथां। ऐं भारत सरकार जी हिकिड़ी इहा संगठना बि आहे, तव्हां ॿुधियो हूंदो, CCRS करे, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसिस, आयुष मिनिस्ट्री द्वारा संचालित थींदो आहे। त CCRS आयुर्वेद चिकित्सा जे विषय में इलाज जा जेके बि इलाज थींदा आहिनि उन्हनि जा रिसर्च प्रोजेक्ट हलाईंदो आहे। आयुर्वेद जी दवाउनि जी क्वालिटी चेक कंदा आहिनि केतिरियूं असरदार आहिनि, हिननि सभिनीनि पैरामीटर्स ते इहो CCRS कमु कंदो आहे।
1: जी, रिसर्च जारी आहे।
0: जारी आहे, बिल्कुलु।
1: जी, ऐं अॼुकल्ह आयुर्वेद जे विषय में भ्रामक प्रचार जा मामला बि साम्हूं था अचनि, त इन सां कीअं पुॼी सघूं था?
0: इहा हिकु गंभीर समस्या आहे कि इलाही माण्हू आयुर्वेद जे विषय में ग़लति ऐं भ्रामक प्रचार करनि था। हिन सां बचण लाइ सभिनीनि खे खपे त सर्टिफाइड आयुर्वेद चिकित्सक सां ई इलाज कराइणु घुरिजे, जेके डिग्री होल्डर्स आहिनि, BAMS जी बैचलर्स ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी जी जेकी डिग्री आहे उहा ऑथेंटिक डिग्री आहे, ऐं उन खां पोइ MD बि थींदो आहे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स में, जीअं ज़ाइफुनि जो रोग थियो, मेडिसिन थी, पंचकर्म थियो, ॿारनि जा बि पीडियाट्रिशियंस बि आयुर्वेद थींदा आहिनि। त अहिड़नि चिकित्सक सां इलाज कराइणु घुरिजे, ऐं अहिड़ा जेका पाण खे डॉक्टर घोषित करण वारा पर बिना आयुर्वेद जी डिग्री जा इलाही माण्हू हूंदा आहिनि, जड़ी बूटियुनि सां इलाजु करण वारा, वैद्य विशारद पाण खे चवण वारा, अहिड़नि माण्हुनि सां इलाजु कराइण सां परहेज करण ही उन्हनि जी अवेयरनेस ॾियण ई ॾाढी ज़रूरी आहे।
1: मानसिक विकार बि अॼुकल्ह ॾाढा वधी विया आहिनि, डिप्रेशन थी वियो या वरी नंढड़नि ॿारनि में ऑटिज़म थी वियो, त इन में आयुर्वेद प्रभावी आहे?
0: आयुर्वेद में शारीरिक स्वास्थ्य खां गॾु गॾु मानसिक ऐं आध्यात्मिक स्वास्थ्य ते बि घणो ई ज़ोर ॾिनल आहे। अहिड़ा चङई कर्म आहिनि जीअं त शिरोधर आहे ऐं नास आहे, नस्य आहे, योगा जेको आयुर्वेद जो हिकु अंग आहे, ऐं ध्यानु आहे, त अहिड़ी आयुर्वेदिक जीवन शैली जेके मानसिक विकारनि ते कारगर आहे। अहिड़ा कई द्रव्य बि आहिनि, ड्रग्स आहिनि आयुर्वेद में, जीअं ब्राह्मी थियो, शंखपुष्पी, जटामांसी, इन्हनि खे मेध्य द्रव्य चयो वेंदो आहे। त अहिड़ियूं सभियूं आयुर्वेदिक दवाऊं मानसिक विकारनि ते चङो ई सुठो रिज़ल्ट ॾेखारी सघनि थियूं।
1: त लीना जी, हलंदे हलंदे मां चाहियां थी त तव्हां असांखे इहो बि ज़रूरु ॿुधायो, पंहिंजे रोज़मर्रा जे जीवन में असां आयुर्वेद खे कीअं था जोड़े सघूं?
0: बिल्कुलु मैडम, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद

0: जो भी इहो ई नारो आहे की घर घर आयुर्वेद पहुचणु घुरिजे, त आयुर्वेद में उत्तम जीवन शैली ॿुधाई वई आहे, जंहिंमें ब्रह्मा मुहूर्त ते उथण खां वठी राति जो सुम्हण ताईं जो होलिस्टिक नियम आहे, उन्हनि जो पालन करे सघूं था। दिनचर्या कॾहिं समय मिलियो त असां दिनचर्या ते ॾाढो ॻाल्हाईंदासीं की उन में कहिड़ी कहिड़ी दिनचर्या एक्टिविटीज़ वर्णन थियल आहे, उन जो पंहिंजे दैनिक जीवन में असां उपयोग करे सघूं था। आयुर्वेद जी हिकिड़ी विशेषता हीअ बि आहे की हिन में हर मुंद जे मुताबिक़, हर ऋतु जे मुताबिक़ भोजन करण जो ऐं रहण जो तरीक़ो इन में ज़िक्र आयुर्वेद में मिलंदो आहे। मिसाल जे तौर ते इहा जेकी शरद ऋतु हले थी, इन मां शरीर जो पित्त वधी वेंदो आहे, ऐं इन लाइ हिन मुंद में भोजन हल्को करणु घुरिजे। भोजन जे बारे में जेके नियम ॿुधायल आहिनि उन्हनि खे अपनाइणु ज़रूरी आहे। हिन शरद ऋतु में आवरो, डाख, शतावरी अहिड़े ड्रग्स जा सेवन करणु घुरिजे। त हर मुंद जे मुताबिक़ जेको आहार ॿुधायल आहे हिन में आयुर्वेद में, उनखे पाण ऋतुचर्या चई सघूं था। त ऋतुचर्या जो बि ज़िक्र असां कॾहिं समय मिलियो त ज़रूरु कंदासीं मैडम
1: जी। माना पंहिंजी जीवन शैली में वधीक सुधार जी ज़रूरत आहे, जीअं चइबो बि आहे त प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जी, महिरबानी लीना जी, अॼु असां सां तव्हां जुड़िया ऐं असांजे श्रोताउनि में सुजाॻी आणण जो कमु कयव, तव्हांजा लख थोरा आहिनि।
0: जी, मां बि आकाशवाणी भोपाल जी आभारी आहियां जो तव्हां मूंखे इन भेंट वार्ता में आयुर्वेद विषय ते ॻाल्हाइण लाइ आमंत्रित कयो। धन्यवाद
2: दोस्तो। हाणे हिकु ॼाण, अॼु जे ज़माने में विज्ञान ऐं तकनीक असांजी ज़िंदगीअ जो अहम हिसो ठही वियो आहे। मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ऐं ॿिया इलेक्ट्रॉनिक सामान वापराइण हर घर में थींदो आहे। इन मां निकिरंदड़ कचरे खे ई वेस्ट चवंदा आहिनि। ई वेस्ट जो प्रबंधन अॼु पूरी दुनिया लाइ ज़रूरी आहे। ई वेस्ट वधंदो थो वञे ऐं उन जो कारण आहे रोज़ नवां बदिलाउ। कंपनियूं नवां नवां मॉडल बाज़ारि में आणींदियूं आहिनि, जंहिं करे माण्हू पुराणा मोबाइल ऐं कंप्यूटर छॾे नवां मॉडल वठनि पिया। घणेई दफ़ा त इलेक्ट्रॉनिक सामान जी मरम्मत एॾी महांगी पवंदी आहे की माण्हू उन खां नओं वठणु पसंदि कंदो आहे। इन सभिनी सां ई वेस्ट वधंदो आहे ऐं जंहिंसां घणेई नुक़सान बि थियनि था। ई वेस्ट में जेके हानिकारक रासायनिक शयूं हूंदियूं आहिनि, हिन खे अगरि खुलियल मैदान में फिटी कयूं या ग़लति तरीक़े सां साड़ियो वञे त इन में जेके ज़हरीला पदार्थ हूंदा आहिनि उहे पाणी ऐं ज़मीन में मिली सघनि था, जंहिंसां पर्यावरण ऐं माण्हुनि खे घणेई नुक़सान पहुचे सघे थो। हिन खे साड़बो त ज़हरीली गैसियूं पर्यावरण खे अञा प्रदूषित कंदियूं, जंहिंसां माण्हुनि में साह जी बीमारी, स्किन जी बीमारी ऐं ॿिए बि घणेई बीमारियूं थी सघनि थियूं। दोस्तों, इन करे ही ई वेस्ट जो सही प्रबंधन पर्यावरण खे संभाले रखण में ॾाढो ज़रूरी आहे। ई वेस्ट खे आम कचरे सां गॾु न फिटी करे अलॻि जमा करे रीसाइक्लिंग केंद्रनि ते ॾियणु घुरिजे, जिते उहे इलेक्ट्रॉनिक सामान में शामिल जेके ज़रूरी पदार्थ आहिनि उन्हनि खे सुरक्षित तरीक़े सां अलॻि करे वरी इस्तेमालु करे सघनि। अचो सभु मिली करे इहा जानकारी पाण बि हंडायूं ऐं सभिनी ताईं पहुचायूं ऐं पंहिंजे पर्यावरण खे गॾोगॾु सुरक्षित बि बणायूं। दोस्तों, इन ॼाण खां पोइ हिकु ॿी ॼाण बि मां ॾियणु चाहींदमि। हर साल 19 अगस्त ते विश्व फोटोग्राफी दिवस मल्हायो वेंदो आहे। फोटोग्राफी सिर्फ़ु फोटो खीचण जो हुनर न आहे, हिकु अहिड़ी कला आहे जेकी गुज़िरियल पलनि ऐं यादुनि खे वरी ज़िंदो रखंदो आहे। हिकु तस्वीर बिना शब्दनि जे ॾाढो कुझु बयां कंदी आहे। फोटोग्राफीअ जे ज़रिए असां दुनिया खे हिकु अलॻि नज़रिए सां ॾिसण ऐं समुझण जी कोशिश कंदा आहियूं। हिन ॾींहुं खे मल्हाइण जो ख़ासि कारणु आहे त असांजे हर हिकु पल खे जेके तस्वीर में क़ैद कंदा आहिनि उहे आहिनि असांजा फोटोग्राफर। उन्हनि जे हुनर जी सराहना थी कई वञे। फोटोग्राफर पंहिंजे कैमरा जे ज़रिए अहिड़ियूं तस्वीरूं असांजे साम्हूं आणींदा आहिनि जंहिंजी असां कल्पना बि नथा करे सघूं। फोटोग्राफी इतिहास खे महफ़ूज़ रखण में वॾी भूमिका रखे थी। पुराणा शहर, इमारतूं, आंदोलन, युद्धनि ऐं समाज जी हर घटना या किसनि जूं तस्वीर असांखे पंहिंजे अतीत जी जानकारी ॾियनि थियूं। अहिड़ियूं घणेई ऐतिहासिक घटनाऊं तस्वीरनि जे ज़रिए अचण वारी पीढ़ियुनि ताईं पहुचनि थियूं। प्रकृतिअ जी ख़ूबसूरती, जंहिंमें पहाड़, नदियूं, जंगल, फल फूल, पक्षी, जानवर, सभिनी जूं तस्वीर अहिड़ियूं आहिनि जेके मन ई मोहे छॾींदियूं आहिनि। हाणे त मोबाइल फ़ोन जे ज़रिए फोटोग्राफी हर इंसान जी पहुच आहे। सोशल मीडिया जे वधंदड़ इस्तेमाल सां फोटोग्राफीअ जी अहमियत अञा वधी वई आहे। अॼु तस्वीर सिर्फ़ु यादुनि लाइ न पर शिक्षा, समाचार, विज्ञान ऐं सोशल मीडिया लाइ घणेई इस्तेमालु थींदियूं आहिनि। अॼु जी नई टई फोटोग्राफीअ में वधीक रुचि थी रखे, फोटोग्राफीअ में पंहिंजो केरियर ठाहिण थी चाहे, जीअं त वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी या स्पोर्ट्स अड़ा ही घणई करियर आहिन जेमे असांजी नई टई अग्या वधी रही आहे। अज जी तकनीक सा कैमरा भी बेहतर थी वया आहिन। विश्व फोटोग्राफी दिवस असांखे इहो याद थो ॾियारे कि हर एक फोटो घणई शब्द घणई कहाणी।

दोस्तों, हर साल वांगुर हिन साल बि 19 अगस्त ते विश्व मानवतावादी दिवस मल्हायो वेंदो आहे। ही ॾींहुं हुन तमामु मानवतावादी कार्यकर्ताउनि ऐं सेवकनि खे सम्मान ॾियण लाइ मल्हायो वेंदो आहे, जेके कंहिं बि मुश्किल हालात में फाथल माण्हुनि जी सहायता था कनि। मानवता जो मतिलबु इहो आहे कि बिना कंहिं भेदभाव सां ज़रूरतमंद इंसान जी सहायता करणु या उन जो दुख दर्द सम्झणु। मानवता असांखे इहो सेखारे थी कि हर इंसान सां हिकु जहिड़ो व्यवहार करणु घुरिजे। जाति, धर्म, भाषा, अमीर ग़रीब कंहिं सां बि भेदभाव न कजे। मुश्किल समय में हिकु ॿिए जी मदद करणु ई सची मानवता आहे। मानवतावादी कार्यकर्ता मुश्किल वक़्त में ज़रूरतमंद जी मदद कंदा आहिनि। प्राकृतिक आपदा जीअं त बाढ़ हुजे, भूकंप आहे, तूफ़ान आहे, उन जे समय ज़रूरतमंद ताईं रोटी, पाणी, कपिड़ा ऐं दवाऊं पहुचाइणु, ग़रीबनि जी मदद करणु, बुखियलनि खे मानी ॾियणु, बीमारनि जी सेवा करणु ई त मानवता जो वॾो उदाहरण आहे। अगरि दुनिया में सभु हिक ॿिए जे दुख तकलीफ़ खे सम्झण लॻंदा त समाज में शांति, प्रेम वधीक मज़बूत थींदो। मानवता खां वॾो कोई धर्म न आहे। दुखियलनि जी सेवा करण खां वॾो कोई सुख न आहे। बिना स्वार्थ जे सेवा करणु ई सची इंसानियत आहे। असां सभु मिली करे कोशिशि कयूं त समाज में प्रेम ऐं भाईचारे खे वधायूं। दोस्तों, हाणे वक़्तु थियो अॼु जे कार्यक्रम खे पूरो करण जी। ॾींदा इजाज़त पंहिंजी रेडियो साथी जानवी भावनानीअ खे। उमेदु आहे त तव्हांखे इहो कार्यक्रम वणियो हूंदो। तव्हां पंहिंजा राया पंहिंजे ख़तनि ज़रिए असांखे आकाशवाणीअ ते मोकिलींदा या असांजे फेसबुक पेज ते बि पोस्ट कंदा। मिलूं था हिकु नई ख़ुशीअ सां, हिकु नई उमेद सां, हिकु नए कार्यक्रम सां। सभ जो भलो।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी, इस रेडियो धारावाहिक की छठवीं कड़ी।

विप्लवियों के सूचना तंत्र से अनजान थे फिरंगी। खोज खबर तक नहीं हो पाती थी उन्हें भीतर ही भीतर चल रही गदर की तैयारियों की। साधु और फकीर रोटियों का संदेश यहां से वहां तक ले जा रहे थे। छावनियों में मौजूद आहत बेचैनी के साथ कर रहे थे। बुंदेलखंड भी अपने हिस्से की भूमिका का निर्वाह करने को प्रस्तुत था रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में।

0: रानी बुंदेलखंड के जमींदारों ठिकानेदारों के सतत संपर्क में थी। बानपुर के राजा मर्दन सिंह, शाहगढ़ नरेश बखत बली शाह, गोंडवाने के रायगढ़ की रानी अवंतीबाई और अन्य कई अपने दलबल के साथ स्वाधीनता के महायज्ञ में आहुति देने के लिए तैयार थे। रानी के आह्वान की चिट्ठियां उन तक पहुंची थीं।
1: श्री महाराज अधिराज, श्री बहादुर जुदेव ऐते, श्री महारानी, श्री रानी लक्ष्मीबाई जू देवी के वांचने आपर अपन के समाचार भले चाहे जे, इहां के समाचार भले हैं। आपर हमारी अपनी और राजा सहागढ़ सहाव और तात्या टोपी की सलाह भई थी के सुराज भव चाहे जे। सलाह पर डटो रानी है, कैसे भारत अपनो देश है, विदेशियों की गुलामी में रहबो अच्छो नहीं है, उनसे लड़वो अच्छो है। पाती समाचार देवी में आवे
0: और उसके प्रत्युत्तर में रानी को संदेश मिला। श्री महाराज कुमार, श्री महाराजाधिराज, श्री राजा मर्दन सिंह बहादुर जू एते, श्री महारानी श्री लक्ष्मीबाई जू देवी के वाचने आपुर आपुन को संदेश भले चाहिए। यहाँ के समाचार भले हैं, आपर अपनी पाती लाला दुलारे लाल के हाथ आई सो हाल मालूम भव। अपुन ने लिखी है कि फौज की तैयारी में लगे रहो सो मन को खुशी भई। हमारी राय है कि विदेशियन को शासन भारत पे ना भाव चाहिए और अपुन को बड़ो भरोसो है और हम फौज की तैयारी कर रहे हैं सो अंग्रेजन से लड़बो बहुत जरूरी है। पाती समाचार देने में आवे।

0: दूर से देखेगा।
1: आज रानी साहिबा ने अपने खास खास लोगों को बुलाया है। स्त्री सेना के साथ साथ जवाहर सिंह और रघुनाथ सिंह भी आएंगे और दूसरे सैनिक भी, बाजार के दुकानदार, साहूकार और आसपास के गांवों के पंच चौधरी भी बुलाए गए हैं। लगता है कुछ खास बात है। लो, रानी साहिबा भी आ गई।
0: ओह, आज तो पूरे सैनिक वेश में है महारानी और घोड़े पर सवार। कुछ भी कहो, इस बाने में रानी बहुत भली लगती हैं। साक्षात दुर्गा ने जैसे मातृभूमि को मुक्त करने के लिए अवतार लिया हो।
1: वो भी तब जब अनाचारी अंग्रेजों के जुल्म सितम से चाहूं और त्राही त्राही मची है।
2: अंग्रेजन को मद और अहंकार तो अब सहन से बाहर हो गए है भैया। कल कटरा से कछु दम भी अंग्रेज गुजरे थे, सो दुकानदार अपनी गद्दियों से नहीं उठे और वह का कहा उतना कॉर्नेस करी। सो इतनी सी बात पे अंग्रेजन ने जो सामने आओ सो वही पे कोड़े बरसाए, वही पे कोड़े बरसाए।
3: अरे भैया, फौज में माथे पे तिलक चंदन लगाए की मनाही है, ये तो अपने अपने धर्म की बात है, लेकिन अंग्रेज इसे नाफरमानी माने हैं और लात घूसा बरसाने लगे हैं। कब तक कोई बर्दाश्त करे भैया, मेरी तो समझ से बाहर है।
4: और वो चर्बी वाले कारतूसों को तो सुना ही होगा, वो तो खास इसलिए बनाए गए हैं कि हिंदू ना रहे हिंदू,
3: हाँ,
4: और मुसलमान ना रहे मुसलमान। भाड़ में जाए धर्म और ईमान, इंग्लिस्तान बन जाए हिंदुस्तान। राम राम
2: राम राम
3: राम राम।
2: उदना भैया, सरे बाजार इन अंग्रेजन ने एक दूल्हा को जबरदस्ती घोड़े से उतार दो और पूरी बरात पे कोड़े बरसाए। हमारे यहाँ तो दूल्हा कोनो जात को होवे, एक दिना को राजा होते भैया, एक दिना को राजा।
3: अरे भैया भैया, इन्हें जब असल राजा को नाय बख्शो तो दूल्हे राजा कहाँ लगे हैं? पेशवा, महाराजा, अधिराज, नवाब, जमींदार कोई भी तो दूर दूर तक ना दिखे इन अकड़फू कंपनी बहादुरन के सामने। बेचारी रैयत कौन से खेत की मूली है, जाके पास 2 जून के लिए अपनी रोटी तलक ना है और ना है तन ढकबे को चीथड़ा।
2: लेकिन भैया, रैयत में बड़ी ताकत है, यही से हम हुए जनता जनार्दन कथ है। जनता से छेड़छाड़ इन गोरन के लाने बड़ी भारी पड़ेगी ताऊ। हमारे मुंह से 100% की बात निकली है, सो तुम देख लियो।
3: चुप चुप, रानी गारद का निरीक्षण करके चौतरा पे आ गई है।
5: महारानी लक्ष्मीबाई की जय।
6: हमारी प्यारी झांसी के प्रजाजनों, हम आज आपको अपने कर्तव्यों की याद दिलाने के लिए आपके पास आए हैं। आज केवल झांसी ही नहीं, समूचे भारतखंड और जम्बूद्वीप को विदेशी अत्याचार की काली आंधी ने घेर लिया है। खतरे में पड़ गई है हमारी पहचान, हमारा धर्म, हमारा ईमान, हमारी परंपरा, हमारी तहजीब और भाईचारे से बना हुआ हमारा ये समाज, हमारे खेत और खलिहान, हमारे गांव और हाट बाजार, हमारी चौपालें, पंचायतें, कुछ भी अब सुरक्षित नहीं रहा। हमसे छीनी जा रही है हमारे मुंह की रोटी, हमारे संतानों की छत और हमारे हाथों का काम। अब हम नहीं गा सकेंगे अपनी फागें और न ही गुंजा सकेंगे आल्हा की हुंकारें। ये संकट की घड़ी है और हमारा कड़ा इम्तिहान है। क्या हम इस अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हैं?
5: तैयार है, तैयार है।
7: हुकुम करो, रानी, रानी, हुकुम करो।
6: प्रजाजनों, ये राह सीधी, सरल और आसान नहीं है, बलिदानों का पथ है ये। साफ समंदर पार से धाए इस रावण को पराजित करने के लिए भगवान राम की सेना की तरह जन जन को इस धर्म युद्ध में शामिल होना है। सात आकाशों की दूरी से जब इंद्र ने ब्रजभूमि पर अपना गुस्सा बरसाया था तो भगवान कृष्ण के गोवर्धन पर्वत में ग्वाल बालों की अंगुलियों और लकुटियों की टेक लगी थी, तभी रक्षा हो सकी थी।
2: महारानी लक्ष्मीबाई की
5: जय।
2: महारानी लक्ष्मीबाई की
5: जय।
6: ये हमारी रोटी की लड़ाई है जिसे गोरा लुटेरा छीनने को आया है। ये किसान कामगार और जनता की लड़ाई है। ये आन बान और शान को चुनौती है, संकल्पों की परीक्षा है। अपने हक और अधिकार के लिए हमें ये परीक्षा देनी है, इस चुनौती का सामना करना है।
2: रानी साहिबा हुकुम करे, हुकुम करे। जननी जन्म दियो है हमको, जय दिना के लाने। जननी जन्म दियो है हमको, जय दिना के लाने।
6: देशवासियों, शपथ लो कि आज से और अभी से तुम्हारा तन मन और ये जीवन अपने प्यारे वतन के लिए समर्पित होगा। अहद करो कि विदेशी गोरों के खिलाफ उठी हुई तुम्हारी ये तलवार सदा आतताइयों और अत्याचारियों का दलन करेगी। युद्ध के हमारे मूल्यों और परंपराओं का तुम सदैव पालन करोगे और कभी किसी अन्याय का साथ नहीं दोगे। नियंत्रण, व्यवस्था और अनुशासन, इसी से यह धर्म युद्ध लड़ा जाना है। सेना का संचालन एक ही लक्ष्य को सामने रखकर होना है, हमारी आजादी, हमारा आत्माभिमान और देश का गौरव। इसमें कोई चूक क्षमा नहीं की जाएगी। क्या तुम इसकी शपथ लेते हो?
5: हाँ,
6: और अब ध्यान से सुनो, आजादी के सेनापतियों ने एक तारीख मुकर्रर की है, ये स्वतंत्रता के सूर्योदय की तारीख है, भारतवासियों के विप्लव के महाविस्फोट का दिन। विदेशियों की दास्तां हमें स्वीकार नहीं, ये उद्घोष उस दिन धरती से आकाश तक गूंज उठेगा। स्वतंत्रता का महासमर 31 मई को शुरू हो जाएगा। याद रखना, भारत के इतिहास को बदल देने वाली ये तारीख होगी 31 मई। हमारी आजादी की तारीख होगी इसी साल की 31 मई।

0: आपस के भेदभाव भुलाकर हमें एकता के साथ इस महाअभियान को चलाना है। गरीबी और अमीरी का, जाति पाति ऊंच नीच, धर्म का कोई भी भेद हमारी एकता को छिन्न भिन्न करेगा। हमारी कमजोरी से शत्रु को ताकत मिलेगी। जो जहां है वहीं अपने काम पर जुटा रहे। 31 मई अभी दूर है और इस समय को हमें तैयारी में लगाना है। ये सबका अभियान है, हर एक का अनुष्ठान है। ये स्वतंत्रता का संग्राम है, जन जन की स्वतंत्रता का संग्राम। ये किसी राजा रानी बादशाह नवाब की नहीं, जनता की लड़ाई है, हम सब की चुनौती है। हर हर महादेव।
1: खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, राज रानी लक्ष्मीबाई का, महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की।
0: उठो, जागो और चल पड़ो। हमारे अपने बीच कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो चांदी के कुछ टुकड़ों के लालच में देश से गद्दारी कर रहे हों। ऐसे लोगों को पहचानने और उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोग हमेशा ही मिलते हैं, लेकिन इतिहास देशभक्तों और शहीदों के लहू से लिखा जाता है, जो बलिदानों से सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। ये अपनी माटी से, अपनी धरती से, अपने देश से प्रेम का रास्ता है, ज्वालाओं और अंगारों का पथ, अग्निपथ। आओ हम सब इस पर चल पड़ें, मंजिल हमारे सामने है।

आजादी की शमा प्रज्वलित होने का अवसर आ गया था। घर घर में उसके प्रकाश की प्रतीक्षा थी। आंखों में आजादी के सपने

मन में आजादी के स्वागत की उमंग, हौसला और विश्वास। समूचा देश अनुप्राणित था। स्फीत शिराओं में एक नए रक्त का संचार हो रहा था। देश तैयार हो रहा था युगांतर के लिए, एक नई अंगड़ाई और करवट के लिए।

0: विप्लव की तिथि तय थी 31 मई, लेकिन दासता का एहसास क्षण प्रतिक्षण असह्य होता जा रहा था। कंपनी की निरंकुश स्वेच्छाचारिता, राष्ट्रीय भावनाओं के उपेक्षापूर्ण दमन, स्वाभिमान पर उन्मादी प्रहार और अवेलना, अवमानना, अपमान, सब्र का लोहा गर्म होकर लाल होता जा रहा था। धीर निश्चल विशाल शिलाखंड तिल तिल गलते गलते लावा बन रहे थे। लाल लाल लोहा हथियारों में ढलने को और निर्णायक प्रहार करने के लिए कसमसा रहा था। क्रांति का क्षण पास आ रहा था।
1: प्रतीक्षा कठिन होती जा रही थी। धीरज का प्याला लबालब भरकर छलकने लगा था और अचानक विद्रोह शुरू हो गया।

0: फरवरी के महीने में कलकत्ता के पास बैरकपुर और बांकुरा के पास रानीगंज में अंग्रेजी फौजों के हिंदुस्तानी सिपाहियों ने चर्बी लगे कारतूसों के खिलाफ अपनी तलवारें उठा ली। ये लहर धीरे धीरे पूरे बंगाल में फैल गई, किंतु अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया।
1: अंबाला और मेरठ के सिपाही अपने बैरकों में आग लगा देते थे, अंग्रेज अफसरों की हत्या कर देते थे। विप्लव के संदेशवाहक, साधु और फकीर अवध और उत्तर पश्चिम भारत के अन्य जिलों में जनता के बीच घूम रहे थे। ये फरवरी मार्च के महीने थे।
0: इस भूभाग का नेतृत्व बिठूर के नाना धोंदू पंत ने संभाल लिया था। नाना दिल्ली के शहजादों और अवध के नवाबों के संपर्क में तो थे ही, उन्होंने सहायता के लिए रूस और ईरान के शाहों को भी नामा निगार भेजे थे।
2: तमाम अंग्रेज छावनियों में स्थानीय स्तर पर उपद्रव शुरू हो गए थे और अंग्रेज अफसर अमानुषिक अत्याचारों से उन्हें दबाने में लगे थे, लेकिन आग की लपटें फैलती ही जा रही थीं।
0: लखनऊ में बंगालियों की रेजिमेंट, देशी घुड़सवार सेना और अवध की सातवीं अनियमित सेना ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेज अफसर, अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया और दिल्ली की दिशा में चल पड़े। कूच का डंका आलम में बजा दिया दीवानों ने।
1: अंग्रेजों को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद बागियों ने बहादुर शाह जफर को देश का बादशाह घोषित कर दिया।
0: एक समकालीन इतिहासकार ने लिखा, सिपाहियों का विद्रोह पूरे हिंदुस्तान में फैल गया है। 20 अलग अलग स्थानों पर एक साथ सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया है। विद्रोह के मुख्य केंद्र हैं आगरा, बरेली और मुरादाबाद। कानपुर में कमान नाना साहब ने अपने हाथ में ले ली है।

25 मई 1857 तक स्वाधीनता का ये महासंग्राम अपने उफान पर पूरी तरह आ गया। समूचा भारत एक कुरुक्षेत्र बन गया था। राष्ट्रीयता के जोश और उमंग ने अपने तटबंध तोड़ दिए थे। स्वाधीनता का अग्निनद बहता चला जा रहा था। जीर्ण पुरातन को अपने आप में समेटता हुआ नई संभावनाओं और नए जीवन की तलाश में स्वाधीनता के लक्ष्य की ओर अग्रसर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी का छठवां भाग। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बजने को हैं। अब आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में श्री वाजपेयी की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। इस दौरान श्री शाह ने राजस्थान में 15 जिलों के 5,755 करोड़ रुपए के 944 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भोपाल में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर स्थित कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी का लोकार्पण किया। इस अत्याधुनिक सुविधा में पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों को मनोरंजन के साथ वन्य जीवों और प्राकृतिक परिवेश का रोमांचक और जीवंत अनुभव प्राप्त होगा। उज्जैन में नागपंचमी पर आज रात 12 बजे नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खुलेंगे। वर्ष में केवल एक बार मंदिर के पट खुलने के बाद लगभग हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इस बार नागपंचमी और सावन के तीसरे सोमवार का संयोग होने से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। प्रदेश के जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं आज प्रदेश के 18 जिलों में 4 इंच या उससे अधिक बारिश होने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 12% कम बारिश हुई है। और गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहली पारी में ताज़ा समाचार मिलने तक 6 विकेट पर 407 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण आज पहले और दूसरे सत्र का खेल नहीं हो सका था। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का मनचाहा कार्यक्रम युवावाणी। योगदान है आकाशवाणी शिवपुरी का।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति दिवस पर। साथ ही हमारा दूसरा विषय रहेगा विश्व फोटोग्राफी दिवस। दोस्तों, क्रम जीवनालोक में हम चर्चा करेंगे खुलकर हंसे और स्वस्थ रहे विषय पर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति दिवस पर। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के महान राजनेता, कुशल वक्ता, कवि और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय राजनीति के उन महान व्यक्तित्व में से एक हैं जिन्होंने अपने विचारों, आदर्शों और सरल व्यक्तित्व से देशवासियों के दिलों में विशेष स्थान बनाया। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 16 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह दिन उनके जीवन, विचारों और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को याद करने का अवसर है। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर सन 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। वे बचपन से ही अध्ययन और साहित्य में रुचि रखते थे। उनकी वाक्पटुता और प्रभावशाली लेखन ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। वे एक उत्कृष्ट कवि भी थे। उनकी कविताओं में देशभक्ति, आशा, संघर्ष और मानवता की भावना दिखाई देती है। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय भूमिका निभाई। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में भारत ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। वर्ष 1998 में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षणों ने भारत की सामरिक क्षमता को मजबूत किया। उनके कार्यकाल में देश के बुनियादी ढांचे और सड़क विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना उनके विकास संबंधी दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण उदाहरण है। दोस्तों, अटल जी की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक उनका लोकतांत्रिक और उदार दृष्टिकोण था। वे राजनीतिक मतभेदों के बावजूद अपने विरोधियों का सम्मान करते थे। उनका मानना था कि लोकतंत्र में संवाद और सहमति का बहुत बड़ा महत्व है। उनकी भाषण शैली इतनी प्रभावशाली थी कि संसद में उनके विचारों को सभी दलों के लोग ध्यान से सुनते थे। वे राष्ट्रहित को राजनीति से ऊपर रखने के लिए जाने जाते थे। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी को वर्ष 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 16 अगस्त सन 2018 को उनका निधन हो गया। उनके निधन से देश ने एक महान राजनेता, कवि और राष्ट्र सेवक को खो दिया। उनकी स्मृति आज भी करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। साथियों, स्मृति दिवस हमें केवल किसी महान व्यक्ति को याद करने का अवसर नहीं देता, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा भी देता है। वाजपेयी जी हमें सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी आशा, आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। उनका जीवन राष्ट्र सेवा, लोकतांत्रिक मूल्यों, सहिष्णुता और दृढ़ संकल्प का उदाहरण है। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय इतिहास में सदैव एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में याद किए जाएंगे। उनके विचार और कविताएं आने वाली पीढ़ियों को देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा देती रहेंगी। दोस्तों, उनके स्मृति दिवस पर हमें उनके आदर्शों को याद करते हुए एक मजबूत, शांतिपूर्ण और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेना चाहिए। अब समय हुआ है क्रम वार्ता में आपको विषय भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर वार्ता सुनवाने का। वार्ताकार हैं डॉक्टर बलवीर सिंह गुर्जर।
1: राष्ट्राकाश में सूर्य के समान प्रकाशमान योग पुरुष भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 25 दिसंबर 1924 को शिक्षक एवं कवि पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी तथा माता श्रीमती कृष्णा वाजपेयी के यहाँ हुआ। आगरा जिले का बटेश्वर इनका पैतृक गांव है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर के गोरखी स्कूल तथा स्नातक शिक्षा तत्कालीन विक्टोरिया कॉलेज, वर्तमान में महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय ग्वालियर में हुई। विधि स्नातक की डिग्री उन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज से प्राप्त की। देश में सुशासन के पक्षधर, विकास पुरुष और स्वच्छ छवि के अजात शत्रु कहे जाने वाले कवि, पत्रकार एवं राजनेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक व्यक्ति का नाम नहीं अपितु राष्ट्रीय विचारधारा का नाम है। वे राष्ट्रीय हित, जनहित तथा राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रबल पक्षधर थे। अटल जी राजनेताओं के मध्य नैतिकता के प्रतीक रहे हैं। अटल जी ने पत्रकार रूप में कार्य करते हुए लंबे समय तक राष्ट्रधर्म, पांचजन्य तथा वीर अर्जुन जैसे राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत समाचार पत्रों का संपादन किया। सन 1942 के लखनऊ शिविर में ही अटल जी के कवि रूप का परिचय मिल गया। इस शिविर में उन्होंने ओजस्वी शैली में स्वरचित कविता हिंदू तन मन हिंदू जीवन काव्य पाठकर राष्ट्रीय हिंदुत्व का उद्घोष कर दिया। उनके राष्ट्रभाषा प्रेम का इसी बात से पता चलता है कि उन्होंने सन 1977 में मोरारजी देसाई जी के सरकार में विदेश मंत्री रहते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम बार हिंदी में अभिभाषण दिया। इस भाव को उन्होंने कविता में इस प्रकार स्वर दिया है। गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी का जयकार। हिंदी का जयकार हिंद हिंदी में बोला, देख स्वभाषा प्रेम विश्व अचरज से डोला। इसके अलावा उनके गीत नया गाता हूँ, बाधाएं आती हैं आएं, एक वर्ष बीत गया, क्षमा याचना, कदम मिलाकर चलना होगा, आओ फिर से दिया जलाएं, तथा हरी हरी धूप पर आदि इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। अटल जी कवि के अलावा प्रखर चिंतक एवं राष्ट्रभक्त राजनेता भी हैं। उनके राष्ट्रवादी विचार, उनके द्वारा प्रणीत कृतियों, भारत की विदेश नीति, राजनीति की रपटी लीला हैं, राष्ट्रीय एकीकरण, क्या खोया क्या पाया, मेरी 51 कविताएं, न दैन्यम न पलायनम, डिसिसिव डेज, शक्ति से शांति आदि में मिलते हैं। अटल जी का सुस्पष्ट जीवन दर्शन था। उन्होंने जीवन को सदमार्ग पर ले जाने के लिए सूक्ति रूप में कुछ श्रेष्ठ कथन किए हैं। मनुष्य को चाहिए परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े, अपना देश एक मंदिर है, हम पुजारी हैं, राष्ट्र देव की पूजा में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। हमारे पड़ोसी कहते हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती, हमने कहा चुटकी तो बज सकती है। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, न मैदान जीतने से मन जीते जाते हैं। आदमी की पहचान उसके पद से या धन से नहीं, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर तो कुबेर की संपदा भी रोती है। उनका सक्रिय राजनीति में पदार्पण सन 1955 में हुआ। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से प्रेरित होकर अटल जी राजनीति में सम्मिलित हुए तथा उन्होंने सन 1957 में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में वे विजयी हुए तथा प्रथम बार संसद सदस्य बने। वे मोरारजी देसाई सरकार में सन 1977 से 1979 तक 2 वर्ष विदेश मंत्री रहे। इस दौरान भारत के प्रति विदेशों में एक विश्वास पात्र देश की पृष्ठभूमि तैयार करने में उनका विशेष योगदान रहा। 1996 के लोकसभा चुनावों के पश्चात उन्होंने देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। यह सरकार केवल 13 दिन चली। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने के पूर्व उन्होंने संसद में अभिभाषण देते हुए भगवान श्री राम का उद्धरण देकर कहा, न भीतो मरणा तस्मी केवलम दूषितो यशः, अर्थात मैं मृत्यु से नहीं डरता, यदि डरता हूँ तो बदनामी से, लोकोपवाद से डरता हूँ। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया सिद्धांतहीन गठबंधन करके यदि सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। वे 19 मार्च 1998 को दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तथा 10 अक्टूबर 1999 में प्रधानमंत्री पद के लिए पुनः शपथ ली। अटल जी के दृढ़ इच्छा शक्ति और अदम्य साहस का पता इसी से चलता है कि उन्होंने अमेरिकी प्रतिबंधों की धमकियों की परवाह किए बिना महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में 11 व 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में भूमिगत परमाणु परीक्षण कराए, जिन्हें देखकर संपूर्ण विश्व स्तब्ध रह गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने अभिभाषण देते हुए कहा कि हम ऐसे राष्ट्र निर्माण की कल्पना लेकर चलते हैं जिसमें धर्म, जाति, वर्ग, रंग, भाषा एवं प्रांत के आधार पर अंतर नहीं किया जाएगा। अटल जी की आस्था भारत और भारतीयता के प्रति गहरी रही है। अटल जी ने पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध का संकल्प भी लिया, इसीलिए उन्होंने लाहौर बस यात्रा के शुभारंभ के साथ पाकिस्तान से सार्थक वार्ता करने का पुरजोर प्रयत्न किया। बदले में पाकिस्तान ने सन 1999 में हम पर कारगिल युद्ध थोप दिया। इस युद्ध में श्री वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बुरी तरह परास्त कर दिया। अटल जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए देश के विकास के लिए अनेक कार्य किए। भारत में संरचनात्मक विकास का आरंभ इन्हीं की सरकार के द्वारा किया गया। इसका श्रेष्ठ उदाहरण स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। इसके अंतर्गत भारत के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने का कार्य किया और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे चार बड़े महानगरों को परस्पर सड़क मार्ग से जोड़ दिया। विकास की यह यात्रा आज तक अनवरत जारी है। इनके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों एवं हवाई अड्डों का विकास, नवीन टेक्नोलॉजी, विद्युतीकरण, दूर संचार विकास को गति देना तथा ग्रामीण रोजगार सृजन, विदेशों में बसे भारतीयों के लिए बीमा योजना, अर्बन सीलिंग एक्ट समाप्त कर आवास निर्माण को प्रोत्साहन देना, कोंकण रेलवे परियोजना का आरंभ आदि भी विकास पुरुष अटल जी के राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। योग पुरुष श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साहित्य, राजनीति एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों एवं उपाधियों से विभूषित किया गया। भारत सरकार ने 1992 में पद्म विभूषण, 1994 में लोकमान्य तिलक सम्मान तथा 1994 में ही गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किया। भारतीय संसद ने 1994 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार तो बांग्लादेश सरकार ने सन 2015 में सबसे प्रतिष्ठित बांग्लादेश लिबरेशन सम्मान से सम्मानित किया। 1993 में उन्हें कानपुर विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लेटर की उपाधि प्रदत्त की। देश के लिए उनके समग्र योगदान के कारण सन 2015 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। इस सम्मान की घोषणा भारत सरकार ने उनके जन्मदिन से एक दिन पहले 24 दिसंबर 2014 को की। देश के सबसे लोकप्रिय राजनेता तथा राजनीतिक आकाश के प्रकाश पुंज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के आयुर्विज्ञान संस्थान में अंतिम सांस ली और कृतज्ञ राष्ट्र ने अपने इस वीर सपूत को भावभीनी विदाई दी।
0: दोस्तों अभी सुन रहे थे आप वार्ता विषय भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर। वार्ताकार थे डॉक्टर बलवीर सिंह गुर्जर। दोस्तों अब समय हुआ है कम आज की बात में हमारे अगले विषय विश्व फोटोग्राफी दिवस पर चर्चा करने का। साथियों फोटोग्राफी आधुनिक युग की एक ऐसी कला और तकनीक है जिसके माध्यम से हम किसी क्षण, व्यक्ति, स्थान या घटना को तस्वीर के रूप में हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन फोटोग्राफी की कला, उसके इतिहास और समाज में उसके महत्व को समझने और फोटोग्राफरों के योगदान को सम्मान देने का अवसर प्रदान करता है। दोस्तों फोटोग्राफी का इतिहास बहुत पुराना है। कैमरे और फोटोग्राफी की तकनीक के विकास ने मनुष्य के लिए यादों को सुरक्षित रखना आसान बना दिया। दोस्तों 19 अगस्त सन 1839 को फ्रांस की सरकार ने डेगेरोटाइप नामक फोटोग्राफिक प्रक्रिया को सार्वजनिक रूप से घोषित किया था। इसी ऐतिहासिक घटना की स्मृति में 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। समय के साथ फोटोग्राफी की तकनीक लगातार विकसित होती गई और आज कैमरा हमारे मोबाइल फोन तक पहुंच चुका है। दोस्तों फोटोग्राफी केवल तस्वीर खींचने का माध्यम नहीं है बल्कि यह भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने की एक प्रभावशाली कला भी है। एक अच्छी तस्वीर बिना शब्दों के बहुत कुछ कह सकती है। किसी व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान, प्रकृति का सुंदर दृश्य, किसी ऐतिहासिक घटना का क्षण या समाज की कोई महत्वपूर्ण समस्या, इन सभी को तस्वीर के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। साथियों, समाचार और पत्रकारिता के क्षेत्र में फोटोग्राफी का विशेष महत्व है। किसी महत्वपूर्ण घटना की तस्वीर लोगों तक वास्तविक स्थिति पहुंचाने में सहायता करती है। साथियों, फोटोग्राफी का हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत महत्व है। जन्मदिन, विवाह, त्योहार, विद्यालय के कार्यक्रम, यात्राएं या पारिवारिक समारोह की तस्वीरें हमारी यादों को संजो कर रखती हैं। वर्षों बाद जब हम इन तस्वीरों को देखते हैं तो पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाती हैं। इस प्रकार फोटोग्राफी हमारे बीते हुए समय को वर्तमान से जोड़ने का काम करती है। साथियों, आज डिजिटल फोटोग्राफी ने इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। पहले तस्वीर लेने के लिए महंगे कैमरे और फिल्म की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब स्मार्टफोन से भी उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें आसानी से खींची जा सकती हैं। दोस्तों, फोटोग्राफी रोजगार और व्यवसाय का भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुकी है। आज फैशन फोटोग्राफी, वन्यजीव फोटोग्राफी, विवाह फोटोग्राफी, समाचार फोटोग्राफी, विज्ञापन फोटोग्राफी जैसे अनेक क्षेत्र हैं जो रोजगार प्रदान कर रहे हैं। एक कुशल फोटोग्राफर अपनी रचनात्मकता और तकनीक ज्ञान के माध्यम से अच्छा कैरियर बना सकता है। हालांकि फोटोग्राफी करते समय जिम्मेदारी और नैतिकता का भी ध्यान रखना आवश्यक है। किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी निजी तस्वीर लेना या उसका गलत उपयोग करना उचित नहीं है। तस्वीरों को गलत तरीके से बदलकर या भ्रामक जानकारी के साथ प्रस्तुत करना भी समाज को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए फोटोग्राफी के साथ जिम्मेदारी का भाव भी होना जरूरी है। दोस्तों, विश्व फोटोग्राफी दिवस हमें यह याद दिलाता है कि तस्वीरें केवल कागज या स्क्रीन पर दिखाई देने वाली छवियां नहीं हैं, बल्कि वे हमारी यादों, इतिहास, भावनाओं की अनमोल धरोहर हैं। दोस्तों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं ये प्यारा

साथियों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवनालोक में हमारे आज के विषय खुलकर हंसें और स्वस्थ रहें पर चर्चा करने का। दोस्तों स्वास्थ्य मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो वह अपने जीवन का आनंद ले सकता है और अपने कार्यों को उत्साह पूर्वक पूरा कर सकता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग तनाव, चिंता और अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरे रहते हैं। ऐसे समय में हंसी हमारे जीवन में खुशी और सकारात्मकता भरने का सरल माध्यम है। इसलिए कहा जाता है खुलकर हंसें और स्वस्थ रहें। दोस्तों हंसी मनुष्य के जीवन का स्वाभाविक और सुंदर हिस्सा है। जब हम हंसते हैं तो हमारे मन का तनाव कम होता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हंसी हमारे चेहरे पर प्रसन्नता लाती है तथा हमारे आसपास के वातावरण को भी खुशनुमा बनाती है। एक मुस्कान कई बार बिना शब्दों के ही दूसरे व्यक्ति के मन को भी प्रसन्न कर देती है। साथियों आज के समय में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर व्यक्ति किसी न किसी तनाव का सामना कर रहा है। विद्यार्थी पढ़ाई और प्रतियोगिता के दबाव में रहते हैं। नौकरी करने वाले लोग काम और समय की चिंता में रहते हैं और बुजुर्ग अकेलेपन या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझते हैं। ऐसी स्थिति में हंसी तनाव को कम करने में मदद करती है। परिवार के साथ समय बिताना, मित्रों से बातचीत करना, मनोरंजन गतिविधियों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना और हास्यपूर्ण बातें करना मन को प्रसन्न रखता है। दोस्तों हंसने के साथ साथ स्वस्थ रहने के लिए अच्छी जीवन शैली भी आवश्यक है। हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए, जंक फूड का सेवन कम करना चाहिए, प्रतिदिन कुछ समय व्यायाम योग प्राणायाम के लिए भी निकालना चाहिए। सुबह की सैर शरीर और मन दोनों के लिए लाभदायक होती है। साथियों हंसी सामाजिक संबंधों को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब परिवार के सदस्य साथ बैठकर हंसते बोलते हैं तो उनके बीच प्रेम और अपनापन बढ़ता है। मित्रों के साथ हंसी मजाक करने से दोस्ती मजबूत होती है। हंसमुख व्यक्ति आमतौर पर अपने आसपास के लोगों में भी सकारात्मकता पैदा करता है। हालांकि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी हंसी किसी दूसरे व्यक्ति का मजाक उड़ाकर या उसे दुख पहुंचाकर नहीं होनी चाहिए। सच्ची हंसी वही है जो स्वयं को और दूसरों को खुशी दे। दोस्तों हमें अपने दैनिक जीवन में कुछ समय प्रसन्न रहने के लिए अवश्य निकालना चाहिए। सुबह परिवार के साथ हंसना, बच्चों के साथ खेलना, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, प्रकृति के बीच समय बिताना और अपने मन पसंदीदा कार्य करने से मन को प्रसन्नता महसूस होती है। दोस्तों हंसी जीवन को सुंदर, सरल और आनंदमय बनाने का एक प्रभावी माध्यम है। दोस्तों हमें छोटी छोटी खुशियों को पहचानना चाहिए और जीवन को बोझ न बनाकर आनंद के साथ जीना चाहिए। इसलिए खुलकर हंसें और स्वस्थ रहें केवल एक वाक्य नहीं बल्कि सुखी और स्वस्थ जीवन जीने का संदेश है। दोस्तों घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने को। दीजिए आपके दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

0: अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना मन पसंद कार्यक्रम युवाणी। योगदान था आकाशवाणी शिवपुरी का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: महात्मा गांधी ने कहा, हिंदी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है और उसे दृढ़ करती है। देश का कोई भी सच्चा प्रेमी हिंदी का तिरस्कार नहीं कर सकता। दुनिया से कह दो, गांधी अंग्रेजी नहीं जानता।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आज तो पार्टी चाहिए।
3: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
2: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, कल ही हमने आजादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस मनाया। आजादी के पर्व की महक अभी भी हमारे चारों ओर महक रही है, तो क्यों ना हम भी आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करें एक देशभक्ति गीत के साथ।

कार्यक्रम में अगला गीत हम लेकर आए हैं फिल्म सुर से। ये गीत लिखा है निदा फाजली ने, संगीत है MM क्रीम का और स्वर है महालक्ष्मी अय्यर के।

कार्यक्रम का अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म बॉम्बे से, सुमधुर आवाज चित्रा की। ये शब्द रचना है महबूब की और संगीत निर्देशन है AR रहमान का।

फिल्म संगीत कार्यक्रम की अंतिम पेशकश, फिल्म वो लम्हे से, स्वर है ग्लेन जोन के, ये शब्द रचना है सईद कादरी की और संगीत है प्रीतम का।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर अपनी पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी आज भोपाल में श्री अटल जी की प्रतिमा पर अपनी पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज चित्तौड़गढ़ में श्री वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि श्री वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु तक कहा जाता था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में युवा सांसद कार्यक्रम में युवाओं से संवाद किया। मानसरोवर डेंटल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं के विचार जाने और उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। प्रदेश सरकार के अनुसार प्रदेश में किसानों के लिए उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। कल से किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं रबी सीजन के लिए 20 अगस्त से हर किसान हर घर हर खेत खाद अभियान शुरू किया जाएगा। और उज्जैन में नागपंचमी पर वर्ष में केवल एक बार खुलने वाले नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट आज रात 12 बजे खुलेंगे। इसके बाद लगातार 24 घंटे तक श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इस बार नागपंचमी और सावन के तीसरे सोमवार का संयोग होने से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है, लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत।

बेहद खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से। इस गीत को गाया था लता मंगेशकर ने।

ये अब सुनते हैं हम कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म अभिनेत्री से। सुमधुर आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की। मजरू के लिखे गीत को संगीतमय बनाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस बेहद खूबसूरत गीत के बाद अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक और ऐसा गीत जिसे आप बारिश के मौसम में बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। फिल्म है लम्हे। सुमधुर आवाज है लता मंगेशकर, इला रुन और साथियों की। ये गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है शिवहरी का।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए श्रोताओं, सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार यानी आज दिनांक 8/2026 यानी आज अभी कुछ देर बाद शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है वर्तमान फसलों में निदाई एवं खरपतवार प्रबंधन। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं वे दिनांक 16 अगस्त यानी आज अब से कुछ ही देर बाद शाम 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी भोपाल के फोन नंबर 2660902 या 2660903 फोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन, समय और फोन नंबर एक बार पुनः सुन लें। दिनांक 16 अगस्त यानी आज अब से थोड़ी ही देर बाद शाम 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य फोन नंबर है 2660902 या 2660903। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म ऐसा प्यार कहाँ का ये प्यारा सा गीत। स्वर थे मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की। गीत लिखा था आनंद बख्शी और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म आशा से। स्वर है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अगला गीत फिल्म मंजिल से, खूबसूरत आवाज लता मंगेशकर की। गीत लिखा है योगेश ने और इसकी धुन बनाई है आरडी वर्मन ने।

लीजिए, सुनिए। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में सुन फिल्म का गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीत लिखा है प्रवीण भारद्वाज ने और संगीत है आनंद मिलिंद का।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 16/8/2026 यानी आज अब से कुछ ही देर बाद शाम 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए विषय है वर्तमान फसलों में निदाई एवं खरपतवार प्रबंधन। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं वे दिनांक 16 अगस्त यानी अब से थोड़ी देर बाद शाम 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी भोपाल के फोन नंबर 6609002 या 2660903 पर फोन लगाकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फोन नंबर एक बार सुने। दिनांक 16 अगस्त यानी अब से थोड़ी देर बाद शाम 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य फोन नंबर 2660902 या 2660903 भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। लीजिए सुनिए फिल्म महबूबा का ये बहुत प्यारा संगीत जिसे गाया है किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी के लिखे गीत की बनाई है आर डी बर्मन ने।

अंदाज। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का बहुत ही दिलकश गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो ने। शब्द रचना है समीर की और संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का।

फिल्म संगीत कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति फिल्म यलगार से, स्वर है उदित नारायण और सपना मुखर्जी के। ये गीत गाया है, ये गीत लिखा है सुदर्शन फाकिर ने और संगीत है चन्नी सिंह।

0: ऐ मेरी हमरंग, मुझको थाम, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश न होती तो भी ना आती।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। अब समय है एक छोटे से अंतराल का।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल धन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: सेना।
1: अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने आज राजस्थान के अलवर में कहा कि केंद्र सरकार इन वर्गों पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
3: किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए हर साल एक योजना घोषित की। 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि इन्होंने किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो।
2: इस अवसर पर गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित की। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। कालीधर रेंज से होकर बनाई गई ये सुरंग लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेमा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेमा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थियों लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए डॉ. पेमा सानी और जिलाधिकारी साई कांत वर्मा की उपस्थिति में एक समझौता पर हस्ताक्षर भी किए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वे राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कंठन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। उपराष्ट्रपति ने 2014 के बाद से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के विस्तार और उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। यूक्रेन और रूस के दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। भारत के लिए देवदत्त पटेल 167 रन की शानदार पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं, अब हम आपको अवगत करा दें आज की सभा के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों से। अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 7:21 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम सभा। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनिएगा

7:30 बजे सजीव फोनिन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। इस कार्यक्रम में आज विषय है वर्तमान फसलों में निदाई एवं खरपतवार प्रबंधन। विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उदय आर बड़ेगांवकर। रात 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में और 8:15 पर कार्यक्रम डगर विकास की। रात 9:30 बजे नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय कार्यक्रम संगीत सभा में आज आप सुनिएगा श्रोथोन सरकार का गिटार वादन।

कल प्रातःकालीन सभा में सुबह 7:20 पर आप सुनेगा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल और 8:30 फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा, 9:15 पर लोक संगीत और 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम आईना पेश किया जाएगा। 10:00 जिले की चिट्ठी और 10:05 पर गीत सागर कार्यक्रम होगा। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला, इसमें आप सुनिएगा ध्यानेश खान का सरोद वादन, राग होगा देसी। दिन में 11:00 सजीव फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 12:00 आपकी फरमाइश कार्यक्रम। 12:30 कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी का 7वां भाग। 1:00 स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा, योगदान होगा आकाशवाणी भोपाल का। 1:30 पर लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की रहेगी। दोपहर 2:30 पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम। शाम 5:02 पर युवा साथी सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की। फिल्म संगीत शाम 5:33 पर, शाम 6:30 और रात 8:15 पर। शाम 6:00 एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा और 6:40 आजकल। 6:45 पर प्रादेशिक समाचार और 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद रात 8:00 कार्यक्रम सुर्खियों में, रात 9:30 कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

रात्रि 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में कल आप सुनेंगे ध्यानेश खान का सरोदवादन। राग होगा मांझ समाज। श्रोताओं, एक बार हम आपको पुनः बता दें, अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:21 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम सभा। इसी के अंतर्गत आप सुनेगा 7:30 बजे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। इस कार्यक्रम में आज विषय है वर्तमान फसलों में निदाई एवं खरपतवार प्रबंधन। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर उदय आर बड़ेगांवकर। रात 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में और 8:15 पर कार्यक्रम डगर विकास की। रात 9:30 बजे नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, इससे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: श्रोताओ, ये थे आज और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
4: बन गया बजट?
3: हाँ, 5,000 बच गए।
4: तो नई साड़ी ले ले?
3: ना, पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और?
3: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया, जाओ भाई।
5: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में 6400 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय और जबलपुर और सागर सहित 18 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन 9 विकेट के नुकसान पर 460 रन बनाए। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुविधा पर्यटकों को वन्य जीवों और प्रकृति का रोमांचक अनुभव देगी। इसके बाद उन्होंने दशहरा मैदान में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा के लिए भूमि पूजन किया और अटल पथ का लोकार्पण भी किया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में श्री वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल पर अपनी पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में श्री वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। यही कारण है कि उन्हें आजाद शत्रु कहा जाता था। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी आज भोपाल में श्री अटल जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं से संवाद किया। स्थानीय मानसरोवर डेंटल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं के विचार जाने और उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि युवा केवल नौकरी पाने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार इन वर्गों पर विशेष ध्यान दे रही है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण कार्यक्रम करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए हर साल एक योजना घोषित की। 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि इन्होंने किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो।
0: सेना प्रमुख जनरल धीरज सिंह ने नेपाल की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों को और मजबूत करना है। जनरल सेठ नेपाल में टुंडीखेल के सेना मंडप में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और नेपाली सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करेंगे। इसके बाद वे नेपाली सेना प्रमुख के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर बातचीत करेंगे और राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में भी शामिल होंगे।

0: उज्जैन में नागपंचमी पर वर्ष में केवल एक बार खुलने वाले नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट आज रात 12 बजे खुलेंगे। इसके बाद लगातार 24 घंटे तक श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इस बार नागपंचमी और सावन के तीसरे सोमवार का संयोग होने से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। मंदिर समिति और प्रशासन ने दर्शन, प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर के साथ भगवान महाकाल के दर्शन के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश में किसानों के लिए उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। राज्य सरकार के अनुसार स्टॉक मिलान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कल यानी 17 अगस्त से किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं रबी सीजन के लिए 20 अगस्त से हर किसान हर घर हर खेत खाद अभियान शुरू होगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज भोपाल में बोट क्लब स्थित वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में आयोजित राजा भोज मल्टी क्लास सेलिंग चैंपियनशिप 2026 के पुरस्कार वितरण और समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सेलिंग बोट शो का अवलोकन किया और विभिन्न खेल विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 460 रन बना लिए हैं। श्रीलंका के गोल में खेले जा रहे मुकाबले में भारत के देवदत्त पर्टिकल ने 167, KL राहुल ने 82 और ध्रुव जुरेल ने 51 रनों की पारी खेली। खेल समाप्ति के समय कुलदीप यादव 12 और प्रसिद्ध कृष्णा 1 रन बनाकर खेल रहे थे। बारिश के कारण दूसरे दिन पहले और दूसरे सत्र का खेल नहीं हो पाया था। गुजरात के अहमदाबाद स्थित वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जा रहे FIB अंडर 18 एशिया कप बास्केटबॉल प्रतियोगिता में आज चीन ने कतर को 118-86 से हरा दिया। मुकाबले में चीन की टीम ने शुरुआत से दबदबा बनाए रखा और पूरे मैच में अपना नियंत्रण कायम रखते हुए कतर पर 52 अंकों से शानदार जीत दर्ज की। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज प्रदेश के 18 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। इनमें जबलपुर, सागर, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, रीवा, सीधी और सिंगरौली जिले शामिल हैं। वहीं भोपाल, ग्वालियर और चंबल संभाग के कुछ जिलों में भी 16 से 18 अगस्त तक तेज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। खंडवा में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ने रेवा सेवा समागम नर्मदा संवाद कार्यशाला आयोजित की। इसमें नर्मदा और सहायक नदियों के संरक्षण, घाट संस्कृति, प्राकृतिक खेती और परिक्रमा मार्ग की सुविधाओं पर चर्चा हुई। पांडुर्ना में आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम पीपल पानी में अवैध शराब निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 600 किलोग्राम महुआ लान नष्ट किया। नर्मदापुरम जिले के तवानगर स्थित शासकीय आदर्श आवासीय विद्यालय ने स्वच्छ और हरित विद्यालय सर्वे में प्रदेश में 5वां स्थान हासिल किया है। प्रदेश के 200 से अधिक विद्यालयों में ये एकमात्र आदर्श आवासीय विद्यालय है जिसने ये उपलब्धि हासिल की है। अशोकनगर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र परिवारों को अगस्त और सितंबर माह की राशन सामग्री 31 अगस्त तक एक मुश्त वितरित की जाएगी। इसके लिए POS मशीन पर हितग्राहियों को 2 बार अंगूठा लगाना होगा। धार जिले में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत टीकाकरण अभियान आज से शुरू हो गया है। यह अभियान 15 सितम्बर तक चलेगा। पशुपालन विभाग द्वारा जिले के सभी पशुपालकों से निर्धारित अवधि में अनिवार्य रूप से टीका कराने की अपील की गई है। और छिंदवाड़ा के चौराई में एक तेज रफ्तार कार बिजली पोल तोड़ते हुए एक खेत में जा गिरी। हादसे में गोपालपुर निवासी 14 वर्षीय मंगल यादव की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल बताए गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। अभी इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और धान का खेती करता हूँ। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,767 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि में जो लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब बहने सुने अपना प्रिय कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनवे वारी हमारी सभी बहनन का विजयलता बहन की दोई हाथ जोड़ के नेवरी राम राम। और बहनों आप और उनके बाल गोपाल मौज में हुई हैं। और बहनों देखो आप सभी के घर परिवार नी के सोई चल रहे हुई हैं। काहे कि देखो बहनों अपन सभी की जो ही इच्छा रहते और ईश्वर से मंगल कामना भी करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सभी बहनें सुखी रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ और निरोग रहें। और सवन के बेटा बेटी खूब ही अच्छे अच्छे जो है अच्छे अच्छे नीके रहें और सवई के घर सुखी समृद्धि से भरपूर रहें। सवई के घर जो घरन में खूब ही धन धान्य से भरपूर रहें। हम ही तो बहनों हमेशा जो ही इच्छा रहते अपने घर की बेटी हैं ऊ की देखो हर माता पिता को देखो अपना हम सभी जानते हैं कि चिंता तो बाकी बारे में जन्म से लेकर और बाकी शादी विवाह तक की जो है आज भी अपन और बहनों देखते हैं कि कई घर परिवार बेटियों की पढ़ाई लिखाई बाकी जो है खर्चा पानी जैसे शादी विवाह बहन की और कहते हैं कि देखो जाको दूसरे के घर जाने हैं और बड़ी हो गई है सगाई पताई भी करने हैं समाज के ताने भी सुनने पड़ते हैं कि नहीं। अरे बहन जैसे अभी तक बेटी की जो है शादी नहीं करी अब तो देखो बहुत उम्र सोऊ हो गई है कब करोगी। पर बहनों अब तो समय भी बदल गया हुआ है बदल तो जा रहा है कि नहीं। और सभी लोग समझदार और जागरूक भी हो रहे हैं और भारत सरकार द्वारा भी बेटियों के लिए सभी तरह की जो है योजनाओं के माध्यम से भरपूर मदद और सहयोग राशि प्रदान कर रही है और कई तरह की जैसे योजनाएं भी चलाई जा रही हैं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या समृद्धि योजना और लाडली लक्ष्मी योजना जो कि बहनों अपन देख ही रहे हैं कि और लाभ भी ले रही हैं। वैसे तो सभी योजनाओं को जो है हमें फ़ायदा और लाभ मिल ही रहा है। और बहनों लाडली लक्ष्मी योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो कि पूरे देश में पूरे भारतवर्ष में चलाई जा रही है। और लाडली लक्ष्मी योजना के तहत माता पिता को बेटियों की पढ़ाई लिखाई की और शादी ब्याह की तनको चिंता नहीं करने हैं। शासन द्वारा बेटियों के लिए सभी सुख सुविधाएं जो है करी जा रही हैं। बेटी देखो अब घर की शान है। जन्म के समय जैसे कई 2500 रुपये और स्कूल में जैसे बाकी पढ़ाई लिखाई के लिए एडमिशन होवे पर जो है 4000 रुपया और छठवीं कक्षा में आने के बाद 5000 रुपया, दसवीं क्लास में आने पर जो है 11000 और बारहवीं क्लास में आने पर 25000 जो है, जब स्थानक जैसे 21 साल की उम्र पर 1,00,000 तक जो है और जाके आवश्यक देखो बहनों दस्तावेज भी

जो है पासबुक हो, पासपोर्ट साइज फोटो आदि होना जो है इस योजना का और आरंभ शुभारंभ हुआ था 2007 में। और बेटियों के भविष्य को जो है सुरक्षित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है। और बहनों देखो, इस योजना के द्वारा बेटियों की जो है शिक्षा और आर्थिक स्थिति में भी सुधार, समय की ज़रूरत को जो है समझते हुए बहनों लाडली लक्ष्मी योजना जो है 2.0 से जो है अप्लाई करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता की पहचान पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र जो अभी जैसा, और समग्र आईडी फोटो विद पेरेंट्स परिवार नियोजन प्रमाण पत्र आदि जैसे आवश्यक दस्तावेज जो है जेपीजी और जेपीईजी और पेन पीएनजी और जीआईएफ होना, जे बहनों ये चीज़ें सवन के लाने आवश्यक हैं। तो बहनों देखो, जो तो थी अपनी लाडली लक्ष्मी योजना की चर्चा। और बहनों देखो, आज ऐसे वीर साहसी महान एक नेता, प्रहर वक्ता और दूरदर्शी राजनीतिक के माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है, जो कि भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। उनको जन्म 25 दिसंबर 1924 को जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश में भाव हतो। बहनों भी एक महान राजनेता, कवि और ओजस्वी वक्ता भी थे। बहनों उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने में अहम भूमिका निभाई। और बहनों उन्हें 2015 में भारत रत्न से जो है सम्मानित करो गयो हतो। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी, माता कृष्णा देवी जो है नागरिकता भारतीय, जाति ब्राह्मण, धर्म हिंदू, जो बहनों वे भारतीय राजनीतिक का युग पुरुष भी थे। भारतीय जनसंघ की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री जो है वाजपेयी जी ने अपने में जैसे पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का भी जो है बहुत ही भूमिका निभाई। उनका कार्यकाल 1958 से 2004 तक रहा। और बहनों उन्होंने पोखरण परमाणु परीक्षण, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ऐतिहासिक कार्य किए थे। वाजपेयी जी राजनेता होवे के साथ साथ बहनों संवेदनशील कवि भी थे। उनकी कविताएं कदम मिलाकर चलना होगा आज भी प्रेरणा देती हैं। तो बहनों 16 अगस्त 2018 को एम्स नई दिल्ली में, यानी कि आज के ही दिना 16 अगस्त को जो है, और उनका जो है 2018 को निधन हो गया था। तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है एक बहुत ही साहसी नेता थे। कार्यक्रम घर आंगन से हम आप और उनकी तरफ से जो भी ई कार्यक्रम को सुन रही हैं देश विदेश से, उन सभी भैया बहनों की तरफ से प्रधानमंत्री अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तो बहनों ज्योति थी चर्चा अपनी प्रधानमंत्री अटल जी की पुण्यतिथि पर। और वे बहुत ही देखो बहनों, उनके जितना भी कहा जाए वह कम है। उनका राजनीतिक जीवन 1991 में भारतीय जनसंघ में शामिल हुए थे, 1962 में लोकसभा सदस्य बने और 1996 में पहली बार राज्यसभा सदस्य बने। और बहनों 1967 में लोकसभा सदस्य बने, 1977 में जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री बने और 1996 में प्रधानमंत्री, 1998 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और 2004 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ऐसे महापुरुष को बार बार नमन करती हैं, वंदन करती हैं। उनकी कई प्रकार की कविताएं हैं बहनों, क्या हार में क्या जीत में, कि चित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, ऐसे वीर साहसी देशभक्ति प्रधानमंत्री जी को एक बार हृदय से नमन करते हैं। और जो है बहनों, और कार्यक्रम को आगाऊ बढ़ावे से पहले देखो

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: हाँ बहनों, तो देखो संदेश और गीत के बाद हम फिर से हाजिर हैं अपने घर आंगन कार्यक्रम में। अपनी सभी बहनों को करते हैं स्वागत। और बहनों देखो, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हमारे किसान भाई बहनें जो है खेती के साथ साथ सभी प्रकार की जो है साग भाजी भी उगाते हैं, और जासों उनको जो है आय को साधन प्राप्त होवे और चार पैसा की आमदनी होवे। जैसे कि भिंडी है, लौकी है, तुरैया है, बैगन है, मिर्ची है, और कद्दू, टिंडे, और भी जैसे मशरूम आदि, जिनके जिनसे कहा है कि किसान भाइयों को लाभ भी मिलता है। तो आज अधिक जानकारी के लिए ऐसी ही भेंट वार्ता सुनवा रहे हैं, मशरूम उगाएं लाभ कमाएं, जानकारी दे रही हैं डॉक्टर रीता मिश्रा, और उनसे चर्चा कर रही हैं बहन तुलका शर्मा। तो आओ बहनें सुनते हैं भेंट वार्ता।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग, और हर

0: ने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
1: mmsky.mp.gov.in पर जाएं, सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
2: बाजार में आपने देखा होगा मशरूम को, एक सफेद गोल सब्जी होती है ये। मशरूम को कैश क्रॉप कहा जाता है। ये एक कैश क्रॉप की तरह उगाया जाता है, जो बहुत जल्दी उत्पादन भी जिसका होता है और हमें बहुत ज़्यादा आय भी देता है। तो आज इसी के विषय में हम अपने इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। इस भेंटवार्ता का विषय है मशरूम उगाएं, लाभ कमाएं। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं वैज्ञानिक डॉक्टर रीता मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है रीता जी।
3: धन्यवाद।
2: मशरूम उगाएं, लाभ कमाएं, इस विषय पर हम चर्चा करने से पहले ये जानना चाहेंगे कि मशरूम है क्या चीज़, कितनी तरह का ये होता है और क्या ये खाए जा सकने वाला होता है, हर तरह का मशरूम?
3: मशरूम एक प्रकार का कवक होता है। बरसात में आपने देखा होगा कि यह खाद के ढेरों में और खेतों में और जंगलों में पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से उगने वाले मशरूम कुछ तो खाने योग्य एवं पौष्टिक होते हैं तथा कुछ जहरीले भी होते हैं, परंतु उगाए जाने वाले सभी मशरूम खाने योग्य, पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होते हैं। वैसे तो मशरूम तीन तरीके के होते हैं, बटन मशरूम, धान का पुआल मशरूम और ढींगरी मशरूम। ढींगरी मशरूम को हम ऑयस्टर मशरूम के नाम से भी जानते हैं, परंतु अपने चंबल संभाग में घरेलू स्तर पर हम ऑयस्टर मशरूम यानी ढींगरी मशरूम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ये जो मशरूम है ये कमरों के अंदर कृत्रिम और वैज्ञानिक ढंग से सफलतापूर्वक हम कर सकते हैं। मशरूम की खेती छोटे भूमिहीन किसानों व बेरोजगार युवकों या युवतियों के लिए आय का एक अच्छा साधन है। और इस चंबल संभाग में ये जो मशरूम है, वैसे तो सितंबर महीने से मार्च के महीने तक पहले लोग करते थे, लेकिन अब ये मशरूम का उत्पादन पूरे वर्ष भर लिया जा सकता है। बस इसके लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है और पूरे वर्ष भर आप मशरूम का आनंद ले सकते हैं।
2: ये बात आपने बहुत अच्छी बताई कि घरेलू स्तर पर भी इसका उत्पादन हो सकता है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर के कामकाज को देखते हुए, घर की अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए बाहर नहीं निकल सकती हैं, जॉब नहीं कर सकती हैं, तो वो घर में ही इसका उत्पादन कर सकती हैं। ग्रामीण बहनें हैं या कृषक हैं हमारे, वो इसको लार्ज स्केल पर बहुत बड़े स्तर पर उगा करके और ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि कैश क्रॉप आपने बताया कि ये है। तो मुझे ये बताइए कि किस तरह से ये लाभ देता है, कैसे उगाया जाता है?
3: जैसा कि कृषि फसलों के जो अवशेष होते हैं, जैसे गेहूं का भूसा है, धान का पुआल है, और अपने यहाँ बाजरे की करब जो है, जिसको बाजरे की जो है कड़वी बोलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मिलती है। इसके साथ साथ जो मक्के की कड़वी है, इसका प्रयोग भी हम मशरूम उत्पादन में एक माध्यम के रूप में कर सकते हैं।
2: मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती?
3: जी नहीं, इसके लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं है, इस मशरूम के लिए खासकर नहीं है। और इसके बाद जो मशरूम उत्पादन के बाद जो अवशेष बचता है, उसका प्रयोग भी हम कृषि और बागवानी में खाद की तरह कर सकते हैं। यानी कि कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी कि जो मशरूम है उससे हम उत्पादन भी ले लेते हैं और इसके बाद जो बचा हुआ अवशेष है उससे उसको भी हम खाद की तरह प्रयोग कर लेते हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें खेत की आवश्यकता नहीं है और ये छोटी सी जगह में, घर में या झोपड़ी में भी बहुत आसानी से किया जा सकता है और इसमें समय बहुत कम लगता है। 45 दिन की फसल होती है ये और इसमें उत्पादन लागत बहुत कम होती है और लाभ हमें ज्यादा मिलता है। इसके साथ साथ यह एक उपयोगी खाद्य पदार्थ भी है, बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है ये, तो इसको एक जो है हम संतुलित आहार की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। और
2: इस पर हम चर्चा बाद में करते हैं। रीता जी, हम ये जानना चाहेंगे कि यदि किसी को कुछ भी नहीं पता, थोड़ी सी जगह है उसके पास, बागवानी का शौक है, या जगह बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे आपने बताया कि झोपड़ी में भी किया जा सकता है, तो यदि इतनी सी जगह किसी के पास है और रुचि है कि वो मशरूम उगाए, तो उसको क्या करना चाहिए?
3: इसमें जो है सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जैसे अभी हमने बात की थी कि जो कृषि फसलों के अवशेष हैं, जैसे गेहूं का भूसा है या धान का पुआल है, हम इसको प्रयोग कर सकते हैं माध्यम के रूप में। लेकिन जिस प्रकार से जो है जानवरों को कुटी करके भूसा खिलाया जाता है, उसी तरह हमें इस भूसे को प्रयोग करने से पहले 4 से 6 सेंटीमीटर टुकड़ों में करीब काट लेना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भूसा है वो साफ सुथरा हो, सुनहरे पीले रंग का हो और उसमें बरसात का पानी ना लगा हो। अगर बरसात का पानी भूसे में लग गया तो कहीं ना कहीं वो हमें जो है आगे जो है प्रोडक्शन उत्पादन कम देगा और उसमें बीमारी भी आने के डर रहता है। इसलिए हम ऐसा भूसे का चुनाव करते हैं जो साफ सुथरा और सूखा हो। इसके बाद जैसे हम लोग जो है कोई भी फसल हम लेते हैं तो हम सबसे यही कहते हैं कि जो है बीज को पहले आप उपचारित कर लें। इसी तरह जो भी भूसा हम प्रयोग कर रहे हैं उस भूसे को भी जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए उपचारित करना बहुत आवश्यक होता है। और उपचारित करने के लिए दो विधि जो काम में लाई जाती हैं, एक है गर्म पानी उपचार विधि और दूसरी है रासायनिक विधि। गर्म पानी उपचार विधि को बहुत छोटे स्तर पे हम प्रयोग करते हैं और इसमें भूसा या धान के पुआल को टाट के छोटे बोरे में भरकर इसे साफ पानी में अच्छी प्रकार से कम 6 घंटे तक डुबोकर रखते हैं ताकि भूसा या पुआल अच्छी तरह से पानी सोख ले। इसके बाद इस गीले भूसे से भरे बोरे को उबलते हुए गर्म पानी में 40 मिनट तक डुबोकर रखते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भूसा डुबोने के बाद पानी 40 मिनट तक उबलता रहना चाहिए, तभी माध्यम का उपचार हमारा सफल हो पाएगा।
2: बिल्कुल।
3: इसके बाद भूसे को गर्म पानी से निकालकर साफ फर्श पर फैला दें ताकि जो अतिरिक्त पानी है वो निकल जाए और भूसा ठंडा हो जाए। और भूसा डालने से पहले आप फर्श को अच्छे से धो लें और उसमें 2% फॉर्मलिन का जो घोल है उसका छिड़काव अवश्य करें। अब जो हमारा पानी जो हमने फर्श पर फैला रखा है उसको हमें ये चेक करना है, ये परीक्षण करना है कि वो हमारा भूसा अब बीज मिलाने के लिए तैयार है या नहीं। तो इसके लिए बहुत अच्छा एक टेस्ट है कि आप जो है भूसे को अपनी हाथ में मुट्ठी में दबाएं और दबाने के बाद जो है देखें कि उसमें से पानी निकल तो नहीं रहा है। और अगर पानी नहीं निकल रहा और आपके हाथ पर जो है थोड़ा सा हल्का सा नमी जैसी महसूस हो रही है तो इसका मतलब है कि भूसा हमारा बीज मिलाने के लिए तैयार है। अब जो दूसरी विधि है रासायनिक उपचार विधि है वो हम जो है अगर हमें बड़े स्तर पर करना है तो हम इस विधि को जो है साथ में लेके चलते हैं। इसमें 2 रासायनिक पदार्थ जो है हमें महत्वपूर्ण चाहिए होते हैं, एक है फॉर्मलिन और बेवेस्टीन। इसके लिए हम क्या करते हैं कि किसी सीमेंट के हौद या ड्रम में 90 लीटर पानी डाल देते हैं और उसमें 10 से 12 किलोग्राम जो हमारा उपचारित भूसा है उसको हम डालेंगे। इसके बाद एक बाल्टी में 10 लीटर पानी लें और उसमें 7 से 8 ग्राम बेवेस्टीन और 125 मिलीलीटर फॉर्मलिन मिलाएं। इस घोल में भिगोए हुए भूसे को, जो हमने ये घोल तैयार किया है, इसको भूसे पर आप उड़ेल दें और उसके बाद जो ड्रम है उसको पॉलीथीन से ढककर उस पर वजन रख दें जिससे कि उसमें बाहर से धूल मिट्टी ना जाए और चूहे वगैरह इसमें प्रवेश ना कर सके। इसके बाद ड्रम में लगभग इसको, ये जो हमने भूसा डाला है, इसको 18 से 20 घंटे तक भिगो दें और उसके बाद भूसे को निकाल कर साफ फर्श पर फैला दें जैसे कि हमने पहले किया था, जिससे कि भूसे में से अतिरिक्त पानी निकल जाए। अब ये भूसा हमारा बीज मिलाने के लिए तैयार है।
2: भूसे में नमी भी उतनी ही होनी चाहिए जितना कि पहले हमने सामान्य विधि में किया था।
3: जी। अब बीज मिलाने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा जो बीज है, इस बीज को हम मशरूम के बीज को स्पॉन कहते हैं और ये जो बीज है ये हमेशा ताजा ही प्रयोग करना चाहिए और किसी अच्छी संस्था से ही लेना चाहिए और इसमें हरी या काली फफूंद नहीं होनी चाहिए और ये गला और बदबूदार भी ना हो। अगर ये गला हुआ है, ये बदबूदार है तो इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें।
2: ये प्राप्त कहाँ से हो सकता है?
3: ये अपनी जो है जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छी संस्थाएं हैं जो ऑर्डर पे इस बीज को प्रदान करती हैं। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं, आप उनकी मदद से आप मशरूम के बीज का ऑर्डर दे सकते हैं।
2: ग्वालियर में ये कृषि विश्वविद्यालय में प्राप्त हो सकता है?
3: हाँ जी, हाँ
2: जी।
3: और इसके साथ साथ ये आगरा में भी प्राप्त हो जाता है,
2: मुरैना के कृषि विज्ञान केंद्र में भी उपलब्ध है।
3: हाँ जी, हाँ। बीच में एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो बीज है उसको हमें ठंडे जगह पे रखना है और अगर अभी आज प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उसको फ्रिज में रख दें और जब भी आप प्रयोग करें तो 3-4 घंटे पहले आप फ्रिज से बाहर निकाल दें जिससे कि जो बीज है अपना सामान्य तापमान पर आ जाए और गंदे हाथों से कभी भी बीज को नहीं छूना चाहिए,
2: हाथ के कीटाणु भी उसमें प्रवेश नहीं करें।
3: जी हाँ। अब जो हमारा भूसा बीज मिलाने के लिए तैयार है उसको हम जो है परत विधि द्वारा जो है बीज को भूसे में मिलाते हैं और इसके लिए जो पॉलीथीन है वो 15 से 16 इंच चौड़ी और 20 से 21 इंच ऊंची होनी चाहिए। पॉलीथीन के थैलों को भी तैयार करने के लिए इसके पिछले हिस्से को धागे या रबर बैंड से बांध दें। इसके बाद एक बड़ी बाल्टी में 10 मिलीलीटर फॉर्मलिन मिला लें और सभी पॉलीथीन के थैलों को उस पानी में डुबोकर 2 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद इन्हें प्रयोग करें,
2: मतलब उसे भी उपचारित करें।
3: हाँ जी हाँ, जो हम पॉलीथीन ले रहे हैं उसको भी हम उपचारित कर लें, जिससे कि जो कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी ना आए और उत्पादन हमारा ज्यादा से ज्यादा हो। और अब जो है, जो हम पॉलीथीन हमने ली है, उस पॉलीथीन के थैले में पहले हम एक परत भूसे की बिछाएं, फिर उसके ऊपर बीज बिखेर दें, फिर भूसा और फिर बीज। इस तरह से हमारी जो है 4 से 5 परत बन जाएंगी और लास्ट जो अंतिम जो परत है वो भूसे की होनी चाहिए।
2: कितना ऊंचा ये सब मिला के होना चाहिए?
3: कम से कम जो है, जो हमने ये 15 से 16 इंच चौड़े और 20 से 21 इंच पॉलीथीन का जो साइज बताया है, उसमें हमारी 4-5 परत आ जाएंगी। लगभग 4 से 5 किलोग्राम गीला भूसा इसमें आ जाएगा।

0: लेकिन ध्यान ये रखें कि अंतिम परत भूसे की रखें और इसके बाद जो थैले का मुंह है वो सुतली से बांध दें और जगह जगह पे 12 से 15 छोटे छोटे छेद कर दें और जब भी छेद करें तो उसमें स्टील का सूजा लें, जंग लगा हुआ सूजा ना लें। और अब इसके बाद जो है अपने जो थैले तैयार हो गए हैं उसको हम उत्पादन कक्ष में 15 से 20 दिनों तक रख देते हैं। ये जो 15 से 20 दिन का समय होता है इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि जो थैले हमारे रखे हुए हैं उसमें सफेद तंतुओं का जाल, सफेद कुछ धागे नुमा संरचना फैल रही है या नहीं। इसको हम माइसीलियम कहते हैं और यही जो माइसीलियम है ये जो है मशरूम को जो है उत्पन्न करने में मदद करता है
1: जी।
0: जब 20 से 21 दिन बाद माइसीलियम पूरे थैले में फैल जाए,
1: ये क्या अंधेरे कमरे में रखना है या उजाला होना चाहिए?
0: नहीं, जो है अंधेरा कमरे में आपको रखना है, ठंडी जगह पर रखना है, ठंडे कमरे में रखना है और अगर झोपड़ी है तो झोपड़ी में इसका उत्पादन बहुत अच्छा होगा। और जो जिस भी कमरे में हम रखें उसमें सुबह या शाम 1 घंटे के लिए जो है प्रकाश की व्यवस्था जरूर कर दें, लाइट्स ऑन कर दें और उसमें थोड़ा सा हवा का जो है संचारण जरूर हो। इसके बाद आपको पॉलिथीन को सावधानी पूर्वक काट के निकाल देना है, साफ चाकू या ब्लेड की मदद आप ले सकते हैं। और ये जो थैले हमने निकाले हैं आपको इसमें 24 घंटे तक कुछ नहीं करना है, 24 घंटे के बाद इसमें पानी का छिड़काव करना है, लेकिन उसमें आप स्प्रेयर की मदद जरूर लें क्योंकि स्प्रेयर की मदद से हल्की फुहार के रूप में पानी का छिड़काव करना है और लगभग दिन में 2 से 3 बार पानी का छिड़काव करें। आजकल जो गर्मियों का सीजन है इस सीजन में आप 4 बार जो है पानी का छिड़काव कर सकते हैं। कमरे में नमी बनाए रखने के लिए बाल्टियां जो है पानी भर के रख दें 2-3 जगह पे, इससे क्या होगा कि जो कमरे में है नमी बनी रहेगी और हमारा जो मशरूम है वो अच्छे से जो है बढ़ता रहेगा। इसके बाद जो है कम से कम जब हमने बैग खोला है, बैग खोलने के 6 से 10 दिन के बाद मशरूम निकलने शुरू हो जाएंगे और मशरूम जब थोड़े से विकसित हो जाए, थोड़ा सा खिल जाए तो आप तेज चाकू की मदद से उसको काट कर निकाल सकते हैं। और लगभग 1.5 किलो जो सूखा भूसा है या 6 किलो जो गीला भूसा है उसमें से 1 किलो मशरूम आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अगर आपको बाजार में बिक्री करनी है तो 200 से 300 ग्राम के पैकेट बनाकर बाजार में बिक्री करें और जो ये मशरूम है बाजार में लगभग 80 से 100 रुपए किलो की हिसाब से बिकता है। अगर मशरूम जो है ताज़ा नहीं बिक पा रहा है तो सूखा हुआ मशरूम भी बिकता है और सूखा हुआ मशरूम जो है वो लगभग 450 से 500 रुपए किलो के हिसाब से बाजार में आसानी से बिक जाता है। कई लोग जो है अचार खाने की भी शौकीन होते हैं तो इस मशरूम से भी हम अचार बना सकते हैं और चटनी, सूप, बिस्किट आदि भी इससे आसानी से बन सकते हैं। सभी लोगों के लिए, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों या बूढ़े हों, सभी के लिए मशरूम एक संतुलित आहार है और इसका जो प्रयोग है भोजन के रूप में होता है, इसके साथ साथ इसको हम औषधि यानी दवाई के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अच्छी गुणवत्ता वाली जो प्रोटीन है वो पाई जाती है, इसके साथ साथ इसमें विटामिन बी और सी पाए जाते हैं, खनिज तत्व खासकर जो है इसमें सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम और लौह तत्व भी पाए जाते हैं। जिस प्रकार से सब्जियां हम प्रयोग करते हैं इसी प्रकार से इसको भी हम प्रयोग करेंगे और इसमें जो है सब्जियों में नियासिन जो होता है वो नहीं होता है, लेकिन इस मशरूम में नियासिन की मात्रा लगभग 10 गुना अधिक पाई जाती है।
1: तो मशरूम उगाएं और लाभ कमाएं, इस विषय पर कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना की वैज्ञानिक डॉक्टर रीता मिश्रा ने इतनी अच्छी जानकारी दी। रीता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो, देखो अभी अपन और सुन रहे थे भेंट वार्ता, मशरूम उगाएं लाभ कमाएं, जानकारी दे रही थी डॉक्टर रीता मिश्रा और उनसे बातचीत कर रही थी बहन तुलका शर्मा। बहनों देखो कितनी नौनी जो है डॉक्टर बहन ने अपन को जो है जानकारी दी थी और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी बहन ने जरूर जाकर लाभ लाओ। अब सुनते हैं पर्यावरण गीत ओम प्रकाश कुशवाहा के वसातियन के स्वर।

नो कितनो प्यारो जो है गीत हाथो पर्यावरण के, हरे भरे बिरचन पे सब ही सुख पाते हैं, तो खूब पेड़ लगाएं और अपनो पर्यावरण बचाएं। बहनों देखो ई बात को भी अपन और सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि नशा नाश की जड़ है और यह सभी के लाए, चाहे महिला हो पुरुष हो या बच्चा युवा बूढ़े बालक कोई भी हो, यह जो है खतरनाक होते। यही शरीर को जो अंदर से छलनी कर देते, कई रोगों को उत्पन्न जैसे करत है, हानिकारक होते। आजकल हमारे सभी लोगों में देखो देखने में मिल रहा है कि भैया हरो जब पे रोक लगाने बहुत ही ज़रूरी है। नशा से व्यक्ति को जो है संतुलन नहीं रहता है और होश हवास भी नहीं रहता है। नशा लत लगना, घर में मारपीट करना, पत्नी बच्चे पर चिल्लाना, लड़ाई झगड़ा करना, आसपास के लोगों से उधारी कर्ज लेना, जो है घर की चीज़ों को जो है बेचकर जेवरात आदि जो है ज़मीन को गिरवी रखकर पैसे लेकर नशा करना, बहनों समाज में ऐसे व्यक्तियों को देखकर कितने जो है शर्म महसूस होता है कि सब कुछ जो है बर्बाद करते हैं। इस प्रकार के लोगों को जो कोनो इज्जत नहीं करते हैं, ना ही बातचीत करते हैं और ऐसे लोगों का कोई भी विश्वास भी नहीं करते हैं। और बहनों देश में समाज में गांव में नाते रिश्तेदारी में कोनो नहीं बूझते हैं और ना ही देश के समाज के जो है अपने राष्ट्र के कार्यों में जो है सहयोग सेवा करते हैं। रात दिन नशे में पड़े रहते हैं। नशा का एक गंभीर जो है समस्या जो है बनत जा रहा है, व्यक्ति परिवार और समाज को जो है बर्बाद कर देते हैं। शारीरिक मानसिक और स्वास्थ्य खराब होते हैं। बहनों देखो नशा मुक्ति एक सामूहिक प्रयास है जिसमें सभी को मिल करके काम करना चाहिए। बहनों परिवार समाज जो है समर्थन भी देना चाहिए, नशा मुक्ति से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने सभी के लिए। बहनों नशा मुक्ति के लिए जागरूक और शिक्षा की भी आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब कार्यक्रम के अंत में अपनी बहनों को सुनवा रहे हैं, काय के श्रावण को महीना चल रहा है तो सुनते हैं जो है सावन गीत ममता गोस्वामी के स्वर में।

हाँ बहनों, तो देखो अब हो गई है चलवे की बेरा, ममता गोस्वामी के जो सावन गीत के साथ ही। तो अपनी बहन विजयलता को दे इजाजत, सभी बहनन को राम राम।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इस अंतर्गत सुनिए सप्तधारा से विकसित भारत के विकास यात्रा को मिलती नई गति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
2: 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पूरे देश को कल संबोधित किया। उन्होंने विकसित भारत को लेकर सप्त धारा की बात की है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीति

0: वैयक्तिक विश्लेषक केवी प्रसाद जी। केवी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
1: धन्यवाद हर्ष जी।
0: आज हम बात कर रहे हैं सप्तधारा के बारे में। तो क्या है ये सप्तधारा, जिसमें बात कही गई है मैन्युफैक्चरिंग पावर, कृषि और फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी और सातवां है सॉफ्ट पावर। इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं?
1: सबसे पहले हरजी, जैसे हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री जब भी भाषण देते हैं लाल किले प्राचीन, तो उनकी सरकार की जो उपलब्धियां रही है उसके ऊपर तो जरूर प्रकाश डालते ही, और साथ ही साथ ये बताते हैं कि आगे चल के किस तरह से देश का चलन होगा, हमारे जो पूरा ढांचा किस तरह आगे बढ़े। और क्योंकि 1947 के 100 साल पूरे हुए हैं, यानी 2043 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के उभरना, इस लक्ष्य को साधा हुआ है, तो उसके तहत जो सप्तधारा विकास है वो एक सात सूत्रीय विजन है जो भारत की भविष्य की तरक्की के मुख्य आधार होगा, चाहे वो उत्पादक हो, कृषि हो, फूड प्रोसेसिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन, गति शक्ति, रक्षा, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर, इन पे केंद्रित है। इस रूपरेखा का उद्देश्य भारत को आर्थिक और रणनीतिक क्षमताओं के मजबूत करना है और विकसित भारत की ओर, जैसे कहा, कि देश की यात्राओं को एक तीव्र गति प्रदान करना है।
0: और ये सातों धाराएं, मुझे लगता है कि अगर पूरी गति से चलनी शुरू कर दें, काफी इसमें से आगे प्रगति हो चुकी है, हो रही है लगातार, तो इसका जो फोर्स आएगा, जो बल मिलेगा देश के विकास के लिए, वो सप्तधारा से सहस्त्रधारा का बल मिल सकता है।
1: जी, जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो सात बिंदु है या सात रूपरेखा जो खींची है इन सात धाराओं का, इन पे कार्य शुरू हो गया है, चल रहा है, अलग अलग गति है सब में। ऐसा नहीं है कि ये आज शुरू होगा, ये कार्यक्रम सरकार ने चलाए हैं और इसमें एक तरह से सम्मिलित तौर से, जैसे अगर आप जानते हैं कि भारत सरकार पिछले 10-12 साल से कहती है फुल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, यानी कि पूरी सरकार एक तरह से काम करे, ना कि हर विभाग अलग काम करे।
0: प्रधानमंत्री जी ने जो पहली धारा की बात कही वो मैन्युफैक्चरिंग पावर की है। मैन्युफैक्चरिंग पावर ग्लोबल स्टैंडर्ड पर ढले, कंपोनेंट डिजाइन से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक पूरी जो वैल्यू चेन है वो भारत में ही हो और दुनिया भारत के पास आए, आप इसे कैसे देखते हैं?
1: मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उत्पादकता, जैसे हम जानते हैं कि भारत में पिछले कई दशकों से इस रहा है फोकस, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था जो है उस पे जो मैन्युफैक्चरिंग का जितना होना चाहिए प्रभाव वो नहीं है। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ सर्विसेज सेक्टर 50-55% GDP को कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद कृषि भी है करीब 17% और बाकी मैन्युफैक्चरिंग से आता है। तो ये हम चाहते हैं कि इस पे ज्यादा हो, क्योंकि जब तक किसी भी राष्ट्र के पास मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उत्पादक बनाने की क्षमता ना हो तो उसकी गति में, खासकर उनकी जो अर्थव्यवस्था पे, वो गति धीमी हो जाती है, और इस पे कई सालों से काम हो रहा है। इसके साथ साथ दो बहुत जरूरी है जो प्रधानमंत्री ने भी बार बार कल भी कहा और पहले भी कहे, एक तो गुणवत्ता, और इसमें सबसे ज्यादा ये है कि आप विश्व में प्रतिस्पर्धा करने हो, ताकि आप देखें कि हम विश्व में जब विश्व पटल पे अपने साजो सामान रखते हैं तो आप द बेस्ट के साथ और जीरो डिफेक्ट के साथ कम्पीट करें, ताकि लोग कहें कि ये प्रोडक्ट आपने ले रहा है तो भारत जाएगी। तो इस तरह के वैश्विक मानकों में आप पूर्ण तरह से उतरे। इसमें लागत की प्रतिस्पर्धा है, अगर आप देखें 2014 में कच्चे माल और पूर्जे के लिए आयात पर ज्यादा निर्भरता के कारण लगातार ज्यादा थी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिक्री हुई थी और बड़े पैमाने में उत्पादन के फायदा यानी इकोनॉमी खेल सीमित थी। इसको बदल के 26 में जब मेक इन इंडिया और PLI स्कीम जैसे नीतिगत सुधार किए तो आयात पर निर्भरता कम हुई, ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन ने उत्पादन की लागत कम की। तो इस पैमाने पे जिसे कहते हैं कि काम हो रहा है। जब रक्षा की ओर जाएं तो रक्षा कॉरिडोर की बात हुई है, मैन्युफैक्चरिंग बेस हम बना रहे हैं, और जैसे मैंने कहा जो गुणवत्ता मानक है इस पे भी काफी दिया जा रहा है। आज जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा उस पे ध्यान दिया जा रहा है, साथ ही साथ ISO सर्टिफाइड चीजें प्लांट लगे, क्योंकि वैश्विक अगर आप प्रतिस्पर्धा में उतरे तो आपका उत्पाद उस गुणवत्ता के साथ हो ताकि कोई बाधा ना है। तो ये सब कुछ चीजें हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम चले तो फार्मा इंडस्ट्री एक है जो कि पिछले कई सालों से सिर्फ जेनरिक दवाइयों पे दबदबा था, लेकिन अब वो बायोटेक की ओर अग्रसर है।
0: दूसरी धारा की बात करें केवी प्रसाद जी, तो वो है कृषि और फूड प्रोसेसिंग। इसमें पारंपरिक खेती से आगे बढ़ने की बात कही गई है, क्या ये पूरा विस्तार से बताएं?
1: हम सब जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन अब जो है सिर्फ कृषि के साथ जो वैल्यू एडेड जिसे कहते हैं कृषि की पैदावार के, तो तो उसके अंदर जो गुणवत्ता के अलावा उसके अंदर जो कार्य हो रहा है वो नई विधि से हो, उत्पादक तो खाद्य सुरक्षा हमारे यहाँ ठीक है, अनाज का इतना उत्पादन है 357-358 मिलियन टन का हो गया है, गेहूं के उत्पादन बढ़ाया, तिलहन के उत्पादन, लेकिन इसमें कई सारी चीजें, बागवानी का उत्पादन बढ़ाया, पशुपालन और मत्स्य पालन पे डेयरी क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ है। इसके बावजूद हमने देखा है कि आजकल विश्व में एक नई चीज है कि जलवायु के अनुकूल क्षमता, पोषण के लिए जैसे हम

0: ने मोटा अनाशियन का जो बदलाव दिखाया, बढ़ावा दिया सरकार ने, वो भी एक पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ एक खाद्य पद्धति और पदार्थों का उसमें मिश्रण थोड़ा बदला है ताकि लोगों का अन्न के ऊपर तो ध्यान जाए। इस तरह कई चीजें हैं, फूड प्रोसेसिंग और वैल्यूएशन जिसकी बात कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप ग्रामीण का आय बढ़ाना चाहते हैं और एक्सपोर्ट बढ़ोतरी चाहते हैं तो ये एक है, कोल्ड चेन होना, मेगा फूड पार्क करना, एग्रो प्रोसेसिंग, ये सब चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। और साथ ही साथ इसमें चुनौतियां भी हैं, जैसे मैंने कहा जलवायु संबंधी जोखिम है, छोटे किसानों का बिखराव है, फूड प्रोसेसिंग की कमी है, तो ये सब चीजें, और कोल्ड चेन जिसे कहते हैं कि ताकि आपके पास ठंडी जगह हो जहाँ पे आपका जो पदार्थ है वो आप रख लें, खासकर फल और सब्जियां, और कुछ ज्यादा दिन के बाद आप उसका प्रयोग भी ला सकते हैं। हर्ष जी
1: बिल्कुल, और साथ ही ये सब जब हम करने लगेंगे तो ग्लोबल मार्केट तक भारत की जो पहुंच है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। तीसरी धारा जिसकी बात कही गई है वो है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। हमने पहले ही देखा कि पूरी दुनिया किस तरीके से मुरीद हो चुकी है भारत के UPI और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सफलता की, और भारत से बहुत कुछ सीख रही है। अब जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि तीसरी धारा के रूप में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को आगे बढ़ाना है, तो हमें इसे कैसे लेना चाहिए, ये कैसे समझना चाहिए?
0: हम सबको ज्ञात है कि इसी साल के शुरुआत में भारत में AI मिशन जो 2025 में लॉन्च हुआ था, एक बहुत बड़ा कृत्रिम इंटेलिजेंस का हमने यहाँ पे बहुत बड़ा सर्वे समिट किया था, तमाम सारे विशेषज्ञ आए थे, और ये ऐसा युग है, पूरी दुनिया जूझ रही है इसे, AI के ऊपर एक प्रतिस्पर्धा है, विश्व के बड़े राष्ट्र इसमें अग्रसर है, तो भारत के पास सब जानते हैं एक सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा पूल है और भारत के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है दुनिया में उनका लोहा मानते हैं, तो ऐसे में भारत भी चाहता है कि देश में ही इसका विकास हो। सिर्फ AI तो एक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका आपने विशेष उल्लेख किया है, UPI इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी जगह काफी राष्ट्रों के साथ बात हुई है कि वहां के राष्ट्रों के साथ आपके पेमेंट UPI के जरिए हो रही है, लेकिन साथ ही साथ जो साइंस में जो होता है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये भारत का एक बहुत ही जिसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन रहा है विश्व में, और इसके ऊपर भी लगातार काम हो रहा है ताकि पीयर रिव्यूड साइंटिफिक पब्लिकेशन आए इन चीजों में, और हमारे जो डॉक्टरेट है, जो ग्रेजुएट है, ऑलरेडी हमारे पास सबसे बड़ा साइंटिफिक पूल माना जाता है, और एक खास विशेष ध्यान इस पे दिया जा रहा है कि पेटेंट और इनोवेशन में बढ़ोतरी हो, क्योंकि पेटेंट जिसके पास है, अमेरिका का लोग मानते हैं लोहा या चीन का मानते हैं तीन, उनके पास टेक्नोलॉजी इतनी तेज से विकास किया है और उसमें पेटेंट लेके वो उसी पे टेक्नोलॉजी पे ही वो उनका अर्थव्यवस्था पर मजबूत कर रहे हैं, तो भारत जब अपने आप को प्रतिस्पर्धा में ला रहा है और 2047 का लक्ष्य रखा है कि आप एक विकासशील राष्ट्र हो, तो ये सारे चीज उसकी तरफ कार्य करना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: चौथी धारा जो है वो है गतिशक्ति। हमने पहले भी देखा है कि देश में तेज रफ्तार और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हाई स्पीड रेल, हाईवे, जलमार्ग सबको पिछले 10-12 वर्षों में काफी मजबूती प्रदान की गई है। जो रास्ते हम पहले 12-12 घंटे में, 14 घंटे में तय करते थे, अब वो रास्ते महज 3-4 घंटों में हम तय कर पा रहे हैं। गति शक्ति देश को कैसे और आगे बढ़ाएगा?
0: हर जी, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, जो सड़क है, आपके एयरपोर्ट है, आपके रेलवे है, आपके जल मार्ग से जो व्यवस्था है, इसमें काफी है, क्योंकि जब आपके पास जल प्रबंधन और जल मार्ग और सी पोर्ट्स आपके अच्छे हों तो आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो टर्न अराउंड टाइम है वो जल्दी होगा, और जिस तरह से इन बंदरगाहों का विकास हो रहा है इसकी वजह यह कि अगर आप जो बंदरगाह उसमें देखिए, उसमें टर्न अराउंड टाइम कहते हैं, यानी कि माल लदा हुआ जहाज आया, 24 घंटे 48 घंटे के अंदर उसमें सामान उतारा, फिर सामान चढ़ाया और चल देते, क्योंकि वक्त कम देते हैं, तो जो है चीजें मिलेगी जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर मूलभूत सुविधाएं का तेजी करें, अपने फैक्ट्री तो लगा लिए एक छोटे कस्बे में या गांव में, लेकिन अपना सामान जब तैयार किया अगर उसको एक्सपोर्ट के लिए आप नहीं बेच पाए और ज्यादा वक्त लगे तो उसमें नुकसान सबका होगा। ये इस चीजों को बहुत जरूरी है, इस पे जोर देना, और ये इसी पे ज्यादा फोकस है।
1: बिल्कुल, और बंदरगाहों की बात आपने की, प्रधानमंत्री जी का ये भी कहना है कि बंदरगाहों को केवल माल उतारने और चढ़ाने की जगह न माना जाए बल्कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट के रूप में विकसित करना भी इसका बहुत प्रमुख उद्देश्य है, जिस दिशा में हम आगे ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। पांचवी जो है धारा वो है रक्षा शक्ति। हमने देखा प्रसाद साहब की रक्षा के क्षेत्र में भारत ने पिछले 12 वर्षों में कितनी तरक्की की। पहले हम पूरी तरीके से आयात करते थे रक्षा से संबंधित उपकरण, अब ना सिर्फ वो आयात कम हुआ है बल्कि अब कई देशों को तो भारत निर्यात करने लगा है, क्या कहते हैं आप?
0: जी हर्षी, अगर आपको मैं आंकड़ा दूं, 2014-15 में हमारा जो है स्वदेशी प्रोडक्शन है वो करीब 46,000 करोड़ था, वो 2025-26 में 1,78,00,000 करोड़ हो गया। तो ये दिखाता है जो मेक इन इंडिया का जो कार्यक्रम है, आत्मनिर्भर भारत की सफलता दिखाता है, जिसमें आपने कहा एक्सपोर्ट्स की बात की, इसमें भी उछाल आया। डिफेंस एक्सपोर्ट 2013-14 में कोई 686 करोड़ रुपए था, अब वो बढ़कर यानी 2025-26 में 38,000 करोड़ से ऊपर पहुंच गया, और 80 से ज्यादा देशों तक हमारा ये सामान बाहर जाता है। तो भारत एक जिसे कहते हैं मिसाइल हो, रडार हो, बख्तरबंद गाड़ियां हो, नेवल सिस्टम हो, इस तरह की चीजों का अब हम आगे भेज रहे हैं, और साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी है। इसका भी एक आंकड़ा दें, जिसमें इस साल 2026-27 में करीब 30,000 करोड़ आवंटित किया गया है, और 25% हिस्सा स्टार्टअप को दे रहे हैं ताकि नए लोग इसमें, आईडेक्स का एक प्रोग्राम जो भारत सरकार ने चलाया इसमें स्टार्टअप शामिल है, ये इनोवेशन हो और इसमें तेजी पहुंचे। और हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर करीब 74,000 करोड़ का निवेश आया है। तो ये सब चीज दिखाता है कि एक तरह से हम, जैसे आपने शुरुआत में कही, निर्भर थे बहुत ज्यादा। आज भी भारत जो है काफी साजो सामान खरीदता है विशेषकर रक्षा के लिए, लेकिन साथ ही साथ हम दूसरा रास्ता भी खोल रहे हैं। जैसे मैंने आंकड़ा भी आपको दिखाया कि हम इस में मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, और अब जो लेटेस्ट चल रहा है इसके ऊपर खबर 2 दिन पहले भी आई है कि जो हम एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट को लेकर जो इंजन तैयार होने वो भारत में ही तैयार करने की एक प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है।
1: और जो छठी धारा है वो ग्रीन इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी, इसमें अब तक हमने क्या प्रगति की है और आगे हमें क्या करना चाहिए?
0: ग्रीन इकोनॉमी की बात करें तो सबसे बड़ा है नेशनल सोलर मिशन, और साथ ही साथ भारत और फ्रांस ने एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर एक परिकल्पना कल्पनी, जिसमें करीब 70 से 80 देश इसमें जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो इक्वेटर है उसके आसपास इतने रेडियस तक जो राष्ट्र हैं, और भारत में अब जैसे है 70 गीगावाट से ज्यादा इंडस्ट्रियल सोलर कैपेसिटी हासिल कर लिए, जो 2030 तक 5,000 गीगावाट, और ये जो रिन्यूएबल एनर्जी की है एक तरह से जिसके ऊपर दारोमदार है, और साथ ही साथ एक फेम स्कीम लॉन्च किया है जिसे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपना कर उनका निर्माण करे, और 2015 में शुरू किया एक प्रोग्राम था इलेक्ट्रिक वाहनों का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और आज हम जानते हैं कि ईवी के ऊपर भारत सरकार प्रोत्साहन दे रही है कि आप खरीदे ईवी व्हीकल, अलग अलग जगह चार्जिंग पॉइंट है। ग्रीन इकोनॉमी इसलिए भी है, जैसे मैंने कहा प्रतिस्पर्धा के दौर में विकासशील राष्ट्र आप पे मापदंड लगाते हैं कि नहीं आप पोल्यूशन कम कीजिए, आप इस पे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कम कीजिए, एनर्जी पे खर्चा अलग कीजिए, और इसी वजह से हम कोयले की ऊर्जा से नहीं, तो ये सब है। ब्लू इकोनॉमी की जहां तक बात है, सागरमाला प्रोग्राम जो हमारा फोकस है, समुद्री व्यापार की क्षमता की जो हम बात कर रहे हैं, और डीप ओशन मिशन जिसके ऊपर प्रधानमंत्री ने कल भी अपने भाषण में बताया था कि किस तरह से हमने कई नो गो एरियाज को खोल दिया है।
1: जी, और प्रसाद जी, भारत के पास तो इतनी विशाल समुद्री तटरेखा है, महासागर है, तो हम मत्स्य पालन और समुद्री पर्यटन की संभावनाओं को पूरी तरीके से इसका दोहन कर सकते हैं। और साथ ही जो 7वीं धारा है वो है भारत का सॉफ्ट पावर, यानी योग, हस्तशिल्प, भारत की संस्कृति, सिनेमा, VFX, एनिमेशन, गेमिंग और डिजिटल कॉन्टेंट, जिसमें हम पहले से ही काफी आगे बढ़े हुए हैं वैश्विक पैमाने पर, और अब और आगे बढ़ेंगे आने वाले वर्षों में। KV प्रसाद साहब, आपका आकाशवाणी से जुड़ने और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे सप्तधारा से विकसित भारत की विकास यात्रा को मिलती नई गति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक KV प्रसाद, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम डगर विकास की प्रस्तुति है आकाशवाणी जबलपुर की।
5: प्रस्तुत है समन्वित कार्यक्रम डगर विकास की। आज का ये कार्यक्रम जबलपुर जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर आधारित है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान है।

0: अन्न केवल उदर पोषण का साधन नहीं है, बल्कि जीवन की वह संजीवनी है जो आत्मा को स्पंदित रखती है। जब विपदा के घनघोर बादल छाते हैं, तब एक भूखे पेट की आह संपूर्ण मानवता को झकझोर देती है। इसी पीड़ा के अंधकार को चीरकर करोड़ों देशवासियों की व्यथा को हरने और उनके भाग्य का सूर्य उगाने का महासंकल्प है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यानी PMGKAY। ये योजना भारत सरकार की एक प्रमुख खाद्य सुरक्षा योजना है जो गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करती है। ये योजना COVID-19 महामारी के दौरान अप्रैल 2020 में आरंभ की गई। शुरुआत में केवल कुछ माह के लिए चलाई गई इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए यानी दिसंबर 2028 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है। PMGKAY योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के अंतर्गत आने वाले लगभग 80 करोड़ हितग्राहियों यानी अंत्योदय अन्न योजना AAY अंतर्गत आने वाले परिवार और प्राथमिकता परिवार यानी कि PHS को पूर्व से ही संचालित पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की उचित मूल्य की दुकानों से निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। और अधिक जानकारी दे रही हैं प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक जिला जबलपुर श्रीमती सीमा बोरसिया।
1: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ही गरीब परिवारों को राशन वितरण किया जाता है। पहले हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता था, जहां पर हम 2 प्रकार के राशन कार्डों पे हितग्राहियों को राशन वितरण करते थे। एक होते थे अंत्योदय कार्ड, जिसका पीले रंग के कार्ड होते थे, दूसरे होते थे नीले रंग के कार्ड, BPL राशन कार्ड। तो 2 प्रकार के राशन कार्डों पे हितग्राहियों को राशन वितरण किया जाता था। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया, जिसके तहत हमें अधिक से अधिक जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना था। तो पहले 2 श्रेणियों में राशन कार्ड बनते थे, उन्हीं को केवल राशन वितरण था, लेकिन 2013 के बाद 28 श्रेणियां आ गई हैं, जिसमें पहली श्रेणी तो अंत्योदय परिवारों की है, उसके अतिरिक्त 27 नई श्रेणियां और शामिल हो गई ताकि अधिक से अधिक परिवार लाभान्वित हो सकें। 27 श्रेणियां मैं आपको बताना चाहूँगी, जिसमें BPL कार्ड भी शामिल है, वन अधिकार पट्टाधिकारी होते हैं, भूमिहीन कोटवार शामिल हो गए हैं, SC परिवार, ST परिवार, ऐसे परिवार जो कर्मकार मंडल के पात्रता रखते हैं, बंद पड़ी मिलों के श्रमिक हैं, BD श्रमिक हैं, साइकिल रिक्शा वाले हैं, फेरी वाले हैं, घरेलू कामकाजी महिलाएं हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी हैं, रेलवे में पंजीकृत कुली हैं, केस शिल्पी हैं, अन्य प्रकार की, इस प्रकार की 27 और श्रेणियाँ शामिल कर ली ताकि अधिक से अधिक परिवार राशन प्राप्त कर सके। और जब खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू हुआ, उसके बाद हमारे राशन कार्ड बंद हो गए, पात्रता पर्चियां चालू हो गई। पात्रता पर्चियां 28 श्रेणियों में बनने लगी और इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहली श्रेणी होती है अंत्योदय परिवार की पर्ची, जिसमें पीले राशन कार्ड वालों को अंत्योदय की पर्ची जारी की जाती है। बाकी 27 श्रेणियों को नाम दिया गया है प्राथमिकता परिवार की श्रेणी। तो अब 2 प्रकार की श्रेणी में पात्रता पर्ची जारी होती है, अंत्योदय परिवार और प्राथमिक परिवार की श्रेणी।
2: माँ, आज स्कूल में PMGKAY का नाम सुना, ये योजना सच में हमारे लिए भी है क्या?
3: हाँ बेटा, ये योजना कोविड के समय शुरू हुई थी, जब बहुत से लोगों का काम रुक गया था। तब सरकार ने जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त राशन देना शुरू किया, ताकि कोई भूखा ना सोए।
2: तो मतलब हमें हर महीने जो गेहूं और चावल मिलता है, वो इसी योजना की वजह से है?
3: बिल्कुल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने मुश्किल समय में हमारी मदद की और आज भी ये योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए सहायक है।
2: अच्छा, मुझे तो लगता था राशन ऐसे ही मिलता है।
3: नहीं बेटा, ये सिर्फ राशन नहीं, भरोसा है, ये सपना है।

0: सशक्त संपन्न भारत का, ये सपना है अन्नपूर्ण भारत का।
1: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की कई विशेषताएं हैं, लेकिन 5 ऐसी विशेषताएं हैं जिनका उल्लेख करना आवश्यक है। पहली और सबसे प्रमुख विशेषता है मुफ्त खाद्यान्न। जहां पूर्व में गरीब परिवारों को सब्सिडी दर पर यानी 2 रुपए और 3 रुपए में अनाज मिलता था, वहीं अब इस योजना में ये निःशुल्क कर दिया गया है, यानी लाभार्थी को कोई शुल्क नहीं देना होता। दूसरी विशेषता है पोषण सुरक्षा। फोर्टिफाइड चावल यानी पोषक तत्वों से युक्त चावल के वितरण के कारण एनीमिया और सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी की समस्या में मदद मिलेगी और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। तीसरी विशेषता है आर्थिक सुरक्षा। गरीब तबके के परिवारों पर इस योजना के कारण आर्थिक बोझ कम होता है, जिससे हुई बचत से इन परिवारों के घरेलू बजट का उपयोग अन्य जरूरतों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन स्तर पर खर्च किया जा सकता है। चौथी विशेषता है पोर्टेबिलिटी। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड यानी ONORC के तहत हितग्राही परिवार देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से इस योजना के अंतर्गत मिलने वाला राशन प्राप्त कर सकता है, जो कि प्रवासी श्रमिकों के लिए बहुत उपयोगी है। और 5वीं विशेषता है इस योजना की व्यापकता। ये योजना दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजनाओं में से एक है, जिसकी विश्व मुद्रा कोष जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भी प्रशंसा और सराहना की है। ये योजना लगभग 81 करोड़ 35 लाख भारतीयों को लाभान्वित कर रही है। यदि जबलपुर जिले की बात की जाए तो आइए इस योजना के हितग्राही परिवारों की संख्या और उचित मूल्य के राशन दुकानों की संख्या के बारे में भी जान लेते हैं।
2: हमारे जबलपुर जिले में राशन दुकानें संचालित हैं 986 राशन दुकानें, जिसमें से 421 राशन दुकानें शहरी क्षेत्र में संचालित हो रही हैं और 565 राशन दुकानें ग्रामीण क्षेत्र में संचालित हो रही हैं, जिसमें अंत्योदय परिवार के जो पात्रता पर्ची जा रही हैं वो 41,970 परिवारों को, पीले राशन कार्ड वालों को अंत्योदय परिवार की श्रेणी में पात्रता पर्ची जा रही हैं। बाकी 27 श्रेणी जिसे हम प्राथमिकता श्रेणी कहते हैं, उसमें 3,47,324 परिवारों को पात्रता पर्ची जारी है। इस प्रकार जिले के 3,89,294 परिवार राशन से लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें सदस्य संख्या है 14,45,205। इतने सदस्य जबलपुर जिले में राशन से लाभान्वित हो रहे हैं। जबलपुर जिले में राशन दुकानें जो संचालित हो रही हैं उससे संलग्न जितने परिवार हैं, परिवार के मान से जबलपुर जिले को आवंटन जारी किया जाता है। ऑनलाइन मोड में भोपाल स्तर से जनरेट होता है आवंटन। जबलपुर जिले के लिए अनुमानित लगभग हर महीने 6,250 मैट्रिक टन लगभग गेहूँ जारी किया जाता है। 1725 मैट्रिक टन के करीब चावल का आवंटन जारी होता है।
1: इस योजना को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है। जबलपुर जिले में संचालित कुल उचित मूल्य राशन दुकानों में 176 उचित मूल्य की राशन दुकानें महिला स्वसहायता समूह की बहनों द्वारा संचालित की जाती हैं, जहां एक देश एक राशन कार्ड यानी ONORC के अंतर्गत PMGKAY का लाभ इसके सभी हितग्राहियों तक पहुंचाने में एक बड़ी पहल रहा है, वहीं EPOS सिस्टम ने वितरण प्रक्रिया को और आसान कर दिया है। EPOS आधारित वितरण ने पारदर्शिता तो बढ़ाई ही है, साथ ही दुरुपयोग की गुंजाइश को एकदम घटा दिया है।
2: राशन वितरण होता है वो पात्रता पर्ची बनवानी पड़ती है किसी भी हितग्राही को, तो 28 श्रेणी में पात्रता पर्ची बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति जो इस 28 श्रेणी से संबंधित दस्तावेज रखता है तो ग्राम पंचायत स्तर पे वो अपने ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक से मिलता है। रोजगार सहायक इन 28 श्रेणियों में से अगर उसके पास पात्र दस्तावेज पाया जाता है तो वो उसको राशन में पोर्टल पर स्वीकृत कर देता है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में अगर पात्रता पर्ची किसी हितग्राही को बनाना होता है तो वो अपने जोन में जाता है, नगर निगम जोन में, और वहाँ जाके 28 श्रेणी में अगर किसी श्रेणी में पात्रता रखता है तो वो उसे राशन मित्र पोर्टल पर स्वीकृत करते हैं। जैसे ही ग्राम पंचायत या जोन स्तर से पात्रता पर्ची के लिए स्वीकृति आती है तो वो अप्रूवल के लिए फूड ऑफिस में भेजा जाता है। फूड ऑफिस द्वारा उसे अप्रूव किया जाता है। अप्रूव करके भोपाल स्तर से उसकी पर्ची एक महीने में जनरेट हो जाती है। पर्ची बनाने के लिए उसे सबसे जरूरी दस्तावेज होते हैं कि उसके पास समग्र परिवार आईडी हो, 28 श्रेणियों का कोई दस्तावेज हो, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड अनिवार्य है। जब तक सभी सदस्यों का आधार कार्ड नहीं होता और उनका EKYC नहीं होता है तो पात्रता पर्ची जनरेट नहीं हो पाती है। पात्रता पर्ची एक महीने में जनरेट हो जाने के पश्चात वो दुकान जाकर अपना राशन प्राप्त कर सकता है। सभी राशन दुकानें हमारी ऑनलाइन मोड पर संचालित होती हैं। सभी राशन दुकानों में POS मशीन है। मशीन के आधार पर ही उनके आधार ऑथेंटिकेशन पर उनको राशन वितरण किया जाता है।

0: राशन दुकानों से राशन पीओएस मशीन के माध्यम से ऑनलाइन वितरण होता है। हितग्राही को अपना फिंगर पीओएस मशीन पर लगाना होता है। चूंकि वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना भी जारी है, हितग्राही जिले में जहां भी जगह पर रह रहा है पास की किसी भी राशन दुकान में जाकर राशन प्राप्त कर सकता है अपने समग्र आईडी पर।
1: मैं मेरे गरीब भाई बहन को खाली पेट सोने नहीं दूंगा। भली भांति जानता हूं कि भूखे रहने की तकलीफ क्या होती है, इसलिए हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया और आज देखिए हमारे इन प्रयासों की तारीफ दुनिया में हो रही है।
2: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का सामाजिक आर्थिक प्रभाव गहरा है। परिवारों का मासिक खर्च घटता है, घरेलू बचत बढ़ती है और शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च की गुंजाइश बनती है। ये योजना संकट के समय सुरक्षा चक्र बनकर उभरी और अब सतत विकास के पथ पर एक मजबूत स्तंभ बन चुकी है। जब एक राष्ट्र अपनी कमजोर कड़ियों को पोषित करता है तब वो न केवल सहानुभूति दिखाता है बल्कि अपने भविष्य को भी मजबूत बनाता है। तो ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक मानवीय पहल है, सरल, सशक्त और स्थायी। ये योजना बताती है कि नीति निर्माण केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि जीवन को संवारने का कार्य है। जब थाली में अन्न सुरक्षित होगा तभी समाज की आत्मा संतृप्त और जीवन समृद्ध होगा और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना उसी संतृप्ति और समृद्धि की गारंटी है। गारंटी है विकसित भारत बनाने के हमारे संकल्प की डगर सुनिश्चित करने की, यानी डगर विकास की।

0: अभी आप सुन रहे थे समन्वित कार्यक्रम डगर विकास की। आज का ये कार्यक्रम जबलपुर जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर आधारित था। वाचक एवं प्रस्तुतकर्ता प्रशांत परमार। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र पर तैयार किया गया और आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की। योगदान था आकाशवाणी जबलपुर का। विषय था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म नदिया के पार से। इस गीत को गाया है जसपाल सिंह और हेमलता ने। गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म हीर रांझा से सुमधुर आवाज लता मंगेशकर की। गीत लिखा है कैफी आजमी ने और संगीत निर्देशन है मदन मोहन का।

0: ही रांझा फिल्म के इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है और अब एक समय है एक छोटे से अंतराल का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित की जाएगी। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत। महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
3: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
2: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
3: 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो। आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, एमएसपी पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है।
2: श्री शाह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की अपार क्षमता है और गुजरात के किसानों ने इसे साबित कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों की नस्लें राजस्थान के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के खातों में सीधे धनराशि भी अंतरित की। इससे पहले गृह मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। पूरे राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका को अतुलनीय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं, जो भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है।
4: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship, and critical thinking. I am pleased to note SRM growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will save the economies and the society's future.
2: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। NTA ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मीलेगा।
5: लगभग 3 किलोमीटर लंबी यह रणनीतिक सुरंग कालीधार पर्वत श्रृंखला के बीच बनाई गई है। इसके शुरू होने से मौजूदा मार्ग में कठिन हिस्से को बाईपास किया जा सकेगा और यात्रा की दूरी करीब 13 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा का समय भी काफी कम होगा। यह सुरंग ऐसे समय में खोली गई है जब अखनूर से राजौरी होकर पुंछ जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए ही खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
2: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में 1950 बीमारियां शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेमा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेमा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चिकित्सकीय मार्गदर्शन पर आधारित चिकित्सा पद्धति पर बल दिया है। नई दिल्ली में प्रोफेसर आनंद एन मालवीय और डॉक्टर प्रशांत कौशिक की पुस्तक रूमेटोलॉजी एसेंशियल्स अ न्यू फ्रंटियर फॉर एस्पायरिंग क्लिनिशियंस के विमोचन के अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिआयामी दृष्टिकोण अनावश्यक दवाओं का उपयोग करने, जांच कम करने, निदान में देरी को रोकने और ये सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि मरीज सही समय पर उचित विशेषज्ञ से परामर्श ले सके। राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
6: DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकरों और IEC धारकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की जांच जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले

0: की जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
1: उड़ीसा के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 49 ब्लॉक और 5 शहरी इलाके प्रभावित है और लगभग 2.37 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित इलाकों में करीब 293 राहत शिविर चल रहे हैं। मुख्य सचिव अनूप गर्ग ने जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रभावित जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। प्रबंधन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को भद्रक, बालासोर और जाजपुर जिलों में तैनात किया गया है, जबकि प्रभावित जिलों की मदद के लिए एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा गया है। भद्रक, केंद्र और मयूरभंज जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीद होंगी। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9. The headlines. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches development projects worth over 6,400 crore rupees at Alwar in Rajasthan, asserts empowering youth, poor, women and farmers essential for achieving goal of developed India by 2047. Vice President C.P. Radhakrishnan calls upon students to embrace nation first and contribute to Viksit Bharat 2047. India dismantles large-scale areca nut import racket from Bangladesh, uncovering 2,500 crore rupees revenue loss. 9 arrested. Red alert issued for very heavy rainfall over Gangetic, West Bengal and Odisha tomorrow. Ukraine and Russia exchange missile and drone strikes, claiming 11 lives on both sides. In hockey, India begin campaign with 2-2 draw against China in FIH Women's World Cup in the Netherlands. And WF Badminton World Championship start in New Delhi tomorrow. PV Sindhu and Lakshya Sen lead the India's challenge. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan, after laying the foundation stones for and inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees across 17 districts of the state.
3: If we want to make India a fully developed nation by 2047, we need to empower the youth, the poor, farmers and women. With this objective, farmers are being provided with the Kisan Samman Nidhi scheme benefits. Dairy facilities worth 500 crore rupees are being established for livestock. Employment opportunities are being created for the youth, and the BJP government has taken steps to expand Saras Dairy for women.
2: He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2014 to 2026, the Modi government introduced and continuously increased the minimum support price.
3: Not a single year between 2014 and 2026 has passed without the government launching a major scheme for farmers. Today, I want to tell the Congress leaders that if anyone has procured the highest quantity of food grain at the minimum support price MSP, it is the Narendra Modi government.
2: Vice President C. Radhakrishnan has called upon graduating students to use their knowledge, skills and innovation for nation building guided by the principle of nation first. Addressing the 22nd convocation of SRM Institute of Science and Technology at Kattanakulathur near Chennai, the Vice President said India's youth have a vital role to play in the country's journey towards Viksit Bharat by 2047.
4: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship and critical thinking. I am pleased to note SRM growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will save the economics and the society's future.
2: West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari today formally launched Ayushman Bharat, the central government's flagship health insurance scheme in the state. He also launched the Mukhyamantri Swasthya Bima Yojana. A Union Minister of State for Health and Family Welfare, Anupriya Patel, was also present at the event. Here is a report from our Kolkata correspondent.
5: Chief Minister Shubhendu Adhikari formally launched the scheme at Netaji Indoor Stadium. The Chief Minister said around 6 crore people in the state would benefit from the Ayushman Bharat scheme. The scheme will be available at around 2,000 government and private hospitals in West Bengal and 38,604 hospitals across the country. All people aged above 70 will be covered under the Ayushman Bharat. Union Minister of State for Health, Anupriya Patel, said around 35 lakh people aged above 70 in the state would be covered under the scheme. The Mukhyamantri Swasthya Bima Yojana was also launched today. Those who are not covered under Ayushman Bharat will be eligible for the state health insurance scheme. Sandeep Dasgupta, Akashvani News, Kolkata.
2: In Jharkhand, students protesting against irregularities in state's recruitment examinations today burnt effigies of Chief Minister Hemant Soren, Congress leader Rahul Gandhi and RJD leader Tejaswi Yadav in Ranchi. Student raised slogans against the state government and reiterated the demand for the cancellation of JPSC and JSSC examinations, alleging irregularities in the recruitment process. The protesters have also announced plans to get out the chief minister's residence on the 20th of this month. Tiranga Yatras were held today in Karnal and Ballabgarh in Haryana as part of the Har Ghar Tiranga campaign. Union Minister Manohar Lal flagged off the Yatra in Karnal, while in Ballabgarh, the procession was led by Union Minister of State for Cooperation, Krishan Pal Gurjar, and former Cabinet Minister and MLA Pandit Mohan Sharma. A large number of people participated in the Tiranga Yatras at both places, carrying their tricolor and raising patriotic slogans such as Bharat Mata Ki Jai. Nationwide Har Ghar Tiranga campaign will culminate tomorrow. We have a report.
6: Tiranga Yatras held in Karnal and Ballabgarh today, people were seen filled with patriotic fervor. In Karnal, Union Power Minister Manohar Lal spearheaded the event. He personally participated in the Yatra on motorcycle and boosted the enthusiasm of participants in Ballabgarh. The Tiranga Yatra was led by Union Minister of State Krishan Pal Gurjar and local MLA Mulchand Sharma. Thousands of people took part in the Tiranga Yatra, holding the tricolor and chanting slogans Bharat Mata Ki Jai, Vande Mataram and Jai.

बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप कल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारत इस आलमी चैंपियनशिप की 17 साल बाद मेजबानी कर रहा है।

0: पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 9 विकेट पर 460 रन बना लिए थे। स्टंप्स होने तक प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव क्रीज पर मौजूद थे। इससे कबल देवदत्त पेडिक्कल ने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी स्कोर करते हुए 167 रन बनाए। केएल राहुल ने 82 रन जबकि ध्रुव ड्रेल ने 51 रन बनाए। श्रीलंका की जानिब से प्रबोध जयसूर्या ने 4 विकेट जबकि केशरा नुवंथा ने 3 विकेट लिए। सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच कोलंबो में 23 अगस्त को शुरू होगा। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने राजस्थान के शहर अलवर में 6400 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। उन्होंने जोर दिया कि भारत को 2047 तक मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मकसद को हासिल करने के लिए नौजवानों, गरीबों, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाना लाजमी है। सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने तालिब इल्मों पर जोर दिया है कि वो मुल्क सबसे पहले के उसूल को अपनाएं और विकसित भारत 2047 के लिए तआवुन करें। भारत ने बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर सुपारी यानी छालिया की दरामद करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए का महसूलाती खसारा सामने आया है और 9 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। गंगाई, मगरबी बंगाल और उड़ीसा में कल बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे पर मिसाइलों और ड्रोन्स के हमले किए जिनमें दोनों 11 अफराद हलाक हुए हैं। हॉकी में नीदरलैंड्स में FIH खवातीन के आलमी कप में भारत चीन के खिलाफ 2-2 से मैच बराबर करके अपनी मुहिम का आगाज किया। और BWF आलमी चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। PV सिंधु और लक्ष्य सेन भारत की क्यादत करेंगे। बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, श्रेषा डिली और गायत्री गोपीचंद भारतीय दस्ते की नुमाइंदगी करेंगे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है रानी दुर्गावती पर केंद्रित योगेश त्रिपाठी का लिखा नाटक रानी दुर्गावती। संयोजक हैं पुष्पेंद्र सौरभ और निर्देशक हैं विनोद कुमार।
2: समय 16वीं शताब्दी। चारों तरफ फैले अराजकता के माहौल के बीच गढ़ा कटंगा शायद एकमात्र ऐसा राज्य था जहां शांति थी, प्रजा खुशहाल थी, समृद्ध थी। गोंडवाना साम्राज्य के महाराज दलपत शाह अपनी पत्नी दुर्गावती, पुत्र वीर नारायण और राजमाता पद्मावती के साथ राजकाज संभाल रहे थे। किंतु समय कभी कभी बड़ा निर्दयी हो जाता है। राजा दलपत शाह अचानक बीमार होकर स्वर्गवासी हो गए। रानी दुर्गावती पर ये वज्रपात से कम न था।

0: जी, राजमाता पद्मावती और राज पुरोहित महेश ठाकुर पधार रहे हैं।
1: पुत्री दुर्गावती, पुत्री दुर्गावती, हमारी प्रसन्नता पर काल की कुदृष्टि पड़ गई। पुत्री, काल की कुदृष्टि।
2: अपने आप को संभालिए राजमाता।
3: राजमाता, क्षमा चाहता हूं। नगर और समीपवर्ती क्षेत्रों में घोषणा की जा रही है कि महाराज के साथ महारानी दुर्गावती सती होंगी।
4: क्या? नहीं, नहीं।

0: कभी नहीं होगा।
1: मैं सती नहीं होंगी। मैंने प्राण और मन से अपने पति को स्वीकार किया था। वो चले गए, किंतु उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का दायित्व अब मेरा है। माँ दुर्गा का दिया हुआ ये अमूल्य जीवन व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। राजमाता, आशीर्वाद। पुत्र, आपके पुत्र के बाद अब आप दुर्गा की हर सांस मातृभूमि की रक्षा और सम्मान समर्पित होगी। पुत्र दुर्गा,
2: महारानी, महारानी, प्रणाम। राजमाता,
0: क्या बात है दीवान आधार से?
2: क्षमा चाहता हूँ राजमाता, ये सब कुंवर चंद्र शाह के कहने पर किया गया था।
0: चंद्र शाह? बड़े भाई के मृत्यु के बाद कुंवर चंद्र शाह के कुकृत्य का अर्थ समझ आता है हमें। लेकिन उनकी ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। दीवान जी।
2: जी राजमाता।
0: हमें सावधान रहना होगा। राजकुमार वीर नारायण को राजगद्दी पर बिठाते समय यदि चंद्र शाह कोई भी चाल चलता है तो हमारी आज्ञा है उसे बंदी बना लीजिए।
2: जो आज्ञा राजमाता।

और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। चंद्रशाह ने वीर नारायण के राज्याभिषेक में रुकावट डाली और रानी ने उसे बंदी बनाकर राज्य से निर्वासित कर दिया। जिस तरह से यहाँ गढ़ा की गद्दी पर बालक वीर नारायण को बिठाकर रानी दुर्गावती शासन संभाल रही थी, ठीक उसी तरह दिल्ली की गद्दी पर बालक अकबर को बिठाकर सल्तनत को संभालने में जुटा था बैरम खान। लेकिन विरासत में मिली साम्राज्य विस्तार की चाहत और बैरम खान की चालबाजियां सीख सीख कर अकबर अपनी मासूमियत खो चुका था। वो 18 वर्ष की उम्र का होते होते क्रूरता और अफसरवादिता की उस हद पर पहुंच गया था जहां उसे अपनों का खून भी पानी लगने लगा था।

0: जिले इलाही कौन रियासत की महारानी दुर्गावती ने बाज बहादुर को शिकस्त दे दी है, साथ ही जान भी बख्श दी है। अब चारों ओर रानी दुर्गावती की बहादुरी और महानता के चर्चे हैं।
1: बहादुरी महानता बीरबल हमें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को किसी और की बहादुरी और महानता के किस्से पसंद नहीं। विजयनगर तो चलो दूर दक्षिण में है, उसे बाद में देखेंगे, लेकिन मेवाड़ के राणा प्रताप और गढ़ा की इस बेवा दुर्गावती को अपनी सल्तनत में मिलाना निहायत जरूरी है।
0: हुजूर, गढ़ा एक छोटा शांत राज्य है, हमें उनसे कोई खतरा नहीं।
1: खतरा सरहद का नहीं बीरबल, खतरा तारीख का है। आने वाला समय हमें महान अकबर कहे, इसके लिए हमें हर उस सिर को झुकाना होगा जो ऊंचा उठने की जुर्रत करता है, हर उस राजा और राज्य को जीतना होगा जो सचमुच महान है या सकते हैं। हम किसी और की महानता की परछाई में नहीं जी सकते।
0: बेहतर जहां पना,
2: लेकिन
1: लोग कहते थे कि हम तो एक बच्चा है, लेकिन हमने उस बैरम खान से भी पीछा छुड़ा लिया जिसने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। क्यों करना पड़ता है अगर महान बनना है तो? क्योंकि लोग उसे महान कहने लगेंगे, कहेंगे कि बैरम खान ने अकबर को तानाशाह और शहंशाह बना दिया, वरना वो तो इस लायक ही नहीं था।
0: और जो राजा आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे,
1: मिट्टी में मिला देंगे उन्हें भी और उनके नाम को भी।
3: जहां पना, रतनपुर के राजा कल्याण शाही आपसे मिलना चाहते हैं।
1: मिलने आया है या कुछ मांगने? ये रतनपुर है कहाँ?
0: जहां पना, रतनपुर गढ़ा राज्य के दक्षिण पूर्व सीमा पर है।
1: ओ, अब तो पक्का दुर्गावती के खिलाफ कोई मशवरा देने आया होगा। यहाँ के राजाओं को दूसरे राजा से इतनी जलन क्यों होती है बीरबल? बुलाओ उसे, देखें क्या है उसके पास देने या सुनाने के लिए।
4: रतनपुर के राजा कल्याण शाही हाजिर हो।
5: जहां पनाह का इकबाल बुलंद रहे।
1: बैठिए। आप यहां किस लिए आए हैं कल्याण शाही?
5: जहां गोंड राज्य की रानी दुर्गावती ने जब से मियां बाज बहादुर को मार दी है।
1: हमें मालूम है, कुछ ऐसा कहिए जो हम नहीं जानते।
5: जी, तब से हम पड़ोसी राज्य उनसे बहुत डरे हुए हैं, वो कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं।
1: अगर ऐसा होता तो अब तक उसने मालवा पर हमला बोल दिया होता। क्यों बीरबल?
0: जी, आपने सही फरमाया हुजूर।
5: जहां पना, मालवा पर हमला ना करके वो खुद को महान दिखाना चाहती हैं, और असलियत ये है कि वो मुगल सल्तनत को भी हथियाने की तैयारी कर रहे हैं।
1: भला वो किसके दम पर?
5: एक तो उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड है जहां पना, और दूसरे उसके पास एक नायाब हाथी और एक नायाब सलाहकार है जहां पना।
1: इन दोनों को हमारे दरबार में हाजिर कराने का फरमान भेजा जाए। क्या हुआ बीरबल, तुम खामोश क्यों?
0: आले जा, अंदेशा है कि बेवकूफी में वो कहीं आपके हुक्म की बेअदबी ना कर दे।
1: तब तो और भी अच्छा होगा बीरबल, हमें गढ़ा को कुचलने का सीधा बहाना मिल जाएगा। महान हिंदुस्तान के एक और महान राज्य की महान रानी की महानता साबित होने से पहले ही खत्म हो जाएगी।

0: महारानी, मुगल बादशाह अकबर का संदेश लेकर एक दूत आया है।
1: मुगल बादशाह का दूत? अंदर ले आओ उसे।
0: जो आज्ञा।

0: होशियार शहंशाह हिंदुस्तान जिल्ले इलाही जिल्ले सुभानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा फरोज हो रहे हैं। जहां पनाह का इकबाल बुलंद रहे, जहां पनाह गढ़ा रियासत के मंत्री आधार सिंह आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं।
1: अंदर ले आओ।
2: प्रणाम।
1: तो तुम हो आधार से?
2: जी हाँ जहां पना, छोटी रियासत का एक छोटा सा कारिंदा।
1: बहुत नाम सुना है तुम्हारा।
2: आपने हमारी महारानी जी को एक तोहफा भेजा था, उन्होंने भी आपके लिए ये विशेष उपहार भेजा है।
1: देखें तो

0: इस थाल में है क्या, तो पेश किया जाए।
1: पिंजना है हुजूर, हमारी भाषा में इसे पिंजना कहते हैं। इससे कपास धोनी जाती है सूत तैयार करने से पहले।
0: पिंजना, वो भी सोने का। बीरबल, इस पिंजने का क्या मतलब हुआ?
2: आलीजान, महारानी दुर्गावती का मतलब है कि आप गढ़ा जीतने के मर्दाना खाब छोड़कर स्त्रियों की तरह रुई ढूंढने का काम शुरू करते हैं। एक और अर्थ भी हो सकता है हुजूर।
0: वो क्या?
2: अगर आपने गढ़ा पर हमला किया तो आपको कैद में डाल देंगे। और आलीजा, कैदियों को कपास ढूंढने का काम दिया जाता है और आपको भी
0: चुरट। लगता है काफी सोना हो गया है गढ़ा रियासत के पास।
1: आपने ठीक कहा शहंशाह, गढ़ा रियासत में सोना भी है, शौर्य भी। हमारा राज्य करेले की तरह है, जो हमें निगलने की कोशिश करेगा उसका गला कड़वाहट से भर जाएगा।
0: आधार सिंह, जंग के लिए तैयार रहे, जाकर कह देना दुर्गावती से।
1: महारानी दुर्गावती कहिए आलीजा, महारानी दुर्गावती।
0: हाँ हाँ, महारानी दुर्गावती। जा सकते हो तुम आसफ खान, आसफ खान, जंग की तैयारी की जाए। गढ़ा पर तुरंत चढ़ाई कर, हमें गढ़ा चाहिए, समझे तुम?
3: ऐसा ही होगा जहां पर।

0: महारानी की जय हो।
1: महारानी की जय हो।
2: लौट आए आधार सिंह जी, ऐसा था हमारा पिंजना जलालुद्दीन को।
0: अकबर गुस्से से पागल हो गया महारानी। खबर मिली है कि उसने सिपह सालार आसफ खां को आदेश दिया है गढ़ा पर हमला करने के लिए। वो निकल चुका है युद्ध के लिए।
2: हम गोंडवाना के वासी हैं, हम युद्ध की तैयारी करते नहीं बल्कि हमेशा तैयार रहते हैं। आने दो उन्हें।
0: युद्ध हुआ, नरई नाले के पास हुआ, जमकर हुआ। रानी दुर्गावती ने अपने हजार सैनिकों के साथ शत्रुओं की विशाल सेना को पहले तो अपने छापामार युद्ध कौशल से मार भगाया था। नरई नाले के पास संकरे दर्रे में फंसी मुगल सेना के हजारों सैनिक गाजर मूली की तरह काटे गए। अपनी सेना की यह दुर्दशा देखकर आसफ खान पूरी तरह घबरा गया और अपनी बची खुची सेना लेकर भाग खड़ा हुआ। लेकिन दूसरे दिन 24 जून 1564 को वो वापस आया।
1: महारानी, महारानी, अनर्थ हो गया महारानी। इस बार तो आसफ खां अपनी पूरी तोपें पहाड़ी के मुहाने पर ले आया है। सामने बहुत सारी तोपें दिख रही हैं।
2: कितनी बड़ी भूल हुई हमसे। यदि हमने कल रात ही धावा बोल दिया होता तो उनकी तोपों के मुंह खुलने से पहले ही नष्ट हो चुके होते।
1: जी महारानी।
2: अब पीछे देखने का समय नहीं है। वीर

0: सुरक्षित पालकी में रखकर दुर्ग की तरफ ले जाओ। जाओ
1: मैं रणभूमि छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी।
2: नहीं महारानी,
1: जलालुद्दीन को तो पता चले कि किससे सामना हुआ था उसका।
2: महारानी काफी खून बह गया है, संभाले अपने आप को महारानी।
0: रानी, मैं आपका सेवक आधार सिंह।
1: आधार सिंह, लगता है रात हो गया मेरा। ये शरीर अब साथ नहीं दे रहा है। और सामने देखिए, वो उनके विशाल सेना हमारी तरफ पड़ रही है। इसके लिए, इससे पहले कि वो दुष्ट मुगल मुझे बंदी बनाकर मेरा अपमान करे, ये लीजिए मेरी कटार, और अपने हाथों से मुझे मृत्यु के घाट उतार दीजिए। मुझे वीर गति दे दीजिए।
0: नहीं महारानी, नहीं, ये धर्म, ये दास अपने हाथों से कभी नहीं कर सकता मारा, कभी नहीं। हम आपको मार कर जीने से अच्छा मरना पसंद करेंगे। आप चलिए, आप चलिए, हम घेरा बनाकर आपको दुर्ग में ले चलते हैं।
1: क्या आप यही चाहते हैं कि हमारा अपमान हो? गढ़ा की रानी मुगलों की कैद में जाएगी? नहीं, रणभूमि छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आधार सिंह, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो गढ़ा की बेटी अपना फैसला खुद करना चाहती। आधार सिंह जी, मैंने हमेशा माना है कि जीवन और मृत्यु के बीच कोई दीवार नहीं होती। मृत्यु भी तो इस अमर जीवन का एक छोटा साक्ष ही है। कढ़ा माटी, तेरी सदा ही जय हो। जय पड़ोसी।
0: महारानी,

0: इतिहास के पन्नों में भले ही अकबर ने जीता, लेकिन कीर्ति और गौरव की अमर पताका महारानी दुर्गावती की ही फहराई। मातृभूमि की आन बान और शान के लिए राजवंश की बेटी और गोंड साम्राज्य की महारानी दुर्गावती के इस सर्वोच्च बलिदान ने लाखों करोड़ों देशवासियों के मन में देश के लिए मर मिटने की ऐसी अलख जगाई जो आज भी जिंदा है और सदियों तक जिंदा रहेगी।
1: नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप योगेश त्रिपाठी का लिखा नाटक सुन रहे थे, रानी दुर्गावती। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार राजेश आहूजा, रानी दुर्गावती कुमकुम जैन, राजमाता पद्मावती सुचित्रा गुप्ता, राजपुरोहित महेश ठाकुर, सुनील लोहिया, दीवान आधार सिंह योगेंद्र टिकू, अकबर राजेश काम्बोज, बीरबल कीमती आनंद, चंद्रशाह सुरेंद्र सागर, रामचेरी जया रामधर। अन्य भूमिकाओं में थे किशोर सहिजानी और ऐशान शर्मा। सहयोग हरदीप सिंह का था और संयोजक थे पुष्पेंद्र सौरभ। इस नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार। इस नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.akashvani@gmail.com पर भेज सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है गिटार वादन। कलाकार हैं रितम सरकार। केवल 9 वर्ष की आयु में आपने संगीत की तालीम लेने की शुरुआत की और आपके पहले गुरु थे प्रसिद्ध सितार वादक श्री श्यामल चट्टोपाध्याय। आगे चलकर आपने दिग्गज गिटार वादक पंडित देवाशीष भट्टाचार्य से प्रशिक्षण प्राप्त किया। आपकी कलात्मकता केवल गिटार तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि तबला, सरोद, गायन और योग आधारित सांगीतिक प्रस्तुतियां भी आपकी पहचान बनी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक रीट के कलाकार रितम सरकार ने संगीत की राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दी जाने वाली छात्रवृत्तियां भी प्राप्त की हैं। रितम सरकार अखिल भारतीय संगीत समारोहों के साथ साथ बंगाल के संगीत सम्मेलनों में भी भाग लेते रहते हैं। आप एक ऐसे गिटार वादक हैं जिन्होंने संगीत के विभिन्न सम्मेलनों तथा कार्यक्रमों के अलावा संगीत की कार्यशालाओं में भाग लेने और व्याख्यान देने के लिए देश और विदेश की यात्रा की। यही नहीं, आप कैंसर से पीड़ित वंचित बच्चों की सहायता हेतु आयोजित सामाजिक निधि संग्रह कार्यक्रमों के साथ भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा शरीर के 7 चक्रों पर आधारित योग की एक परियोजना पर भी काम कर रहे हैं।
1: Tonight in the Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we present guitar recital by Ritam Sarkar. Beginning his musical journey at an early age of 9 years, Ritam Sarkar was initially trained under the sitar maestro Sri Shyamal Chattopadhyay and thereafter under the able guidance of guitar legend Pandit Debashish Bhattacharya. Later, he expanded his musical artistry through exposure to tabla, sarod, vocal and meditation-based musical presentations. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan, Ritam Sarkar has also been a holder of national and state scholarships in music. A proud participant

0: गिटार वादन के अंतर्गत आप ऋतम शर्कर से राग मालकौंस सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग मेघ। आलाप से इसकी शुरुआत होगी और गत में इसकी बंदिश रूपक ताल में आवत है।
1: You are listening to Raag Malkaus in the guitar recital by Ritam Sarkar. Continuing with the recital, he now presents Raag Megh. It begins with an alap and the composition is set to gat in rupak taal.

0: आप रितम सरकार से राग मेघ सुन रहे थे। गिटार वादन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग किरवानी के साथ करेंगे। यह बंदिश कहरवा दाल में आबद्ध है।
1: You were listening to Rag Megh. Ritam Sarkar concludes his guitar recital in Rag Kirwani. The composition is set to Kaharwa Taal.

0: गिटार वादन के अंतर्गत आप रितम शौरकार से राग किरवानी सुन रहे थे। तबले पर संगत कर रहे थे औशित जाना। और इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यहीं संपन्न होती है।
1: You were listening to Raag Kirwani in the guitar recital by Ritam Sarkar.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार में मोहम्मद जुबैर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज UGC नीट परीक्षा के 3 विषयों, अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार के प्रमुख स्वास्थ्य बीमा